तात गुण कवण वखाणो जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो बोलतो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधरणे गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पासरण आप नारायण कलाधार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मन

जात ताप सत संतोष तिख दर्शन गुर सिख सरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत।

नानक कुल मल अवतरो गुण कर तारे उतरे। गुरु अमरदास जिन सवेओ तिन दुख दरिद्रे।

जब गुरु देखे सुबदिष्ट नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो। गुरु अमरदास कारण करण जिम तू रखे त्यों रहो। दिखे के गुरु ध्यान अर ध्यान तत्सव तत्।

धर्म भनक कर गयो भगत सीने सर लड़यो। भय निर्भव हर अटल मन सबद गुरु ने जाग गयो। काम क्रोध लोभ मोह

एक मन पुरखन अंगन ध्याओ, गुर प्रसाद हर गुण सद गाओ, गुण गात।

नाम निरंजन उर धरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे, कब कल ठकर हर दास ने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत परवाह अम्यो अमरा तत, अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन, उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कौन कर्ण छकुन हर दास तने, गुरु राम दास सर अवर भरे। सत गुरु मत गुरु।

रंजन घरेला सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया इस पन साधवस पंच करे कल कल ठाकुर हरदास तनी गुरु राम दास सर अभर भरे अनुभव अनुमान अकल लेवे लागी पारस भेटिया सहज घरे सतगुरु प्रसाद परम पद पाया भगत भाए भंडार भरे मेटिया जन मंत्र मरण भव भगत

अबर भर उपायो अपार हृदय अंतर धारो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारो सदा चाहे हर भाई तीम रस आपे जाने सतगुरु कहते।

भरत परवासी तुम पुबली न होते सतगुर शब्द अथाओ अमो धारा रसगुत्ते मत माता संत।

गुरुजन को सौ तरसन मान अभमान निवारे। जिनको गुरु सौ परसन सबद लगे।

सतगुरु नाम एक लिव मन जप दृष्टि जन दुख पाप कौ कत होए जियो तारण करण छिन मात्र जाको दृष्ट धारे सब हृदय विचारे काम क्रोध खोए जियो जीवन शब्द दाता अगम

सहज साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लिव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकारे अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है। भर्म

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुवास जास सिमरत अंतरे जाके देखत द्वारे काम को दे

पाँव तैनीर सर अवर अनल अनाद कियो। सकल खनिस सूर दिन सैल करो फल फूल दियो। सुर नर सपत सम

अमर प्रगाट कच्चो कंचन भयो शबद गुर सरवण्यो सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल नदर सत

काठो सीखन सतगुर कियो, दुख दर्द तिन के गए। सतगुरु चरण जिन परसिया, ते पस प्रेत

सो जन्म मरण दोते रहे। गुरु बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच बिचारे गुर करे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे। गुर नैन भैन गुर गुर करो गुरु सत कब नल कै, जिन गुरु न देखो न कियो ते अकथ संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे। सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस्त तैने रे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत।

होती जो प्यास पियो सेवन की, बंसत सिद को विद मिलायो। पूरन भवन ठौर बसोर से, बासन सुजो दंज सधायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी समजलन तीर विवास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। समरथ गुरु सिर हाथ धरयो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अघन हरो, निस्बासुर एक समान ध्यान। सो नाम सुने सुत भांडरो, भन दास आस जगत गुरु की, पारस भेत परस करो। रामदास गुरु हर

आरग तजो भजो हर ज्ञानियों, वचन गुरुद धरो पंच भू बस करो, जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियों, जो तो सब सुख इत उ

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐस करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख भजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर।

उदत गुर गहर गवीर बेअंत हर नाम नगे हीर मन मिलत लेवलाये उन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुरु ध्याये अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत।

कृपा सतयुग दिन धूपर श्री प्रहलाद भगत उदयन हस्त कमल माथे पर धरियं अनख रूप जी लख न जाई साधक सिद्ध

जग जन्म मरण भगाए आई ही ये प्रतीत, प्रतीत ही ये आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च भई। कज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की दिखा गई। अवलोका ब्रह्म भरम शुभ छुटका, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटका, दिव दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु सेव अलग गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया।

करें पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा दिज सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरनं। सतगुरु गुरु सेव अलग।

तिन तरयो समुद्र रुद्र थिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन

चंदनियों बले छलन सबल मलन भंग फलन कान कुवर नय कलंक बजी डंक चढ़े दल रविंद नियो राम रवण दुर्त दमन सकल भवन।

गुरु सत जियो। गुरतिया माने निज निधाने सच जान मंत्र एह नित बासुर स्वयान। लहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन सो तार धो। हमें का फल काट साध संग रत जियो। देह गे ते सने चित विलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ। दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार सजनिकार मन।

माता गुरमुख संगत सवे विचारो वाओ वाओ का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहा अमृत ते मीठे जाके बचना माने ब्रह्मा।

सत्संगत से ती मन खचना किया खेल बड़मेर समासा वाहे गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आज जिस कोए न जाने शिव बिरंत धर ध्यान तेज सभेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई भंजन गरण

गुर समरथ गए किरिया धू बुध सुमत समारन को उन धम दुजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जय सासु और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल में भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है धर्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले धारण धावत है मथुरा भन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है रव के सुख को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है निर्मल नाम सुधास पर पूर्ण सब त्रंग प्रगट तिन आगर गहर गंभीर अथायत वन सुबर सदा सब विदरत नागर संत मराल करे कंतु हल तिन जम प्रास मिट्यो दुख

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परदास को। वेद बाणी सहत ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन जैना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ भेद किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाई।

अंतर तेज कुंठे लोक प्रगा से देखत दर्श भटत भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अतलुभते अल्प मूजू कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदासे। तारे ओ संसार माया मद मोहते अमृत नाम दियो समरथे उन कीरतवंत सदा सुख संपते रिद्ध अर्थ न छोड़।

के पसीस धर्यो गुर हथे तीन भवन भरपूर रहो सोई अपन तरस क्यों ना जगत कोई आपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे अविनाशी अचल अजौनी संभो पुरखोत्तम आपार परे करण कारण समरथ सदा

आयो सतगुरु नानक भगत करे एक मन तन मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी अगम ज्ञान रस रस हियो गुरु अमरदास।

सुदामा खूब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिटियो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो खिणन। करम कर तो दर्श परस पारसन बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो। जैसे तुग सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जय सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निद पावे। सोई रामदास गुण बल भण मिल संगत धन धन करो। जय सतगुर लग प्रभु पाइए तो सतगुण सिमरो नरो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड़ो पासे। तांते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नाशे। कव कीरत जो संत चरण मुन लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ज्यों अंगद अंग संग नानक गुर त्यों गुरु अमरदास कै गुरु रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासुर हर चरण निवास। सांते संगत सगन भाए भव मानी। तुम मलया

जैत खतअत होय रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानु तीनी भगत प्रेम लिवलाई। आते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद।

जन्म ते गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सो जस वखाणियो। भगत जोग को जैतवार।

गुर अर्जन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो बलधागी उन मानियो

वेदन भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तोए जस भगता कुल सौदी गुरु रामदास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

कहो मथुरा अमृत बैं मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगमगे तेज भूमंडल छायो पारसे परसे परस परस

0: नाम रतन प्रकाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्ते सिरे दिल नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सकते कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर के शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे पंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए, एक उपजे एक बिनस जाए हुक्मे आवे जाए। जम्मन मरण न चुक रही रंग लगा दूजे भाए, बंधन बंद भवायन करना कछु न जाए। जिनको कृपा धारियन तिना सत

पुत कलत मोहेत है अंत बेली को न सखाए, सतगुरु सेवे सो सुख पाए, नाम वसै मन आए, नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए। मनमुख नाम ना चेतनी बिन नामे दुख रोए, आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए, हों मैं अंतर मैल है शब्द ना काढे तोए, नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करें प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुरु वचन ना करें विश्वास, ज्ञानिया अंदर गुरु शब्द है नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की रख

कमाए, बिख का मारण हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए, मिल सतगुरु निर्मल होया, बिख हो मैं।

सतगुरु पुरख निर्वैर है नित हिरदय हर लिवलाए निर्वैर नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित पौंक दे बिखा दे दूजे भाए बिख माया कारण परम दे फिर कर कर पत गवाए बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नाम

जिन को पूर्व लिखिया तिना पेटिया गुरु गोविंद नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार। ऐथे ओथे मनियन हर नाम लगे व्यापार गुरमुख शब्द संजाप दे तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

जन की टेक हर नाम हर बिन नामे ठवर न ठाओ गुरमति नाव मन वसे सहजे सह समाओ वडपागी नाम ते आया एहन सलागा पाओ जन नानक मंगे तूर तिन हो सतगुरु बाणे जाओ लख चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नामती वार बिन हर शांत ना आवे किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुरु पाया बूझया ब्रह्म विचार तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर उरदार असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारावार हर कृपा करके बख्श ले हो हौ पापी वड गुनहगार हर जियो लेखे वार ना आवई तू बख्श मिलावन हार गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन्म मरण नहीं चल भये गुरमुख नाम ते आए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लवन नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन मनमुख नाम ना चेत्यो तिग जीवन तिग वास जिस दा जित्ता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास हर हर नाम उरधारिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास शब्द मरे सोई जन सिजे बिन शब्द मुक्त न होई पेख करे बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई नानक बिन सतगुरु नाव ना पाईए जेसो लोचे कोई हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई अपड़ कोई न सकई जे सो लोचे कोई मुख संजम हच्छा ना हो वही कर पेख पवे सब कोई गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए वसे गुर शब्द विचार है कोई नानक शब्द मरे मन मानिए साची साची सोए माया मोह दुख सागर है बिख दुत्तर तरिया ना जाए मेरा मेरा कर दे पच मोए हो मैं करत विहाय मन मुखा उरवार न पार है आद विच रहे लपटाए जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए गुरमति ज्ञान रतन मन वसै सब देखिया ब्रह्म सुवाए नानक सतगुरु बोझै वड पागी चढ़े ते पौजल पार लंगाए बिन सतगुरु दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार गुर कृपा ते नाव मन वसै सदा रहे उरधार तिसना बुझै तिप्त होए हर कै नाए प्यार नानक गुरमुख पाईए हर अपनी कृपा धार बिन शब्द जगत बरलिया कहना कछु न जाए हर रखे से उबरे शब्द रहे लिवलाए नानक करता सब कित जानदा जिन रखी बणत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह न मिटई विच होमे आवन जान सतगुरु मिले मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुरु बाण माया मोह बहु चित्व दे बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्थिर नाथिय मर बिनस जाए खिनवार वड पाग होवे सतगुरु मिले होमे तजै विकार हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार बिन सतगुरु भगत न हो वही नाम

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार, माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार। तब नर्क पाजा गया सिर डंड लगा भो पार, गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार। नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार, शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे, हर दरगे गुर शब्द जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए, मन मुख मुआ अपना जन्म खोए, हर नाम न चेते अंत दुख रोए, नानक करता करे सो होए, गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान, सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान, ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान, तिना नदरी इको आया सब आत्म राम पहचान, मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही, विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही, गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह सब सुवाए, ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए, मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए, नानक गुरमुख मेलियन।

नानक गुरमुख मन स्यों लुजै, जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून न आखियन पशु टोर गावार, ओना अंतर ज्ञान न ज्ञान है हरसो प्रीत न प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दया नो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोहने सिद्ध सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल, गुरमती हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वस अनेक है नव निज नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल। वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल, मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार। माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार। जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार, हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान। किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान, गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान। हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए। तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ, जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय तह जाओ। एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ। पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए, तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए। सतगुर विच वडिया वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए, एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए। संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ, नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ। तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहारे जाओ, से दाड़िया सचिया जे गुरचरनी लगन, अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनदरहन। नानक से मुह सोहने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाए। सच्चा शब्द मन वस्या सतगुर माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए। नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मन मुख भूले जाए। बाबी हा प्रयो प्रयो करे जल निद प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया सब।

बाबिया तू सच चो सच्चे सौ लिवलाए, बोलिया तेरा थाए पवै गुरमुख होए अलाए, शब्द चीन तिक उतरे मन लै रजाए। चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवै सह चुबाए, जल ही ते सब उपजे बिन जल प्यास न जाए, नानक हर जल जिन पिया तिस भूख न लागे आए। बाबी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुवाए, सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए, आप पछाणे प्रीतम मिले बुठा छह बरलाए, चिम चिम अमृत वरसदा कितना पुख सब जाए, फूक पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सुख सवन सुहागणी सच्चे नाम समाए। तुरु खसम पेजिया सच्चे हुक्म पठाए, इंद वरसे दया कर गूड़ी छह बरलाए, बाबी हे तन मन सुख होए जा तत बूंद मोह पाए, अन तन बहुता उपजे धरती शोभा पाए, अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए, आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए, हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए, पैका सह सिगार करो सच रहो लिव लाए, नानक नामो मन वसे हर दरगे ले छड़ाए। बाबी हा सगली तरती जे फिरे ऊट चढ़े आकाश, सतगुर मिले जल पाईए चूके भूख प्यास, जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसके पास, बिन बोलिया सब किस जानदा किस आगे की चै अरदास, नानक कट कट एको वरतदा शब्द करे प्रगास, नानक तिसे बसंत है जे सतगुर सेव समाए, हर बुठा मन तन सब पर फड़े सब जग हरियावल होए, सबदे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए, नानक नाम ना विसरे जिन सिरिया सब कोए, नानक तिना बसंत है जिना गुरमुख वस्या मन सोए, हर उठे मन तन पर फड़े सब जग हरिया होए। वडड़े चाल चलुंबड़े नावड़ा लइए किस, नाव लइए परमेश्वर पन्नन करण समरथ, हर हट भी तू तू करे बोले पल्ली बाण, साहिब सदा हदूर है क्या उच्ची करे पुकार, जिन जगत उपाय हर रंग किया तिसे विटो कुर्बान, आप छोड़े ता सो मिले सच्चा यो विचार, हों मैं फिक्का बोलना बुझ न सका कार, वन त्रिण त्रिभुवन तुझे त्याईंदा अंदिन सदा विहान, बिन सतगुर किने न पाया कर सके विचार, नदर करे जे अपनी ता आपे लह सवार, नानक गुरमुख जिनी त्याया आए से परवान, जोग ना पगवी कपड़ी जोग ना मैले वेस, नानक कर बैठिया जोग पाईए सतगुर कै उपदेश, चारे कुंडा जे पवे बेद पढ़े जुग चार, नानक साचा फेटे हर मन वसे पावे मोह द्वार, नानक हुकम वरते खसम का मत पवी फिरे चल चित, मनमुख सौ कर दोस्ती सुख के पुछे मित, गुरमुख सौ कर दोस्ती सतगुर सौ लाए चित, जमन मरण का मूल कटिए ता सुख होवी मित, पुलिया आप समझाए थी।

गुर कै शब्द अरा दिए नाम रंग बैराग जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू एह राग जामू इक ता लख तौ जिती पिनने दर कितड़े बामन बिरथा गयो जन्म जिन की तो सो विसरे थोरठ थोर पीजिए कबू न फीका होए नानक राम नाम गुण गाइए दरगह निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोई न मारे अंदर नाम निदान सदा गुण सारे एका टेप अगम मन तन प्रभ धारे लगा रंग अपार को न उतारे गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारे नानक नाम निधान हृदय उरहारे करे सु चंगा मान दुई गणत लाहे अपनी नजर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मति उपदेश विच्चों परम जाए जो सुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कछ तिस दे वस दूजी नाही जाए नानक सुख आनंद भये सब की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया से भय निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाय हाय नानक ज्यो मथन माधानिया क्यों मथे धर्म राय नाम से आए साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवे कीतो पवन पुनीत खुबड़ी कुठाए मिठी जलन कुमंत्रिया।

सुतड़े असंख माया चूकी कारणे नानक से जगन जे रसना नाम उचारणे मृग तिसना पेख भुलने बुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच आराध्या नानक मंतन पब पतित उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार जिसे उदारे नानका।

जगत पिखारी फिर तू है, सबको दाता राम। जगत

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एह वस्त जी नह जाई, नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लगत।

पांचों नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भात अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशल।

माल राग कौशक संग लाई, मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड कौशक उभारा, खौखट औ पौरा नद गाए, अष्टमाल कौशक संग लाए, पुन आयो हिंडोल पंचना।

सुरमानंद पास करे आए, चंद्रबिम मंगलन सोहाए, सरस बाण औ आए बिनोदा, गावे सरस बसंत समोदा, अष्टपुत्र में कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी, कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप, कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप, कालंका कुंतल औ रामा, कमल कुसुम चंपक के नामा, गौरा औ कांगरा कल्याणा, अष्टपुत्र दीपक के जाना, सब मिल श्री राग में गावे, पांचों संग बिरंगन लावे।

दूर कथना कथि न आवै टोट कत कत कथि कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे तक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाए हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह।

पुछताई कागज कलम ना लिखन हार मन्ने का वह कर्म विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुत हुए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की।

पवह ना पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोह दर राजहान पंचा का गुर एक ध्यान।

संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तब लै उपर कीता पार धरती होर परै होर होर तिस ते भार।

दरियाओ कुदरत कमण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मुह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे। असंख मलेश मल भख खाहे।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए।

एक वार जो तुझ भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे।

होई। जा करता सिर ठीक को साजी, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आ

आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा आसुलू एक तात लेखा हुए ता लिखिय लेखै हुए वनास नानक वड्डा आखिय आपे जाने आप सालाही सालाई एती सुरत ना पाईया नदियां अतैवा पवह समुंद ना जानी है समुंद साहा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहु अंत न जाने कोई बहुता कही।

तिस ऊचे कौ जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए। वड्डा दाता तिल ना कमाए, केते मंगह जोद अपार, केतियां गणत नहीं वीचार।

आहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख ना सकह केई के जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर के हा सो कर के हा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंख।

देवतियां दर नाली गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारी गावन पंडित पंडर खीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाले गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सु

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग वजोग दोय कार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन केले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवें चिलावै जिव होवै।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखिय है एक नाम जगदीस एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै थीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरन नह जोर जोर न राज माल मन शोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्म।

रह जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश, केते बर में काड़त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड इथे नाद बलोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप इथे घाट घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्ला कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे

राजा धर्म दुआरी गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बीचारी गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारी गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठी।

कामन तुदनो पंडित पन्नर खीस जुग जुग वेदा नाली गामन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पाए आली गामन तुदनो रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाली गामन तुदनो जोध महाबल सूरा गामन तुदनो खानी चारी गामन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले।

मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया, तुद मिन सिद्धी किनै ना पाईया, कर्म मिलै ना ही ठाक रहाईया।

खाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितम है उद्दम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जंत उपाए, ता कारजिक आगे कर धरिया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, हुए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया, ऊडे ऊड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सद

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुध जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत सास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करह सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू कर

प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजन तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ जप तप सं

ज्यों हुआ साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन।

भव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तुहि कहो सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए किस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो

ही पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडाही, कर साधु अंजलि पुन बड्डाही, कर दंडौत पुन बड्डाही रहाउ। साकत हर रस साधना जानिया, इन अंतर हों मैं कंडाही, ज्यो ज्यो चलह चुभै दुख पावह, जमकाल सह सिर डंडाही। हर जन हर हर नाम सुमानी, दुख जन्म मरण भव खंडाही, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही। हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाही, जन नानक नाम।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग श्री राग महला पहला कर पहला मोती ता मंदर उसर रतनी ता होए जड़ाऊ कस्तूर को अगर चंदन लीप आवे चाऊ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाऊ हर बिन जियो जल बल जाऊ मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही थाऊ रहाऊ धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाऊ मोहनी मुख मणि सो है करे रंग पसाऊ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाऊ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आऊ गुपत प्रगट होए बैसा लोक राखे भाव मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाऊ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाऊ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाऊ मत देख भूला।

लिखे भूलन भूलना लिखे खाना खाओ लिखे वाट चलाइया लिखे सुन वे खाओ लिखे सहा लवाइया है पढ़े के पुछन जाओ बाबा माया रचना तो अंधे नाम बसारिया ना तिस एह ना ओहो रहाओ जीवन मरना जाए कै इथे खाजे काल जिथे बह समझाई है।

नानक तिन कै संग साथ वड्यां स्यों क्या रीस जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीस श्री राग महला पहला लभ कुत्ता कूड़ चूहड़ा ठग खादा मुरदार पर निंदा परमल मुख सुधी अग्न क्रोध चंड

जित सेवियै सुख पाईऐ तेरी दरगाह चलै मान रहाउ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुनह वखाण है जेतड़ी हौ तिन बलिहारै जाउ ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाउ नाउ नीर चंगियाईया सत

तिसमिन सब अपवित्र है जीता पहनन खान होर गल्ला सब कूड़िया तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह कस मस कर।

रहाउ पूज लगे पीर आखिए सब मिले संसार नाउ सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार जा पत लेखे ना पवे सभा पूज खुआर जिनको सतगुरु था।

सच उपजै, सच मह साच समाए, सुरत होवे पत उगवै, गुरबचनी भव खाए, नानक

केता आखण आखीऐ आखण तोट ना होए मंगण वाले केतड़े दाता एको सोए जिसके जी प्राण है मन वस्य सुख होए।

सच वखर सच रास जिन्नी सच वणंजिया गुरपूरे साबास नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास श्री राग महल पहला धात मिले फुन धात कौ सिफती सिफत समाए लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोखिया हर जप एक पाई पाई रे संत जना की रेण संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेन रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार त्रिविध कर्म कमाई है आस अंदेसा होए क्यों गुरबिन त्रिकुटी छुट सी सहज मिले सुख होए निज कार महल पछाणी है नदर करे मल धोए बिन गुर मैल ना उतरे बिन हर क्यों घर वास एको शब्द विचारी है अवर त्यागे आस नानक देख दिखाई है।

लहै दरगाह झूठ खुआर रहाउ आप सुजान ना भुलै सच्चा वड किरसान पहला धरती साध कै सच नाम दे दान नौ निध उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर कौ जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई

काल कपूर। जे धन कंत ना पावे ता सब अडंबर कूड़, सब रस भोगण बाद है सब शिंगार विकार। जब लग शब्द ना भेदी है क्यों सो है गुरुद्वार। नानक धन सुहागणी।

दास तू सर्व जिया प्रित पाल ही लेख सास ग्रास अंतर गुरमुख तू वस है ज्यो भावे त्यों निर्जास जियरे राम जपत मन मान अंतर लागी जल बुझी

जित कर जाई है तित जीवनिया मर मार अनहद शब्द सुहावने पाई है गुर विचार अनहद बाणी पाई है।

तरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐथै धंध पटाई है सच लिखत परवान।

रूंग वड्डा मन माही क्यों दरगाह पत पाई जां हर ना वसै मन माही गुर मिलिया सुख पाई है।

आपी रसिया आप रस आपी रावण हार आपी होवे चोलड़ा आपी सीज पतार रंग रत्ता मेरा साहिब राव रहिया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल।

बीज कर्मा करो सलल अपाउ सारिंग पानी मन किरसान हर हृदय जमाए लै इउं पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया।

रहै को रहै ना परियै पाई। सोई काजी जिन आप तजिया एक नाम किया आधारू है पी होसी जाए न जासी सच्चा सिरजन हारू पांच वक्त

वह रोहे तू ओ नाका तेरे ओहे असी बोल बगाड़ बगाड़ है बोल तू नदनी अंदर तोल है तोल जह करनी तह पूरी मत करनी बाजो घटे घट प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए आप पुछा।

अपना एक मन एक चित पाए, सतगुर मन कामना तीर्थ है, जिसनो दे बुझाए, मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए, नाउ त्याय नाउ।

अस सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए परगास रहाओ। गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करै मह पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए। जे लख इस्तरियां भोग करहै नव खंड राज कमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे। हर हार कंठ जिन्नी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछे रिद सिद फिरै ओना तिल ना कमाए। जो प्रभ भावै सो थीए अवर ना करना जाए जन

ब्राह्मणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसकै सच वसै सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना विछड़ है तिन निज घर वासा होए मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला

भाई को ना मिले फिर आवे जाई, सब मह एक वर्तदा एको रहिया समाई, जिसनो आप दयाल हुई सो गुरमुख नाम समाय। पढ़ पढ़ पंडित जोत की वाद करह विचार, मत बुद्ध भवी ना बुझई अंतर लोभ विकार, लख चौरासी भरम दे भ्रम भ्रम हुए खुआर, पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार, सतगुरु

अर्स हुई ज्योति ज्योत समाई, जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आई। मन भुखा भुखा मत करह, मत तू करह पुकार, लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार।

से निर्मले हों सद बलिहार है जास हृदय जिनकै हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो हो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरमत जिन्नी पछाणिया से देख है सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै औगणवंतिया दूर मनमुख गुण तै बाहरी बिन नावे मरदे झूर जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन प्याया हर सोए अन दिन भगती रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओह सदा सदा थिर होए एहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिव लाए पग खिसिए रहना नहीं आगे ठौर ना पाए ओह वेला हाथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उबरे हर सीती लिव लाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए हर गुण गाव है हर नित पढ़ है हर गुण गाए समाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिव लाए श्री राग महला तीजा जिन्नी एक मन नाम ते आया गुरमती विचार तिनके मुख सद उजले।

आनंदिन नाम ते आई रहाऊ। साची मैल ना लागई मन निर्मल हर त्याय। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाय। गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया अज्ञान अंधेरा जाय। मनमुख मैले मल परी

गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार श्री राग महला तीजा मनमुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी ना होए

अहनस पूर रही नित आसा, सतगुर सेव मोह परजल कर ही माहे उदासा रहाउ, गुरमुख कर्म कमावै बिगसै हर बैराग आनंद, अन दिन भगत करे दिन राती हौ मैं मारनी चंद, वड्डे भाग सत संगत पाई हर पाया सहज आनंद, सो साधु बैरागी सोई हिरदय नाम वसाए, अंतर लाग न तामस मूले विचों आप गवाई, नाम निधान सतगुरु दिखालिया हर रस पिया अगाए, जिन किने पाया साध संगती पूरे भाग बैराग, मन मुख फिर है ना जान है सतगुर हम मैं अंदर लाग, नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पै के ही लाग, श्री राग महला तीजा कर ही सौदा पाई है, अंतर सब वथ होए खिन खिन नाम संभाली है, गुरमुख पावे कोई नाम निधान अखुट है, वड भाग प्राप्त होए मेरे मन ताज निंदा हो मैं अहंकार, हर जीव सदा त्याए तू गुरमुख एक अंकार रहाउ, गुरमुखा के मुख उजले गुर शब्दी विचार, हलत पलत सुख पाएंदे जप जप हृदय मुरार, कर ही विच महल पाया गुर शब्दी विचार, सतगुरु तेजो मोह फेर है मथे तिन काले, अन दिन दुख कमाव दे नित जो हे जम जाले, सुपने सुख ना देखनी बहु चिंता पर जाले, सबना का दाता एक है आपे बख्श करे, कहना किशु ना जावई जिस पावे तिस दे, नानक गुरमुख पाई है।

गुर प्रसादी मन वसै हों मैं दूर करे इहो मन धावत तां रहे जां आपे नदर करे पाई रे गुरमुख हर नाम त्याए नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाउ रहाउ मनमुख मन तन अंध है तिसनो ठौर ना खाउ बहु जूनी पौंदा फिरै यूं सुन्ये घर काउ गुरमती घट चानना

पाय लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाय बिन गुर महल ना पाइए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड लहू जिदू पाइए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लोवाणी सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही अन दिन दुख विहानी मनमुख अंध ना चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजहो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई रहाओ एहो शरीर माया का पुतला विच हूं मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मनमुख पत

ताप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाई सदा आनंद रहै दिन राती मिल प्रीतम सुख पाई जो सतगुर की शरणागति हौ तिनकै बल जाऊं दर सच्चै सच्ची वडियाई सहजे सच समाऊं नानक नदरी पाईऐ गुरमुख मेल मलाऊं श्री राग महला तीजा मनमुख कर्म कमावणी ज्यों दुहागण तन शिंगार सीजै कंत ना आवई नित नित होए खुआर पिरका महल ना पावई ना दिसै।

गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई, जे लोचै सब कोय रहाउ। लख चौरासी फेर पया, कामण दूजै पाई।

गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाओ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं परवान भया।

कमाए। जात सत संयम नाम है, विण नाम है निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा।

अत सबल है छड़ी ना कितै उपाय दूजे पाए दुख नाहिंदा बहुती देश जाए नानक नाम लगे से उबरे

कार सतगुरु सेव मन निर्मला हौ मैं तजवे कार आप छोड़ जीवत मरे गुर कै शब्द विचार धंदा तावत रह गए लागा साच प्यार सच रते मुख जले तित साचे दरबार सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार इशनान दान जेता करह दूजे भाई खुआर हर जियो अपनी कृपा करे ता लागे नाम प्यार नानक नाम संभाल तू गुर कै हित अपार श्री राग महला तीजा किस हों सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाय सतगुर का भाणा मन लई विचों आप गवाय एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आय नामै ही ते सुख पाई है सच्चै शब्द सुहाय मन मेरे अन दिन जाग हर चेत अपनी खेती रख ले कूंज पड़ेगी खेत रहाओ मन किया इच्छा पूरियां शब्द रहया भरपूर तै पाए भगत करहे दिन राती हर जीव वेखे सदा हदूर सच्चा शब्द सदा मन राता भ्रम गया शरीरों दूर निर्मल साहिब पाया साचा गुणी गहीर जो जागे से उबरे सूते गए मोहाए सच्चा शब्द ना पछाणियो सुपना गया विहाय सुनिए घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जाय मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मुँह देसी जाय सब किसी आपे आप है हम मैं विच कहन ना जाय गुर कै शब्द पछाणिए दुख हम मैं विचों गवाय सतगुर सेवन अपना हम तिनकै लागो पाय नानक दर सच्चै सच्यार है हम तिन बलिहारे जाऊ श्री राग महला तीजा जे वेला वक्त विचार।

मन तन सी तल साच सियो सास ना बिरथा कोई। मेरे मन हर का नाम ते आए साची भगत।

सहज सुभाई गुर का शब्द अमृत है जित पीतै तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहिया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहिया समाय बाणी वजी चहु जुगी सचो सच सुनाय हम मैं मेरा रह गया सच्चै लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है विनकर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिन आय बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदोला फिर आवे जाय नदर करे

तिना आनंद सदा सुख है जिन्ना सच नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार सदा सदा साचे गुण गाव है साचे नाही प्यार कृपा करके अपनी दितोन भगत भंडार मन रे सदा आनंद गुण गाए सच्ची बाणी हर पाई है हर सिउ रह समाय रहाउ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सहज सुपाय गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु ना जाय जिहवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाय गुरमुख एहो रंग पाई है जिसनो कृपा करे रजाय संसा एहो संसार है सुत्या रहन विहाय एक अपने भाणे कड लयन आपे लयन मलाय आपे ही आप मन वसिया माया मोह चुकाय आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाय सबना का दाता एक है भुलिया ले समझाय एक आपे आप खुआयन

भाई अनदिन रावह फिरे अपना सहजी सच समाई रहाउ शब्द रतियां सुहागणी सच्चा शब्द शिंगार हर वार पाइन घर अपने गुर कै हित प्यार सेज सुहावी हर रंग रवे भगत भरे भंडार सो प्रभ प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार फिर सलाह ने अपना तिनकै हों सद बल।

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होई। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होई। श्री राग महला तीजा, जग हमें मैल दुख पाया। मल लागी दूजे पाए, मल हमें धोती किवै न उतरै। जे सौ तीर्थ नहाए, बहु

का निर्मल हुए मन मुख हर हर कर थके मैल ना सकी तो होए रहाव मन मैल भगत ना होवे नाम ना पाया जाए मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गुआए गुर प्रसादी मन वसे मल हऊ मैं जाए समाए ज्यों अंधेरै दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार माया जेवड दुख नहीं सब भव थके संसार गुरमती सुख पाई है सच नाम उरतार जिसनो मेले सो मिले हऊ तिस बलिहारे जाऊं ए मन भगती रत्या सच बाणी निज थाउ मन रत्ते जिहवा रत्ती हर गुण सच्चे गाव नानक नाम ना विसरे सच्चे माहि समाव श्री राग महला चौथा घर पहला मैं मन तन बिरहो अत अगला क्यों प्रीतम मिले घर आए जां देखा प्रभ अपना प्रभ देखिया दुख जाए जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मलाए मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए हम मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाउ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मलावे सोए सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जीवड अवर ना कोए हऊ गुर सरनाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए मन हठ किने ना पाया कर अपाव थके सब कोए सहस सियाणप कर रहे मन कोरै रंग ना होए कूड़ कपट किने ना पाया।

है, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाई रहाउ, नाम अमूलक रतन है, पूरे सतगुर पास सतगुर सेवै लगिया, कड रतन देवै परगास, धन वड भागी वड भागिया, जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सतगुर पुरख ना भेटे हो, से भागहीन वस काल, ओए फिर जोन पुआई है, विच विस्ता कर विकराल, ऊना पास दुआस ना पिती है, जिने अंतर क्रोध चंडाल, सतगुर पुरख अमृत सर, वडभागी नावह आए, हुन जन्म जन्म की महल उतरै, निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लिव लाए, श्री राग महला चौथा, गुण गावा गुण विथरा, गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया, मिल सज्जन हर गुण गाय, हीरा हीर मिल भेदया, रंग चलूलै नाए, मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए, अंतर प्यास हर नाम की, गुर तुस मलावै सोए, रहाओ मन रंगो वडभागी हो, गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दरडाए रंग स्यो, आऊ सतगुर कै बल जाऊ, बिन सतगुर हर नाम ना लभई, लख कोटि कर्म कमाऊ, बिन भागा सतगुर ना मिलै, कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख भरम है, विच पड़दा दूर पई आस, बिन सतगुर भेटे कंचन ना थीऐ, मनमुख लोहो बूढ़ा बेड़ी पास, सतगुर बहुत हर नाव है, इत बिद चढ़िया जाय, सतगुर कह पहाण जो चलै, विच बोहित बैठा आए, तन तन वड भागी नानका, जिन्ना सतगुर लय मलाय, श्री राग महला चौथा, हौ पंथ दसाई नित खड़ी, कोई प्रभ दसे तिन जाऊ, जिन्नी मेरा प्यारा रावया,

गुर मान है, गुर सतगुर करे सबास, हौ गुर सालाहे न रजू, मैं मेले हर प्रभ पास, सतगुरु नो सब को लोचदा, जेता जगत सब कोए, बिन भागा दर्शन ना थीए, भाग हीन बहर होए, जो हर प्रभ पाणा सो थिया, तुर लिखिया ना मिटै कोए, आपे सतगुरु आप हर, आपे मेल मलाए, आप दया कर मेल सी, गुर सतगुर पीछे पाए, सब जग जीवन जग आप है, नानक जल जल है समाए, श्री राग महला चौथा, रस अमृत नाम रस अत भला, कित बिद मिले रस खाए, जाए पुछो हो सोहागनी, तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए, ओए वे परवाह ना बोलनी, हो मल मल तुआ तिन पाए, पाई रे मिल सज्जन हर गुण सार, सज्जन सतगुर पुरख है, दुख कड्डे हो मैं मार रहाव, गुरमुखियां सुहागनी, तिन दया पई मन आए, सतगुर वचन रतन है, जो मन्ने सो हर रस खाए, से वड भागी वड जानी है, जिन हर रस खादा गुर पाए, एहो हर रस वण तिन सबत है, भाग हीन नहीं खाए, बिन सतगुर पल्ले ना पवे, मन मुख रहे बिललाए, ओए सतगुर आगे ना निमहे, ओना अंतर क्रोध बलाए, हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए, आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत चोए, सब तन मन हरिया होया, नानक हर वस्या मन सोई, श्री राग महला चौथा, दिन स चढ़ै फिर आथवे, रैन सबाई जाए, आव कटै नर ना बुझै, नित मूसा लाज टुकाए, गुड़ मिठा माया पसरिया, मनमुख लग माखी पचै पचाए, पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए, पुत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोई ना होए रहाओ, गुरमत हर लिव उबरे, अलिपत रहे सरनाए, उन्नी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पत पाए, गुरमुख दरगाह मनी है, हर आप लए गल लाए, गुरमुखा नो पंथ प्रगटा, दर ठाक ना कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मन, नाम रहन लिव लाए, अनहद तुनी दरवाज दे, दर सच्चै सोभा पाए, जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया, तिन्ना सब को कह सबास, तिनकी संगत दे प्रभ, मैं जाचक की अरदास, नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा, जिन अंतर नाम परगास, श्री राग महला पंजवां कर पहला, क्या तू रत्ता देख कै, पुत्र कलत्र शिंगार, रस भोग है खुशियां करह, मान है रंग अपार, बहुत करह परमाईसी, वरत है हुए अपार, करता चेतना आवई, मन मुख अंध गुवार, मेरे मन सुख दाता हर सोए, गुर प्रसादी पाई है, कर्म प्राप्त होए रहाओ, कपड़ भोग लपटाया, सोयना रूपा खाक, हैवर गैवर बहुरंगे, किए रथ अथाक, किस ही चेतना पावे, बिसरिया सब साक, सिरजनहार पुलाया, विण नावे ना पाक, लेंदा बद दुआए तू, माया करह एकत, जिसनो तू पतिया एंदा, सो सन तुझे अनित, अहंकार करह अहंकारिया, व्यापिया मन की मत, इन प्रभ आप पलाया, ना तिस जात ना पत, सतगुरु पुरख मलाया, इको सज्जन सोए, हर जन का राखा एक है, क्या मानस हूं मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे,
दर फेर ना पावे कोई। नानक रत्ता रंग हर सब जग मह चानण होय। श्री राग महला पंजवा मन बलास बहु रंग घना। दृष्ट भूल खुशियां छत्र धार बादशाहियां। विच सहसे परियां भाई रे सुख साध संग पाया। लिखिया लेख तिन पुरख बधाते दुख सहसा मिट गया रहाव। जेते थान थनंतरा केते भावे आया। तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परिया। हुक्म चलाए निसंग होए वरतै अफरिया। सब को वस गत कर लयोन बिन नावे खाक रलिया। कोट के तीस सेवका सिद्ध साधक दर खरिया। ग्रंबारी वड साहबी सब नानक सुपन थिया। श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिया। बिन बुझे मुग्ध अजान सो प्रव चेतना आयु छूटैगी बेबान। सतगुर सेती चित लाए सदा सदा रंग मान। प्राणी तू आया लाह लैन लगा कित कफकड़ी। सब मुकदी चली रैन रहाउ कुदम करे पस पंखी।

जिथे जाए तुद वर्तना किसकी चिंता नाही फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल कै आए पया सरनाए नानक सच्चे पातशाह डुबदा लया कढाए श्री राग महला पंजवां कड़ी मोहत का पहुना काज सवारन हार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया तां गुर का बचन कमाहे रहाउ हरी नाही नह डडोरी पक्की वडन हार लै लै दात पहुंतिया लावे कर तैयार जां हुआ हुक्म किरसान दा तां लुण मिणिया खेतार पहला पैर तंदै गया दूजे भर सोया तीजे झाक चखाया चौथे भोर भया कद ही चेतना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सो जी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हरे अंतर जामी जान श्री राग महला पंजवां सबे गल्ला विसरन इको विसर ना जाओ धंधा सब जलाए कै गुरु नाम दिया सच सुआओ आसा सबे लाए कै इक्का आस कमाओ जिन्नी सतगुर सेविया तिन अगै मिलिया थाओ मन मेरे करते नू सलाहे सबे छड़ सियाण पा गुर की पैरी पाहे रहाओ दुख भुख नह व्यापई जे सुख दाता मन होए कित ही कम ना सिजिया जा हिरदै सच्चा सोए जिस तू रखे हाथ दे तिस मार ना सकै कोई सुख

साधु संग मस्तकते टूठे पावा देव सब किस वसगत साहिब आपे करन करेव सतगुर कै बलिहार ने मनसा सब पूरेव इको दिसै सज्जनो इको भाई मीत इक सह दी सामगरी इक सह दी है रीत इकस स्यों मन मानिया ताहू

जे आवै एक हाथ जन्म पदार्थ सफल है, जे सच्चा शब्द काथ गुरते महल प्राप्ति, जिस लिखिया होवै माथ मेरे मन एक स्यों चित लाए, एक सबिन सब तंद है सब मिथ्या मोह माई, रहाउ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन सीतल होए, जिस को पूर्व लिखिया किन सतगुर चरण गहे, सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लगई जिस हर का नाम आधार, बाहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार, थान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा, ढोई तिस ही नो मिले जिन पूरा गुरु लब्बा, नानक बद्दा घर तहां जिथे मिर्त ना जन्म जरा, श्री राग महला पंजवां सोई त्याई जीअड़े, सिर शाहां पातशाह तिस ही की कर आसमन, जिसका सब सविसाह सब सियाणपां छड कै गुर की चरणी पाह, मन मेरे सुख सहज सेती जपनाओ, आठ पहर प्रभ त्याए तू गुण गोविंद नित गाओ, रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवर ना कोई, जिस सिमरत सुख होए घना दुख दर्द ना मूले होए, सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए, साध संगत होए निर्मला टटिया जम की फास, सुख दाता पै पंजनो तिस आगे कर अरदास, मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवै रास, बहुतो बहुत वखाणी।

सच देव हो अपना नाव। श्री राग महला पंजवा, नाम त्याए सो सुखी, इस मुख उजल होए, पूरे गुरते पाईए, प्रगट सबनी लोए, साध संगत कै घर वसै, एको सच्चा सोए, मेरे मन हर हर नाम त्याए, नाम सहाय।

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जां कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपाव सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त भाई हो जिस देवै प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै हम मैं ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार।

मात पिता एक कसकी मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोहना विसरै, जिन सब किस वस कीता घर इको बाहर इको थान थनंतर आप, जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप, इकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय, जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होय, गुर पूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए, श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया, से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए, तिन उपजै मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम त्याए, सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए, रहाउ जन्म मरण का पाउ गया पाउ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल, जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल, थान थनंतर रव रहया

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे परदान तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आय अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाय मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय गुण गोविंद नित गावणी निर्मल साचै नाय मेरे मन गुर शब्दी सुख होय गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाव मन किया इच्छा पूरियां पाया नाम निदान अंतर जामी सदा संग करने हार पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार पार ब्रह्म सुख सागरु नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जी मिले पाईए शब्द निदान कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाव कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाह कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाव मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाव नेमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाव हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो मरे न आवै जाय ना वे छोड़िया विछड़ै सब मह रहिया समाय दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माय पाई रे मीत करहो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोय रहाव दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवै शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निदान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरहो नहीं रात जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उर तार
मेरे मन हर बिन अवर ना कोए, प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोए रहाउ। रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक, मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक। गिनकी पात सह न जानी मन मुख पास न पाक, अंतर बाहर रव रहया तिसनो जाने दूर, तृष्णा लागी रच रहया अंतर हों मैं कूर। भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर, राख लिहो प्रभ करनहार जी जंत कर दया, बिन प्रभ कोई ना रखनहार महा बिकट जम भया। नानक नाम ना विसरौ कर अपनी हर मया, श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर धन मेरा राज रूप मैं देस, सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेस। हर नाम हृदय ना वसई कार्य कितै ना लेख, मेरे मन हर हर नाम त्याए कर संगत नित साधकी, गुर चरणी चित लाए रहाउ। नाम निदान त्याई है मस्तक होए भाग, कार्य सब सुवारी है गुर की चरणी लाग। हों मैं रोग भ्रम कटी है ना आवे ना जाग, कर संगत तू साधकी अठ सठ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मन तन हरि साचा इहो सुआउ। एथै मिलह वडाइया दरगह पावह थाउ, करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ, मारिया पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ सरनागती सर्व कटा के नाथ, श्री राग महला पंजवा सरन पए प्रभ आपने, गुरु हुआ कृपाल सतगुर कै अपदेसै बिनसे सर्ब जंजाल। अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो वसार रहाउ। गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे बिस्थार। सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार, तीर्थ वर्त लख संजमा पाईए साधु धूर।

आस बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाउ साहिब मेरा निर्मला, तिस बिन रहन ना जाए, मेरा मन तन भुख आते अगली, कोई आन मलावे माए, चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाए, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुरु दाता नाम का पूरा जिस पंडार,

सदा सदा आराधी है। एहा मातव सेख मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पंजवा संत जन हो।

हर जन हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या।

न परौणी उठ चल सह परबात क्या तू रत्ता गिरस्त स्यों सब फुल्ला की बागात मेरी मेरी क्या करह जिन दिया सो प्रभ लोड़ सर पर उठी चलना छड़ जा।

लख चौरासी भ्रमतियां दलब जन्म पायो ए नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए श्री राग महला पंजवां टिचर वसह सहिलड़ी

सहुरड़ सुख वस गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख सबना सहुरै वंजना सब मुकलामन हार नानक तन सुहागनी।

किस है त्यागु मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाओ दुख कलेश ना।

आधारै पाप सगली जाहि हौं तिनकै बलिहारनै जे गुर की पैरी पाहि साध संगत मन वसै साच हर का नाऊ सेवड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरे आ पासार कहो नानक गुर भरम काटिया सगल

मान अपमान मंदी सो सेवक नाही, तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहु कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता।

संत जना मिल पाइया कटियड़ा जमकाल सच्चा साहिब मन बुठा हुआ खसम दयाल पूरा सतगुर भेटिया बिनसिया सब जंजाल मेरे सतगुरा हौ तुद विटो कुर्बान तेरे दर्शन को बलिहार ने

हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसै पूर्ण हो ऐ काल रहाउ। गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जीवड अवर ना कोई। गुर करता गुर करनहार गुरम

अपार गुरी उच्चा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बांछी है तितड़े सत गुर पास पूर

पापी कीतड़ा लिखना जाने कोई जे सौ साहिर मिलिए तिल ना पुजावह रोई कीमत किने ना पाईया सब सुन सुन आखह सोई पीर पै कामर सालक साधक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना काही

तुद पावन सुहागनी अपनी कृपा लह सवार रहाउ गुर शब्दी शिंगारियां तन मन पिर कै पास दुए कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास लाल रत्ती सच पै वसी पाए।

द्वार, दीपक शब्द विगासिया, राम नाम उरहार, नारी अंदर सोहनी, मस्तक मणि प्यार, सुबा सुरत सुहावनी, साचे प्रेम अपार, बिन पेर पुरख ना जानी, साचे गुर कहित प्यार, निस अंधारी सुतिए, क्यों पिर बिन रैन विहाय, अंक जलो तन जालियो, मन धन जल बल जाय, जां धन कंत ना राविया, तां बिरथा जो बन जाय, सेजे कंत महलड़ी, सूती बूझ ना पाए, हौं सुती पिर जागना, किस को पूछो जाय, सतगुर मेली पै वसी, नानक प्रेम सखाय, श्री राग महला पहला, आपे गुण आपे कथै, आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू, आपे मोल अपार, साचो मान महत तू, आपे देवन हार, हर जियो तू करता करतार, ज्यो पावे त्यो राख तू, हर नाम मिले आचार, रहाओ आपे हीरा निर्मला, आपे रंग मजीत, आपे मोती उजलो, आपे भगत बसीठ, गुर कै शब्द सलाहना।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गुर काल अपार, सच रते से उबरी दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार नै दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यो पंखियां जाली बद कहात, गुर राखे से।

सच्चो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानिए है गुरमुख जिन्ना ज्ञान सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए नावै अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए बाज गुरु गुबार है बिन शब्द बूझ ना पाए गुरमति परगास हुई सत

लड़हार गुर शब्दी सालाही अंत ना पारावार तिथे काल ना अपड़े जिथे गुर का शब्द अपार हुक्मी सबे उपजह हुक्मी काल कमाहे हुक्मी काल है वस है हुक्मी साच समाहे नानक जो तिस

तन वांडी झूरे ज्यों जल थोड़ा मछली करन पलाव करे फिर भावे सुख पाई है जाया पे नदर करे।

फिरा बिन गुर बूझ ना पाऊं नाम भूली जे फिरा फिर आऊं जाऊं पुछो जाए पंधाऊआ चले चाकर होई राजन जाने अपना दर कर ठाक ना होई नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोई श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन बसै सो जाने अब पीर सहजै ते सुख अगलो ना लागै जम तीर पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए रहाओ हर का मंदर सोना किया करन हार राव सस दीप अनूप जोत त्रिभवन जोत अपार हाट पटन गढ़।

प्रगत सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लय मलाई कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठौर ना पाइनी खरे खजाने पाए आस अंधे साधु।

दुख अगला मनमुख बूझ ना होई सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होई वेद पकारे वाचिए वाणी ब्रह्म व्यास मुन जन सेवक साधिका नाम रते गुणतास सच रते से जिन गए हम सद बलिहारे जास चहु जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए भगती पाए विहूणिया मुह काला पत खोए जिन्नी नाम वसारिया अवगण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप पछाणे घर वसे हमें तृष्णा जाए नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर की चरनी लाग हर जप नाम त्याए तू जम डर पै दुख भाग दुख घणो दोहागनी क्यों फिर रह सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊं मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहाऊ गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊ तिस बिन घड़ी ना जीवऊ।

ज्यो कलर की पीत तब लग महल ना पाई है जब लग साच ना चीत शब्द रपै घर पाई है।

शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उरतार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रह फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाई है हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिर मर जन्मे वारु वार सब सलाह है आपको बड़ो बडेरी होए गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए नानक शब्द।

सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख घणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो हो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सहज सिंगार सच माने पिर से जड़ी गूड़ा हित प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार सच मिनोह वर कामणी फिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहन ना जाए हर वार घर सुहागणी निर्मल साच नाए मन मह मनुआ जी मरे ता फिर रावै नार इकतता गैराल मिले गाल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजे खिन खपै

डोली है, कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रिया, आए वजून खाए, कार कमाव है सच की, लाहा मिलर जाए, पूंजी साची गुर मिले, ना तिस तिल ना तमाई, गुरमुख तोल तोलाए सी, सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी, गुरठा की सच बोल, आप तलाए तोल सी, पूरे पूरा तोल, कथन कहन ना छुट्टी है, ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाई है।

ता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी है पाइये गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़ी है पी विगसे असने जल मह जी अपाय कै बिन जल मरन तने मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बख्शे भगत भंडार रहाव रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अधिको त्यो सुख कणु मन तन शांत शरीर बिन जल घड़ी ना जीवै प्रभ जाने अब पीर रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक बूंद ना पवई के कर्म मिले सो पाई है।

खवे दुध कौ खफड़ ना दे पापी मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मन

गुरमत हुए ता पाईऐ सच मिलै सुख होई सच्चा नेहो ना टुटई जे सतगुर भेटै सोई ज्ञान पदार्थ पाईऐ त्रिभवन सोजी होई निर्मल नाम ना विसरै

आई मनमुख सूझी ना पवै बिछड़ चोटा खाई नानक दर कर एक है अवर ना दूजी जाय श्री राग महला पहला मनमुख भुलै भलाई।

माया परम भलाई परम भुली दोहागणी ना फिर अंक समाय रहाउ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाय भूली डूंगर थल चढ़ै पर मैं मन डोलाय तुरह विछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिल लाय बिछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है भेखी बहुत अभमान तीरथ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुर बिन किन समझाई है मन राजा सुनतान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत विचार सा तन आप गवाया।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावे है सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख, जो दिसै सो चलसी।

जो आया सो चलसी अमर सो गुर करतार पी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार दर कर महला सोहनी पक्के कोट हजार हस्ती घोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार सोइना रूपा संतिया माल जाल जंजाल सब जग मह दोही फेरिए बिन नामे सिरकाल पिंड पड़े जियो खेलसी बद फैली क्या हाल पुत्ता देख विगसिए नारी सेज पतार चोआ चंदन लाइए कापड़ रूप शिंगार खेहू खेर लाइए छोड़ चले घर बार महर मलूक कहाइए राजा राव के खान चौधरी राव सदाइए जल बलिए अभमान मन मुख नाम वसारिया ज्यों डब ददा कान हों मैं कर कर जाए सी जो आया जग माही सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सवाही गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिये सच नाम सिर छाह पातशाह मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन विसाह मन मुख भोजन पच मोए गुरमुख तरे अथाह श्री राग महला पहला घर दूजा मकाम कर घर बैसना नित चलने की धोख मकाम ता पर जानिए जा रह निह चल लोक दुनिया कैस मुकामी कर सिदक करनी खर्च बंद हो लाग

काम तिसनो वाखिय जिस शेष न होवी लेख असमान तरती चलसी मो काम ओही एक दिन रव चल।

अष्टपदियां। श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरमुख कृपा करे भगत की जय। बिन गुर भगत ना होए, आपे आप मलाए बूझे, ता निर्मल होवे।

बिन सतगुरु को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अन दिन भगत करह दिन राती हमै मोच काया जिस सिंह राता तैसो हुए सच्चे सच समाया आपे नदर करे पाहु लाए गुर शब्दी बीचार सतगुर सेवे सहज उपजे हमै तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उर धार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई नाम निधान हर मन वसै हमै दुख सब जाई सतगुर शब्द सुनाया हम सद बलिहारे जाऊं अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई हर जियो भगत वशल सुख दाता कर कृपा मन वसाई नानक सोभा।

गुर कै पाण जे चल है ता अन दिन राचह हर नाय रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उड़ह चहो दिस जाहे, जेता उड़ह दुख घणे नित दाजह तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुपाहे। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देख आए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिए तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पये किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाओ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाओ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट

सोहणी गुर कहि तपियार। सच्ची भगती सच रती दर सच्चे सच्यार। आए से परवान है सब कुल का करह उदार। सब नदरी कर्म कमावंदी नदरी बाहर ना कोई जैसे।

होई। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याई है, मन मुख बूझ ना पाई। गुरमुख सदा मुख उजले, हर वस्या मन आई। सहजे ही सुख पाई है, सहजे रह समाई। पाई रे दासन दासा हुए, गुर की सेवा गुर भगत है। बिरला पाई कोई रहाओ, सदा सुहाग सुहागणी। जे चलह सतगुर पाई, सदा फिर निह चल पाई है। ना वो मरे ना जाए, शब्द मिली ना विछुड़े। फिर कै अंक समाए, हर निर्मल अत उजला। बिन गुर पाया ना जाए, पाठ पढ़े ना बूझई। भेखी परम पलाए, गुरमती हर सदा पाया। रसना हर रस समाए, माया मोह चकाया। गुरमती सहज सुपाए, बिन शब्द जग दुखिया फिरै। मन मुखा नु गई खाए, शब्दे नाम त्याई है। शब्दे सच समाए, माया भूले सिद्ध फिरै। समाद न लगे सुपाए, तीने लो व्यापत है। अधिक रही लपटाए, बिन गुर मुक्त ना पाईए। ना दुगदा माया जाए, माया किसनो आखिए। क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एहो जियो बद है। हम मैं कर्म कमाए, बिन शब्द है परम ना चुकई। ना विचों हम मैं जाए, बिन प्रीति भगत ना हो गई। बिन शब्द है थाए ना पाए, शब्दे हम मैं मारिए। माया का भ्रम जाए, नाम पदार्थ पाईए। गुरमुख सहज सुपाए, बिन गुर गुण ना जापनी। बिन गुण भगत ना होए, भगत वश्चल हर मन वस्या। सहज मिलिया प्रभ सोए, नानक शब्दे हर सालाही है। कर्म परापत होए, श्री राग महला तीजा। माया मोह मेरे प्रभ कीना, आपे परम पलाए। मन मुख कर्म करह नहीं बूझह, बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग मह चानन, कर्म वसह मन आए। मन रे नाम जपो सुख होए, गुर पूरा सालाही है। सहज मिले प्रभ सोई रहाओ, परम गया पहु भागिया। हर

तै पाई। दैत पुत कर्म धर्म किस संयम ना पड़े, दूजा भाव ना जाने। सतगुरु भेटिया निर्मल हुआ, अन दिन नाम बखाने। एको पढ़े एको नाउ बूझे, दूजा अवर ना जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पलाई,

पाए पण पल पंडित जोत की थके भेखी परम पलाय गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्द ही ते सहज उपजे हर पाया सच सोई रहाओ सहजे गाव्या थाई पवे बिन सहजे कथनी बाद सहजे ही भगत उपजे सहज प्यार बैराग सहजे ही ते सुख शांत होए बिन सहजे जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाद लगाई सहजे ही गुण उचरै।

त्रै गुण भरम भलाए, पढ़िया गुणिया क्या कथिया, जा मुंडो कुत्था जाए। चौथे पद में सहज है,

सहज मलाईसी शब्द मलावा हुई। बिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार, सहज ही सूझी पई सच्चा शब्द अपार। आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार, सहजे अधिष्ट पछाणिय निरपौ।

कै शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल तरना वड़ा भाग नाउ पाईए गुरमत शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहिया समाई इक ना मनमुख शब्द ना पावे बंधन बंद पवाया

शब्द समाए। श्री राग महला तीजा, सतगुर सेवे मन निर्मला, भये पवित्र शरीर, मन आनंद सदा सुख पाया, भेटिया गहर गंभीर, सच्ची संगत बैसना।

पूजै सच्चे सच्चा नाम। जिन्नी हौ मैं मार पछाणिया हौ तिन बलिहारै जाऊं। मन मुख सच ना जा।

जलता देख के भज पए सतगुर सरना। सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्दे पव जल तरना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पथ खोई। सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई। जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन। तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन। नानक भगत सुखिये सदा सच्चे नाम रचन। श्री राग महला पंजवां। जा को मुश्किल अत बने टोई कोय न दे लागू होए दुश्मना। साख पे भज खले सबो भजै आसरा चुकै सब असराओ। केते आवै उस पार ब्रह्म लगै न तत्ती वाओ। साहिब नितानिया का तान आए न जाई तिर सदा। गुर शब्दी सच जान रहाओ। जे को होवै दुबला नंग।

करे ना किछ होवै काज कित आवै उस पार ब्रह्म ता निश्चल होवै राज जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया।

ब्रह्म तन मन शीतल होए, काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोभ प्यार, चारे किलविख उन अग किए, हुआ असुर संघार।

निमुख सिमरत तरिया सास्त सिमरत बेद चार मोखागर बिचरी तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिखदारियां रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़ सातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृत ना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग सब किस कीतो ने अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यो ज्यो ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग दोहां सिरियां का खसम आप।

या तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत न पाया सुर्ग मच पयाल जियो हौवारी हौवार ने कुर्बान तेरे नाम नु रहाओ तुद संसार पाया सिरे सिर तंदे लाया वेख है कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावै नो प्रताप दा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आपहु तुद खवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागणी क्या निशानिया खसम हो खुतिया फिर है निमानिया मैले वेस तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाए जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नु मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सहिया से सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणे का रस आया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लए मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगता हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नदर करह निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिलिया नाम बखानिए सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हौ सतगुर बिटोह कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लए रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जां को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया, रब अपना बिरद संवारिया, कंठ लाए कह रखियों, लगे ना तत्ती वाउ जियो, मैं मन तन प्रभु त्याया, जिए इच्छे अड़ा फल पाया, साहा पातशाह सिर कसम तू, जप नानक जीवै नाउ जियो, तुदे आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सचो सच वर्तदा, जिस पावै तिसै बुझाए जियो, गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चकाया, कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो, गोपी नै गोवालिया, तुदे आपे गोए उठा लिया, हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे भन सवार जियो, जिन सतगुर स्यों चित लाया, तिनी दूजा पाहु चुकाया, निर्मल जोत तिन प्राणिया, ओए चले जन्म सवार जियो, तेरिया सदा सदा चंगे आईया, मैं रात देह बड़े आईया, अण मंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो, श्री राग महला पंजवा, पै पाए मनाई सोए जियो, सतगुर पुरख मलाया, तिस जेवड़ अवन ना कोए जियो, रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा, अम अबे थाम मिठड़ा, पैण भाई सब सजना, तुद जेहा ना ही कोए जियो, तेरा हुक्मे सामने आया, मैं सत का हल जो आया, नाऊ बीजन लगा आस कर, हर बोहल बख्श जमाए जियो, हाँ गुर मिले एक पछाण दा, दुइया कागल चेतना जान दा, हर इक तै कार लायोन, ज्यो पावे तिवें नभाए जियो, तुसी भोगे हो पुंचो हो भाई हो, गुर दी बाण कवाए पैनाइयो, हों हो आ माहर पिंड दा, बाने आंदे पांज शरीक जियो, हों आया सामे ते हंडिया, पांज किरसान मुझे मेहंडिया, कान कोई कड ना हंगई, नानक बुट्टा को गगराओ जियो, हों वारी कुमा जामदा, एक साहा तुद ते आए दा, उजड़ थे हो वसायो, हों तुद विट हो कुर्बान जियो, हर इत्थे नित ते आए दा, मन चिंदी सो फल पाए दा, सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो, मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा, नौ निध नाम निधान हर, मैं पल्ले बद्दा शिक जियो, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुरे अंतर शब्द वसाया, सतगुर पुरख विखा लिया, मस्तक तर कै हाथ जियो, मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुर सिखा लहंदा पाल कै,

बन जा रहा मित्रा हर पाया उधर मंजार हर त्यावे हर उचरे बन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपे आराधी विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्त तिस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहण कै बन जा रिया मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालिए बन जा रिया मित्रा लै मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवै तिसै ना जाने मूड़ा दित्ते नो

लपटाए। कोई गुरमुख हो ऐसो करे विचार, हर त्यावे मन लिव लाए। कहो नानक दूजे पहरे प्राणी, तिस काल न कबहु खाए। तीजे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा, मन लगायाल जंजाल। धन चितवे धन संचवे बन जा रहा मित्रा, हर नामा हर ना संभाल। हर नामा हर हर कदे ना संभाले, जे होवे अंत सखाई। एहो धन संपै माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई। जिसनो कृपा करे गुरमेले, सो हर हर नाम संभाल। कहो नानक तीजे पहरे प्राणी, जे जाए मिले हर नाल। चौथे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा, हर चलन वेला आंदी। कर सेव हो पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा, सब चली रहन विहांदी। हर सेव हो खिन खिन ढिल मूल ना करे हो, जित अस्थिर जुग जुग हो वो। हर स्थिति सदमान हुरलिया, जन्म मरण दुख खो वो। गुर सत गुर स्वामी भेद ना जान हो, जित मिल हर भगत सुखांदी। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, सफल हो रहन भगतां दी। श्री राग महला पंजवां, पहले पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा। धर पाए ता उदरे माही, दसी मासी मानस किया बन जा रहा मित्रा। कर मोहलत कर्म कमाहे, मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे। जैसा लिखत तुर पाया, मात पिता भाई सुत बनता। तिन भीतर प्रभु संजोया, कर्म सकर्म कराए आपे। इस जनते वस किश नाही, कहो नानक प्राणी पहले पहरे। धर पाए ता उदरे माहे, दूजे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा। पर जवानी लहरी दे, बुरा भला ना पछाणी बन जा रहा मित्रा। मन मत्ता अहमेव, बुरा भला ना पछाणे प्राणी। आगे पंथ करारा, पूरा सतगुर कबहू ना सेविया। सिर ठाडी जम जंदारा, धर्म राय जब पकरस बबरे। तब क्या जवाब करे, कहो नानक दूजे पहरे प्राणी। पर जोबन लहरी दे, तीजे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा। एक संचय अंध अज्ञान, पुत्र कलत्र मोहे लपटिया बन जा रहा मित्रा। अंतर लहर लुभान, अंतर लहर लुभान प्राणी। सो प्रभ चित न आवै, साध संगत स्यों संग न किया। बहु जोनी दुख पावे, सिरजनहार वसारिया स्वामी। एक निमख न लगो ध्यान, कहो नानक प्राणी तीजे पहरे। बिक संचे अंध अज्ञान, चौथे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा। दिन नेड़े आया सोई, गुरमुख नाम संभाल तू बन जा रहा मित्रा। तेरा दरगाह बेली होए, गुरमुख नाम संभाल प्राणी। अंते हुए सखाई, एहो मोह माया तेरे संग ना चाले। झूठी प्रीत लगाई, सगली रहन गुदरी अंधियारी। सेव सतगुर चानण होए, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे। दिन नेड़े आया सोए, लिखिया आया गोविंद का बन जा रहा मित्रा। उठ चले कमाणा साथ, एक रत्ती बिनवना देव नी बन जा रहा मित्रा। ओनी तकड़े पाए हाथ, लिखिया आया पकड़ चलाया। मन मुख सदा दुहेले, जिन्नी पूरा सतगुर सेविया। से दरगाह सदा सुहेले, कर्म धरती शरीर जोग अंतर। जो बो ऐसो खात, कहो नानक भगत सोह दरबारी। मन मुख सदा पवात, श्री राग महला चौथा। कर दूजा संत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मुंद यानी पेयड़। क्यों कर हर दर्शन पिखे, हर हर अपनी कृपा करे। गुरमुख सहोरड़ कम सिखे,
सहोरड़ कम सिखे गुरमुख हर हर सदा ते आए सहिया विच फिरे सुहेली हर दरगाह बहां लुड़ाए लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरख मुंद यानी पेयड़ गुरमुख हर दर्शन दिखे व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा पिनसिया हर

पर पाया अबनासी ना कदे मरे ना जाया व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया हर सत सते मेरे बाबला हर जन मिल जन सुहंदी एव कड़ै हर जप सुहेली विच सहुरड़ै खरी सोहंदी सहुरड़ै विच खरी सोहंदी जिन पेव कड़ै नाम संभालिया सब सफल्यो जन्म तिन्ना दा गुरमुख जिन्ना मन जिन पासा ढालिया हर संत जना मिल कार्ज सोया वर पाया पुरखे आनंदी हर सत सत मेरे बाबला हर जन मेल जन सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर कपड़ो हर सुबा देव हो जित सवरै मेरा काजो हर हर भगती काज सुहेला गुर सत गुर दान दवाया खंड वर पंड हर सुबा होई एहो दान नार लै रलाया होर मनमुख दाज जे रख दखल है सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबला फिर मेल तन वेल वदंदी हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया हर पुरख ना कब ही बिनसै जावे नित देवै चढ़ै सो आया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सोहंदी हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंदी श्री राग महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निबह तेरे नाले संग सहाई हर नाम ते आई बिरथा कोई ना जाई मन चिंदे सी फल पावह चरण कमल चित लाए जल थर पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाली नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जीओ मित्रा दिक सागर संसारी चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापै गुरपूरा भेटै वडभागी आठ पहर प्रभ जापै आदि जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारी नानक सिख दे मन प्रीतम बिनहार झूठ पसारी मन प्यारिया जियो मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निहचल मल्ली हर दर सेवे अलख अपेवे निहचल आसन पाया तह जन्म ना मरन ना आवन जाना संसार दुख मटाया चित्रगुप्त का कागद फारिया जमदूता कछु ना चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लगे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुख गामी इच्छ सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले श्री वचुनिया अंतर बाहर सरबत रविया मन उपजिया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मेल जीवे मीना हर पी आगाने अमृत बाने सर्व सुखा मन उठे श्री तर पाए मंगल गाए इच पुन्नी सतगुर तुठे लड़लीने लाए नौ निद पाए नाओ सर्बस ठाकुर दीना
नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना। श्री राग के शंत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दखना हठ मजाहू महापिरी पस्ते क्यों दीदार संत सरनाई लभ।

दे मन वांछत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारी नाथ के नाते सब कै साथे जप जुए जन्म ना हारी है नानक की बेनंती प्रभ पह कृपा कर पव जल तारी है दखना धूड़ी मजन साधके साई थिए कृपाल लदे हब्बे थोकड़े नानक हर तन माल संत सुंदर स्वामी ताम।

आप मोहियो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिजाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोहया भगत लखियन कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ न माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं पोहया दखना साई नाम अमोल कीम न कोई जान दो जिन्ना भाग मथाए से नानक।

तू आपे कमल अलिप्त है, सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा, एक निमख घड़ी कर ख्याल, हर तुदहों बाहर किस नहीं, गुर शब्दी वेख निहाल। सलोक महला तीजा, हुक्म न जाने बहुता रोवै, अंदर धोखा नींद ना सोवै, जे तन खसमै चलै रजाई, दर कर सोभा महल बुलाई, नानक करमी एह मत पाई, गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा, मनमुख नाम विहूणिया, रंग कुसुंबा देख ना भुल, इसका रंग दिन थोड़िया, सोचा इसदा मुल। दूजे लगे पच मोए, मूर्ख अंध गवार, बिष्टा अंदर कीट से पै पचह वारो वार, नानक नाम रते से रंगले, गुर कै सहज सुपाए, भगती रंग न उतरै, सहजे रह सुमाए पौड़ी। सृष्ट उपाई सब तुद, आपे रिजक संबाहया, एक वल छल कर कै खाम दे, मुहों कूड़ कुसत तिन्नी ढाया, तुद आपे पावै सो करह, तुद ओतै कम ओए लाया, इक ना सच बुझायो न, तिना अतुट भंडार दिवाया, हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हाथ तड़ाया। सलोक महला तीजा, पढ़ पढ़ पंडित बेद बखान है, माया मोह सवाई, दूजे पाए हर नाम वसारिया, मन मूर्ख मिले सजाए, जिन जियो पिंड दिता, तिस कबहू ना चेतै, जो देंदा रिजक संभाए, जम का पाहा गलहू ना कटिए, फिर आवे जाए, मनमुख किशु ना सूजे अंधले, पूर्व लिखिया कमाए, पूरे भाग सतगुर मिले सुख दाता, नाम वसै मन आए, सुख मान है सुख पैनना, सुखे सुख वेहाय, नानक सो नाओ मनो ना विसारी है, जित दर सच्चै सोभा पाए। महला तीजा, सतगुर सेव सुख पाया, सच नाम गुणतास, गुरमति आप पछाणिया, राम नाम परगास, सचो सच कमावना, वडियाई वड्डे पास, जियो पिंड सब तिसका, सिफत करे अरदास, सच्चा शब्द सलाहना, सुखे सुख निवास, जप तप संयम मने माहे, बिन नावै त्रिग जीवास, गुरमति नाव पाईऐ, मनमुख मोहे विनाश, ज्यों भावै त्यों राख तू, नानक तेरा दास पौड़ी, सब को तेरा तू सब सदा, तू सब नारास, सब तुदै पासो मंग दे, नित कर अरदास, जिस तू देहे तिस सब किस मिलै।

भावै थाई जिस हर भावै तिस गुर मिलै सो हर नाम ते आए गुर शब्दी हर पाई हर पार लंघाए मन हट किन ना पायो पुछो वेदा जाए नानक हर की सेवा सो करे जिस लय हर लाए श्लोक महला तीजा नानक सो सूरा वरियाम जिन विचो दुष्ट अहंकरन मारिया गुरमुख नाम सलाही जन्म सुवारिया आप हुआ सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया सोहन सच द्वार नाम प्यारिया मनमुख मर है अहंकार मरन बगाड़िया सबो वरतै हुक्म क्या करह विचारिया आपो दूजै लग खसम वसारिया नानक बिन नावै सब दुख सुख वसारिया महला तीजा गुर पूरै हर नाम दड़ाया तिन विचो भरम चुकाया राम नाम हर कीरत गाई कर चानन मग दिखाया हौ मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम वसाया गुरमति जम जोहे ना साकै साचै नाम समाया सब आपे आप वरतै करता जो भावै सो ना लाया जन नानक नाम लये ता जीवै बिन नामै खिन मर जाया पौड़ी जो मिलिया हर दी बाण सिओ सो सबनी दी बाणी मिलिया जिथै ओह जाए तिथै ओह सुरखरु उसकै मुहे दिथै सब पापी तरिया ओस अंतर नाम निदान है नामो परवरिया नाओ पूजिया नाओ मनिया नाए किल विख सब हिरिया जिन्नी नाम त्याया एक मन एक चित से अस्थिर जग रहिया श्लोक महला तीजा आत्मा देव पूजिया गुर कै सहज सुभाए आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत होए ता घर ही परचा पाए आत्मा अडोल ना डोले गुर कै भाए सुभाए गुर विन सहज ना आवई लोभ मैल ना विचों जाए खिन पल हर नाम मन वसै सब अठ सठ तीरथ नहाए सच्चे मैल ना लगई मल लागै दूजै पाए धोती मूल ना उतरै जे अठ सठ तीरथ नहाए मनमुख कर्म करे अहंकारी सब दुखो दुख कमाए नानक मैला उजल तां थी है जा सतगुर माहि समाए महला तीजा मनमुख लोक समझाइए कदहु समझाया जाए मनमुख रलाया नार लै पै किरत फराए लिव धात दुए रहा है हुक्मी कार कमाए गुरमुख अपना मन मारिया शब्द कसवट्टी लाए मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल सत मन ही मन समाए मन जो इच्छे सो लहै सच्चै शब्द सुभाए अमृत नाम सद पुंचिय गुरमुख कार कमाए विन मनै जे होरी नाल लुजना जासी जन्म गवाए मनमुखी मन हठ हारिया कूड़ पसत कमाए गुर प्रसादी मन जिणै हर सेती लिवलाए नानक गुरमुख सच कमावै मनमुख आवै जाए पौड़ी हर के संत सुनो जन भाई हर सतगुर की एक साखी जिस तुर भाग हुआ मुख मस्तक इन जन लै हृदय राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुर बचनी सहजे चाखी तह भया प्रगास मिटिया अंधियारा ज्यो सूरज रैन कराखी अदिष्ट अगोचर अलख निरंजन सो देखिया गुरमुख आखी सलोक महला तीजा सतगुर सेवे अपना सो सिर लिख लाए विचों आप गवाए कै रहन सच लिवलाए सतगुर जिन्नी ना सेवियो तिन्ना बिरथा जन्म गवाए नानक जो तिस भावै सो करे कहना किछु ना जाए महला तीजा मन वेकारी वेड़िया वेकारा कर्म कमाए दूजै भाए अज्ञानी पूज दे दरगाह मिलै सजाए आत्म देव पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए जप तप संयम भाणा सतगुरु का कर्मी पल्लै पाए।
नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपुह मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपुह मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपुह मन मेरे, जित दाल दे दुख भुख सब लह जाती। हर हर नाम जपुह मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती।

कर्म परापत होए, सत्य रत्ते गुर शब्द सियो, तिन सच्चे सदा लिव होए, नानक जिसनो मेले ना विछड़ै, सहज समावै सोई महला तीजा, सो भगौती जो भगवंत जाने, गुर प्रसादी आप पछाण, धावत राखै इकत कर आने, जीवत मरै हर नाम बखाण, ऐसा भगौती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए महला तीजा, अंतर कपट भगौती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए, पर निंदा करे अंतर मल लाए, बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए, सत संगत सिंह बाद रचाए, अनदिन दुखिया दूजै पाए रचाए, हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए, पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर ना सुवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही, सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन को हुआ कृपाल हर से

पहला क्या हंस क्या बगला जां कौ नदर करे जो तिस भावे नानका कब हो हंस करे पौड़ी कीता लोड़ी है कम सो हर पह आखी है कार्य दे सवार सतगुर सच साखी है संता संग निदान अमृत चाखी है तै पंजन मेहरवान दास की राखी है नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखी है श्लोक महला तीजा जियो पिंड सब तिसका सब सह दे आधार नानक गुरमुख सेवी है सदा सदा दातार हौ बलिहारी तिनको जिन त्याया हर निरंकार उन्ना के मुख सद उजले उन्ना नू सब जगत करे नमस्कार महला तीजा सतगुर मिले उल्टी पही नव निद खर्चियो खाओ अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिर निज कर वसे निज थाए अनहद धुनी सद वज दे हुन मन हर लिव लाए नानक हर भगत तिना कै मन वसे जिन मस्तक लिखिया धुर पाए पौड़ी हौ ढाडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया हर अंदर सुई पुकार ढाडी मुख लाया हर पुछया ढाडी सद कै कित अर्थ तू आया नित देव हो दान दयाल प्रभ हर नाम ते आया हर दाता हर नाम जपाया नानक पै नाया शुद्ध

जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना कुमा जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड तार, पेखत ही जमराव हसे। ऐसा तैं जग भरम लाया, कैसे बूझे जब मोहया है माया रहाओ। कहत कबीर छोड़ बिख्या रस, इत संगत निश्चौ मरना। रमैया जपोह प्राणी, अनत जीवन बाणी। इन बिद भव सागर तरना, जां तिस भावै ता लागै भाव। परम भलावा विचों जाए, उपजै सहज ज्ञान मत जागै। गुर प्रसाद अंतर लिव लागै।

प्राणी जरा मरण भव विसर गया, कटंब देख बिकसह कमला ज्यो, पर कर जो है कपट नरा, दूड़ा आयो है जमह तना, तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए, कोई कोई साजन आई कह, मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाई, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, विखम घोर पंथ चालना प्राणी, राव सस तह ना प्रवेशं, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरा मन प्रगट भया है, देखियले धर्म राहो, तह कर दल करन महाबली।

बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचर्ज एक सुनोरे पंडिया अब किश कहन न जाय सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह तार चोए अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब परम पलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाण।

नारे गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना अहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछतावेगा मूड़िया तू कमल कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रय मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तूले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसम ते तौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल लाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिख भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी दे देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझे थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक

तुम जो नायक आछो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर आराध्य मोको विचार देहू रविदास सम दल समझावै को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वडभागी हर नाम त्याया गुरपूरै हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चलै जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पलै मेरा प्राण सखाई सदा नाल चलै गुरपूरै हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पलै जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावै मेरे प्राण जीवाया।

उत्तम दसे तिसकै हौ वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हौ सतगुर विटो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरै हर नाल देखा लिया हौ सतगुर विटो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब एका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हौ सतगुर विटो बताया जियो जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौपदे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवै बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ भोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी तन सो देश जहां

आत्मगर बिखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख बधाते, तुद जेवड अवर ना सूरा जियो। रेन संतन की मेरा मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद अपागी। सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिनसे पूरा जियो। माज महला पंजवा विसर नाही ए बड़दाते, कर किरपा भगतन संग राती। दिन सरहण जियो तुद त्याई, एहो दान मोहे करना जियो। माटी अंधी सुरत समाई, सब किश दिया पलिया जाई। आनंद बनोद चोज तमाशे, तुद भावै सो होना जियो। जिस दा दिता सब किश लैना, शक्ति ही अमृत भोजन खाना। सेज सुखाली सीतल पवना, सहज केल रंग करना जियो। सा बुद्ध दीजै जित विसरह नाही, सा मत दीजै जित तुद त्याई। सास सास तेरे गुण गावा, ओट नानक गुर चरना जियो। माज महला पंजवा सिफत सलाहन, तेरा हुक्म रजाई। सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई, सोई जप जो प्रभ जियो पावै। भाणे पूर ज्ञाना जियो, अमृत नाम तेरा सोई गावै। जो साहिब तेरा मन पावै, तू संतन का संत तुम्हारी। संत साहिब मन माना जियो, तू संतन की करह प्रतपाला। संत खेल है तुम संग गोपाल।

जो तुद मन पानी तिनकै संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अगाना जीयो माज महला।

प्यास प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यों बारक पी खीर अगावे ज्यों निरतन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यों अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवां अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब

मुक्त सह परापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त आघाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना तिसह परापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भय कनेरे नाम निदाना गुरमुख पाई है कहो नानक विरली दीठा जियो माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरा जन्म पदार्थ गहर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पए पनीता सगल उदारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जाको खोज है सर्ब उपाय वडभागी दर्शन को विरला पाए ऊच अपार अगोचर थाना ओह महल गुरु देखाई जियो गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो नाम औखद मोको साधु दिया किल बिख काटे निर्मल थिया आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बनास

तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस विटहु जो मन तन तुद आराधे जीउ तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिस अपने साजन जिन गुर मेल सो प्रभ लादे जीउ से वड पागी जिन तुम जाने सब कै मदे अलिपत निर्बाणी साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जीओ तिनकी शरण परया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजै नानक कौ तिस प्रभ अगम अगादे जीओ माज महला पंजवा तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम होवा असथूली तू जल निध तू फेन बुदबदा तुद बिन अवर ना पालिए जीओ तू सूत मणिए पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद।

आपे तुद संभालिए दियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक पूरी नदर निहार।

से नेतर परवान जिन्नी दर्शन पेखा से कर भले जिन्नी हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उधारी किल बिख काट हुआ मन निर्मल

सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख भया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बखाना जल थल नीर भरे सरस भर

आला सगले तृप्त अगाए जियो वाण त्रिण त्रिपवन की तुन हरिया करनहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै आराधी मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदा।

तेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा हुवै, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख पाया।

जी प्राण प्रभ मन है आधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो, मनसा तार जो धरते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, हास मनोरथ पूरन होवे, टीटत गुर दरसाया जियो, अगम अगोचर किस मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे है ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पुलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण।

ठाकुर अत पहारी, तुमरे कर्तब तुम ही जान हो, तुमरी ओट गोपाला जियो, गुण गावत मन हरिया हुए, कथा सुनत मल सगली खोए।

गुर प्रसाद मन धारूं, तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्ब मया प्रतपाला जीओ, सत सत सत प्रभ सोई।

आय कर कृपा प्रभ भक्ति लाभ हो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवां पये कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वरसै सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठांड पाई करतारी जियो अपने जी जंत प्रित पारी ज्यों बारक माता संभारी दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारी जियो जल थल पूर रहया मेहरवाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन सतिस सदा त्याई जेखिन मह सगल उदारी।

मन तन हरियावल रब नानक नदर निहारे जीओ माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रब प्यारे से अस्थल सोइन चौबारी जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी जीओ हर रुखी रोटी खाए संभाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जीओ संता से तिरंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दलाब दे खोई अज्ञानी।

नानक दान किया दुख भंजन रत्ते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जियो। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जियो। सुख दाता दुख भंजन हारा,

तुद त्याई जीओ। माज महला पंजवा सभ्य सुख पये प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे। सहज समाध लगी लिव अंतर, सोरा

गुर के चरण बसे मन माही, अंगीकार किया तिन करतै, दुख का डेरा टाहया जीओ, मन पन वसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसै कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जीओ, जो किछ करे सो आपे आपै, बुद्ध सियाणप किशु ना जापै, आपणिया संतां नूं आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ, चरण कमल जन का आधारू, आठ पहर राम नाम वापारू, सहज आनंद गावहै गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ, माज महला पंजवां, सो सच मंदर जित सच त्याई, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई, सा धरत सुहावी जित वस है हर जन, सच्चे नाम विटोह कुरबाणो जीओ, सच वडाई कीम ना पाई, कुदरत करम ना कहना जाई, त्याए त्याए जीव है जन तेरे, सच शब्द मन माणो जीओ, सच सलाहन वड भागी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

नानक सच तिहाई साधही अंतर जामी जानू जीओ माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूरत सिमरत पल वंज है जीवन

परम खोया गुरु पूरे देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वाडे ऊचे अपारा नौ निज नाम भरे भंडारा आदि अंत मद प्रभ सोई दूजा लवै ना लाई जियो।

तिन्ही सुख पाया। सो जन्म न जूऐ हारी जीउ, नाम अवखद जिन जन तेरे पाया। जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती। सफल एहा है कारी जीउ, दृष्ट धार अपना दास सवारिया। घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सवेण होर दूजा नाई। बाबा नानक एह मत सारी जीउ, माज महला पंजवा। मन तन रत्ता राम प्यारी, सरबस दीजै अपना वारी। आठ पहर गोविंद गुण गाई है,

जय सागर कटिया जम की फासा जीव चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव माज महला पंजवां सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिते लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाओ आप जपाई गुर बोहित पाया कृपाते नान

सा भली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लग है जिस मीठा जियो। सब परोई इकत धागे, जिस लाए लए सो चरनी लागे। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निरंजन।

निर्मल जिन देखे सब उतर कलमल नानक नाम त्याए त्याए जीव बिनसया भ्रम भव तीठा जीव माज महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगे।

मन लागी, गुण गावै अन दिन नित जागी। बाहां पकड़ तिस स्वामी मेले, जिस कह मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांच है, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइए, जिस सिमरत वार निह चल पाइए। नानक कहो प्रभ होए दयाला, तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला, घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

माया मोह चुकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारनिया गुरमति परगास हो आजी अन दिन हर गुण गावणिया रहाऊ।

भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साथ मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आन दिन सदा रह रंग राता दर सच्चै सो जी पावणिया पाप पुन की सार ना जानी दूजै लागी परम पुलाणी।

माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तकड़ी तो लै संसारा गुरमुख होवै सोई पूजै।

सदा नाली गुर प्रसादी को नदर निहाली मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुता।

जन पाया ज्योति ज्योत मलावणिया रहाव इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अति अगम अपारा गुरमुख हो ऐसो ही पाई आपे बख्श मलावणिया मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई गुर प्रसादी सच चित लाई सच

महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलय किनै चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवे दर सच्चै

मन वसाई अंदिन सदा रह पै अंदर पै मार परम चुकावणिया परम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजी गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणे परमे भूला।

आई गुर प्रसादी हों मैं जाई नानक नाम वसै मन अंतर दर सच्चै सोभा पावणिया माज महला तीजा सतगुर सेवियां वड्डी वड्याई हर जी अचिंत वसै मन आई हर जी ओ सफले ओ बिरख है अमृत जिन पीता तिस तिखा लहावणिया हों वारी जी ओ वारी सच संगत मेल मनावणिया हर सत संगत आपे मेलै गुर शब्दी हर गुण गावणिया रहाउ सतगुर सेवी शब्द सुहाया जिन हर का नाम मन वसाया हर निर्मल हों मैं मैल गुआई दर सच्चै सोभा।

शब्द बड़ियाई देवणिया रहाउ वेला वखत सब सुहाया जित सच्चा मेरे मन पाया सच्चे सेवै सच वड़ियाई गुर किरपा ते सच पावणिया पाओ भोजन।

निर्मल बाणी शब्द वखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिलै वडियाई, दुख सुख सम कर जानणिया, माज महला तीजा, तेरिया खाणी तेरिया बाणी, बिन नावै सब परम पलाणी।

पंडित पढ़ है साधना पाव है, दूजे भाई माया मन परमाव है, माया मोहे सब शुद्ध गुआई।

बिदमाया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार ना पावणिया आपे रंगे रंग चढ़ाई से जल राते गुर शब्द रंगाई हर रंग चढ़िया अत अपारा हर रस रस गुण गावणिया गुरमुख रिद सिद्ध सच संयम सोई।

गुरमुख जात पत सब आपी नानक गुरमुख नाम त्याई नामे नाम समावणिया माज महला तीजा उत्पत परलो शब्दे होवे शब्दे ही फिर ओ पत होवे गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा गुरमुख अपाए समावणिया हौ वारी जीओ वारी गुरपूरा मन वसावणिया गुर ते शांत भगत करे दिन राती गुण कह गुणी समावणिया रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी गुरमुख पवन बै संतर खेलै वडाणी सो नगुरा जो मर मर जमै नगुरे आवण जावणिया तिन करतै एक खेल रचाया ताया शरीरै विच सब किछ पाया शब्द भेद कोई महल पाई महले महल बनावणिया सच्चा साहु सच्चे बणजारी सच बणजह गुर हित अपारी सच विहाजह सच कमावह सचो सच कमावणिया बिन राशी को वत क्यों पाई मनमुख भूले लोक सबाई बिन राशी सब खाली चले खाली जाए दुख पावणिया एक सच बणजह गुर शब्द प्यारी आप

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागां गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रहै संसारी, गुर कै तकिया नाम अधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

अमृत नाम तिया वणिया रहाउ। अमृत बोले सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा नैणी। अमृत कथा कह सदा दिन राती, अवरा आख सुनावणिया। अमृत रंग रत्ता लिवलाई, अमृत गुर

अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सेवै हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुख दाता पी अमृत सब भुख लह जावणिया माज महला तीजा अमृत वरसै सहज सुपाई गुरमुख विरला कोई जन पाई अमृत पी सदा तृप्तासी कर कृपा तृष्णा बुझा।

निश्चल निज घर वासा पावणिया। गुरु कै शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया। सचो सचा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम संभाल है से वड भागी। सच्चा शब्द आप मलाई, सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओहो अगम अगोचर शब्द सुध होवे। अन दिन सच शब्द सलाई, होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ था के शांत ना आई, तृष्णा जाले सुध ना काई। बिख विहाज है बिख मोह प्यासी, कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाणा। नानक एको नाम वरतै मन अंतर, गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा, वर्ण रूप वरतह सब तेरे। मर मर जमह फिर पवह कनेरे, तू एको निश्चल अगम अपारा। गुरमति बूझ बुझावणिया, हौ वारी जियो वारी। राम नाम मन वसावणिया, किस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई। गुरमति आप

प्रगट वरतै सब थाई ज्योति जोत मलावणिया तिसना अगन जलै संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा।

सच सलाही सब घट अंतर सचो सच सुहावनिया सच सलाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावनिया सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निश्चल आवे ना जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमती सच समावनिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावनिया महाज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत सब माहि समाणी निर्मल बाणी हर सालाही जप हर निर्मल मैल गवावनिया हौ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावनिया हर निर्मल गुर शब्द सलाही शब्दो सुन तिसा मटावनिया रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आई मन तन निर्मल।

निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन वसावणिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे हौ मैं मैल गुर शब्दे धोवे निर्मल वाजे अनहद धुन बाणी दर सच्चे सोभा पावणिया निर्मल ते सब निर्मल होवे निर्मल मनुआ हर शब्द परोवे निर्मल नाम लगे बड़भागी निर्मल नाम सुहावणिया सो निर्मल।

माया मोह इस मनह न चाई, अंतर कपट दुख पावनिया, गुरमुख भगत जा आप कराई, तन मन राता सहज सुपाई, बाणी वज्जे शब्द बजाई, गुरमुख

तिसै मलाई, गुर शब्द मिलह से विछड़ह नाही। सहजे सच समावणिया, तुझते बाहर कछु ना होए। तू कर कर वेखह जानह सोई, आपे

कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावनिया रहाउ आपे करता कारण कराई जित पावै तित कारै लाई पूरै भाग गुर सेवा होवै गुर सेवा ते सुख पावनिया मर मर जीवै ता किछ पाई गुर प्रसादी हर मन वसाई सदा मुकत हर मन वसाई सहजे सहज समावनिया बहु कर्म कमावै मुक्त ना पाई दे संतर भवै दूजै भाई खुआई बिरथा जन्म गवाया कपटी बिन शब्द दुख पावनिया धावत राखै ठाक रहाई गुर प्रसादी परम पद पाई सतगुर आपे मेल मलाई मिल प्रीतम सुख पावनिया एक कूड़ लागे कूड़े फल पाई दूजे भाई बिरथा जन्म गवाई आप डुबे सगले कुल डुबे कूड़ बोल बिख खावनिया इस तन मह मन को गुरमुख देखै भाई भगत जा हो मैं सुखै सिद्ध साधक मोल धारी रहे लिवलाई तिन पी तन मह मन ना दिखावनिया आप कराए करता सोई होर के करे कीता क्या होई नानक जिस नाम देवै सो लेवै नामो मन वसावनिया माज महला तीजा इस गुफा मह अखुट भंडारा इस विच वसै हर अलख अपारा आपे गुपत प्रगट है आपे गुर शब्दियां पवियावनिया हों वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावनिया अमृत नाम महारस मीठा गुरमती अमृत पियावनिया रहाओ हों मैं मार बजर कपाट खुलाया नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया बिन शब्द नाम ना पाए कोई गुर कृपा मन वसावनिया गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया ज्योति ज्योत मिली मन मा

चार दुख पाए मन मुखे अंधे सूझै नाही फिर घेरे आए गुरमुख वत पावणिया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन वेखै हऊ मैं मैल जाए बैस सुखान सद हर गुण गावे सच

दिन राती गुरमति शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हाथ कुंजी होरत दर खुलै नाही गुर पूरै भाग मनावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिलै मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हउमै मार बंधन सब तोड़ै गुरमुख शब्द सुहावणिया हउ वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावै गुरमुख नाचै।

गुरमुख हर दर शोभा पाई, गुरमुख विचों आप गवाई, आप तरह कुल सगले तारी, गुरमुख जन्म सवारनिया, गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हूं मैं चूकै पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सहज समावनिया, गुरमुख नाम मिले वडियाई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती।

कर आए, गुरमुख हृदय उठाया पियाई, नानक नाम मिलै वडियाई, पूरे गुर ते पावणिया, माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, शब्द दिखाए सतगुरु।

मेरा, जम्मण मरण ना चूकै फेरा, गुरमुख हो ऐसो हों मैं मारी, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दुही मिलकै सृष्ट उपाई, दुए मार जाए इकत घर आवै, गुरमत सहज समावणिया, कर ही माही दूजै पाए अनेरा, चानण होवै छोडै होमै मेरा, प्रगट शब्द है सुखदाता, अन दिन नाम त्यावणिया, अंतर जोत प्रगट पा सारा, गुरसाखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति जोत मलावणिया, अंदर महल रतनी भरे भंडारा।

रतियों मासा तोल कढ़ावणिया पे अड़ै फिर चेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही खरी क्वालियो कुरूप कलखणी सुपने फिर नहीं पावणिया पे अड़ै फिर मन वसाया पूरे गुर हदूर दिखाया कामण फिर राख्या कंठ लाई शब्दे फिर रावै सेज सुहावणिया।

पाड़ बोज मानव सावणिया गुरमुख पढ़ है हर नाम सलाह है दर सच है सूबा पावणिया रहाउ अलक अपेरो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर पीटे नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूट है गुर शब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख मै राता बिख ही माही पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किशु ना होए बख्शे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश श्रृंगार बनाई मन मुख आंदे से।

शब्द पुछाता, अन दिन भगत करे दिन राती, सहजे ही सुख पावनिया, सब मैं वरतै एको सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, नानक नाम रते जन सोहै, कर किरपा आप मलावनिया, माज महला तीजा, मनमुख पढ़ै पंडित कहावै है, दूजै पाए महा दुख पावै है, बिख्या माते किस सूजै नाही, फिर जूनी आवनिया, हौ वारी जियो वारी, हौ मैं मार मनावनिया, गुरसेवा ते हर मन वसिया, हर रस सहज पी आवनिया, रहाउ वेद पढ़ै हर रस नहीं आया, वाद वखाणै मोहे माया, अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावनिया, अकथो कथियै शब्द सुहावै, गुरमती मन सचो पावै, सचो सच रवै दिन राती, इहो मन सच रंगावनिया, जो सच रत्ते तिन सचो पावै, आपे दे ना पछो तावै, गुर कै शब्द सदा सच जाता, मिल सच्चे सुख पावनिया, कूड़ कसत तिन्ना मैल ना लागै, गुर प्रसादी अन दिन जागै, निर्मल नाम वसै कट पीतर, ज्योति जोत मलावनिया, त्रै गुण पढ़ै हर तत् ना जानै, मूलों भुले गुर शब्द ना पछाणै, मोह व्यापे किस सूजै नाही, गुर शब्दी हर पावनिया, वेद पकारै त्रिविध माया,

हर रस चख साध पावणिया, हर रस चख है से जन निर्मल, निर्मल नाम त्यावणिया रहाउ। सो निह कर्मी जो शब्द बीचारी, अंतर

जलाई सो हर सिउं चित लाई हर दर महली शोभा पावणिया रहाउ देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त्र जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारी आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सत संयम सच कमावै गुर पूरे नाम त्यावणिया पे अड़ै तन परम फुलाणी दूजे लागी फिर पछोताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपने सुख ना पावणिया पे अड़ै तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखै नाले फिर कै सहज रह रंग राती शब्द शिंगार बनावणिया सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया दूजा भाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहिया घट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख नाम चित ना आवै बिन नावे बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मिलै शब्द पछाणे नानक नाम मिलया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावणिया माज महला चौथा आदि पुरख अपरंपरे।

प्रीतम मेरे तुद बिने अवरना कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावनिया अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करह तू लह मलाई पूरे गुर कै शब्द त्याई है शब्द सेव सुख पावनिया रसना गुणवंते गुण गावे नाम सलाहे सच्चे पावे गुरमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे सोभा पावनिया मनमुख कर्म करे अहंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर फिर आवन जावनिया आपे करता दे वडियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पहु भंजन गुर शब्दी सुख पावनिया माज महला पंजवां कर पहला अंतर अलख न जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब

कौन कर्म कौन निःकर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिया किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जित धावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याय, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता, तन गिरहि उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, होमै बादा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख निःकर्मा, गुरमुख करे सो सुपाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख विछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जित तावत रहता, गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याय, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बणाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस ते होयो आनंता, नानक एकस माहि समाए जियो, माज महला पंजवां, प्रभ अबनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला।

रख मन तन पावणिया। तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावणिया। रहाव तेरा कीता जिस लागे मीठा, घट घट पार ब्रह्म तिन जन दीठा। थान थनंतर तू है तू है, इको एक वरतावणिया। सगल मनोरथ तू देवन हारा, भगती

कर कृपा दास नदर निहाली गुण गावह पूर्ण अबनासी कह सुन तोट ना आवणिया एथे उथे तू है रखवाला मात गर्भ मह तुम ही पाला माया अग्न ना पो है तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बिन अवर ना जानणिया जिसको तू प्रभ पया सहाई।

ऊंच अथाह अपार अमोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावणिया, माज महला पंजवा कर दूजा, नित नित दयो संभाली है, मूल ना मनहु विसारी है, रहाओ संतां संगत पाई है, जित जम कह पंथ ना जाई है।

पाई है, तत्ती वाओ ना लग गई, जिन मन बुठाए आए दियो, से सुंदर सोहने साध संग जिन बहने, हर धन जिनी संजिया से।

जिसका नेह चल ताम चेत गोविंद अरादी है होवे आनंद घना संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल तल मई अल पूरिया रव्या विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाई सो प्रभु तिसकै पाई लगा वैसाख तीरन क्यों वाडियां जिन्ना प्रेम बशो हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओ पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह इक सहर के नाम बिन अगे लई है खोहे दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई प्रीतम चरणी जो

पत होई। वैसाख सुहावा तां लगै जां संत भेटै हर सोई। हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगै सब निवन। हर सज्जन दावण लगै।

मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मलावै माई संत सहाई प्रेम के हौ किन कै लागा पाई बिन प्रभ क्यों सुख पाई दूजी नाही जाय जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाय आप त्याग बिनती करहे लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मलाइया से विछड़ कतह ना जाय प्रभ विण दूजा।

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरो वह रोज कीता किशु ना हो वही लिखिया तुर संजोग बड़भागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक होवे साध संग दिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां तिनकी सोभा क्या गणी जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सहे लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम कै बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूर तिन प्रभ सरणी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर नाह मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाह बिख्या पोहे ना सकई मिल

अगम अगाह शरण पई नारायण नानक दर पैया पूख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान जन्म कर्म मल उत्तर।

अलगुण आनंद उपार्जन हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाय राम के कर कृपा दिया मलाई सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए इच्छ पुन्नी वड भागणी वर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए हर जिहा अवर ना दिसई कोई दूजा लवै ना लाए हलत पलत सुवारियों निश्चल दितियन जाई संसार सागर ते रखियन बहुड़ ना जन्मे ताई जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए अलगुण नित सलाही है जिसनो तिल ना तमाए जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगाह सच खरी सर्व सुखा निध चरण हर भौजल बिखम तरी प्रेम भगत तिन पाईया बिखिया नाही जरी कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म प्रभ सेम दे मन अंदर एक तरे महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे नानक मंगै दर्श दान कृपा करहु हरी।

नैन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछड़िया हर मेल हो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख ना वसन पैन हर फिर बिन चैन ना पाई खोज दिते सब गैन आप कमाण विछड़ी दोष ना काहू देन कर कृपा।

बेनंतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सो सुनी हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुर पेय तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आदि जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने।

साधन सद सदा सबना का बख्शिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दितीन जिंद गुर शब्दी आराधिय जपिय निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइय

नानक जीवै जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रैण जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्ब कला प्रपूर्ण मन निमाणी थां हर ओट गई मन अंदरी जप जप जीवा नाम कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू रख है त्यों रहा तेरा दिता पैना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बनासन तम हरन ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिया नानक एहो सुआओ सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा सलोक महला पहला मलक मरीद तथा चंद्रहड़ा सोहिया की धुनी गावणी।

का आसिह जासनी मूल ना जाने आप बाल टंडोलिम ढूंढम डिठ मैं नानक जग तूएं का धवल हार पौड़ी तू करता पुरख अगम है आप शिष्ट अपाती रंग परंग अपार जना बहो बहो विद भांति तू जान है जिन अपाई है सब खेल तमाती एक आव है एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बधाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती जो मन चित तुद त्याई दे मेरे सच्चिया बल बल हो तिन जाती।

आई जिन रच रचिया तिसह ना जाने अंधा अंध कमाई जा भजै ता ठीक कर होए घाड़त घड़ी ना जाई नानक गुरबिन नाही पत पत बिन पार ना पाई महला दूजा दिन दे थाम हूं दिता चंगा मन

कमावे सो चहो कुंडी जानिए, जो धर्म कमावे तिस धर्म नाउ होवे, पाप कमाणे पापी जानिए। तू आपे खेल करहे सब करती, क्या दूजा आख बखाणिए। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, बिन ज्योति कोई किस करे हो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगड़ सुजानी है। पौड़ी तुदे आपे जगत अपायक है, तुदे आपे तंद लाया। मोह ठगौली पायक है, तुदे आप हो जगत खुआया। जिसना अंदर अग्न है, नह तिपत भुखा त्याया। सहसा एह संसार है, मर जमे आया जाया। बिन सतगुर मोह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया। गुरमति नाम त्याई है, सुख रजा जा तुद पाया। कुल उधारे अपना धन जने दी माया। सोभा सुरत सुहावनी, जिन हर सेती चित लाया। सलोक महला दूजा, अखी बाजो वेखना, विन कन्ना सुनना। पैरां बाजो चलना, विन हत्थां करना। जीबे बाजो बोलना।

जोग मेल मलाया, तिन्ही किया बजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुख हो उठे रोग पाप कमाया, हरख हो सोग बजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया, सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया, करता करे सो होग ना चले चलाया, श्लोक महला पहला कूड़ बोल मुरदार खाई, अवरी नो समझावन जाई, मुठा आप महाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे महला चौथा, जिसदे अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाई, ओहो हर मार्ग आप चलदा होर नानू हर मार्ग पाई, जे अगे तीर्थ होए ता मल लह छप्पड़ नाथै सगवी मल लाई, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अन दिन हर हर नाम त्याई, ओह आप छुट्टा कुटंब सियो दे हर हर नाम सब सृष्ट छडाई, जन नानक तिस बलिहार ने जो आप जपै अवरा नाम जपाई, पौड़ी एक कंध मूल चुन खाहे वन खंड वासा, एक भगवा वेश कर फिर है जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा, बिरथा जन्म गवाई ना गिरही ना उदासा, जम काल सिरहो ना उतरै त्रेविद मनसा, गुरमति काल ना आवै नेड़ै जा होवै दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन घर ही माहे उदासा, नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निरासा, सलोक महला पहला जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे है मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाओ खुदाई का दिल हच्छे मुख ले हो, अवर दवाजे दुनी के झूठे अमल करे हो, महला पहला जाहो नाही ता क्या आखा किहो नाही क्या हुआ, कीता करना कहया कथना भरिया पर धुआ, आप ना बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू हुआ, नानक अंधा हुए कै दसेरा है सब समहाए साथ है, अगै गया मुहे मुह पाए।

अपने दर्भ परे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दतार सनाखत कुदरती। सलोक महला पहला। नदियां हो है तीनवा सोम हो है दुध कीओ सगली धरती सक्कर होवे खुशी करे नित जीओ।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे दे है दुख लाई है पाप ग्रह दोए राह रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

खसम पठाया, तबल बाज बीचार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, इकनी बदे पार इक ना ताखती। सलोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया, रही सो पलरवाड़ सण की सारा चिथिया। कान लया तन झाड़, दोए पुड़।

खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाहे एक ना शक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन समारी पौन समार एक निरंकारी नाम आधार

सारे कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम ते आई है, दूजी कार लग जन्म गवाई है, बिन नावे सब विस पेंजे खाई है, सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है, बिन सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आई है, दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, नानक सच खरा सलाहे पत सिंह जाई है, सलोक महला पहला, तुद भावे ता वावह गावह, तुद भावे जल नावह, जा तुद भाव

नानक पूरा जे करे कटै नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इन चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तोलाई है कोई ना आखै घट हों मैं जाई है लइन खरे परख दर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर किस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्मवंती सालाया नानक कर गुर पीर चौथे पहर सबहा कै सुरतियां कुजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम उते अमृत वंडी है करमी हुए पसाव कंचन काया कसी है।

सार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदै ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिए पाई है। गुर प्रसादी बुज सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस। आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस, जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस। हंडन कर्मा बाहरी महला पहला, मत पंखे रू किरत साथ। कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अक डाल, कब उच्ची परीत। नानक हुक्म चलाई है।

आई। हुक्म पया तुर खसम का, अती हूं टक्का खाई। गुरमुख स्यों मन मुख अड़े, डुबे हक न्याय। दुहां सिरियां आपे खसम, वेख कर व्यपाय। नानक एवै जानिए, सब किस तिसहर जाय। महला दूजा, नानक परखे आप।

साधना तृप्तिया सायर परेक सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा निह पलंग तस जन्मस जावत ब्रह्म न बिंदते।

पौड़ी खसमै कै दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलान कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल वधौसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास।

नित सुरही सात दही बनोवै इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिक्ची नाते जित वड्याई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच

लह परांत हुए जिस दात पौड़ी हौ ढाडी वेकार कार लाया रात जेह कह वार तुरों फरमाया ढाडी सच्चे महल खसम बुलाया सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम पूजन आया गुरमती खादा राज तिन सुख पाया ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया नानक सच सलाहे पूरा पाया शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला चौपदे दुपदे

बिन काढ़त काचन काच अंधा सच्चा अंधी सट बुद्धि बाजी उपजे चाऊ सहस सियाणप पवे ना ताऊ नानक मन मुख बोलन वाऊ अंधा अखर वाऊ दुआऊ गौड़ी महला पहला।

ढूपै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाए हंस हेत आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार जिसका कोए कोई कोए कोए सबको तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत धन माल नानक आखन बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किस कहन ना जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भए करनी कामन कर मन लए साहा संजोग व्याह वियोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी महला।

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाण, पीतर होंदी वस्त ना जाने। हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई। कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ। ताँ कै सद बलिहारे जाऊ आप।

बोलै पढ़वाओ जेवा इंद्री एक सुवाओ दिष्ट विकारी नाही पहु पाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरन ना होए बिन मुए क्यों पूरा होए परपंच व्याप रहया मन दो।

नानक दर घर एकंकार, गौड़ी महला पहला, उल्टो कमल ब्रह्म विचार, अमृत धार गगन दस द्वार, त्रे भवन बेदिया आप मरार, रे मन मेरे भरम न कीजै, मन मान्ये अमृत रस पीजै, रहाउ जन्म जीत मरण मन मान्या, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई घर घर ते जानिया, जत सत तीरथ मज्जन नाम।

नानक गुरमत सहज सुमाव गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाई मरण रहन रस अंतर पाई गर्भ निवार गगन पुर पाई मरण लिखाए आए नहीं रहना हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ सतगुर मिले तदुबदा भागे कमल बगास मन हर प्रभ लागे जीवत मरे महारस आगे सतगुर मिले सच संयम सूचा गुर की पौड़ी ऊचो ऊचा कर्म मिले जम का पौ मूचा गुर मिले मिले अंक समाया कर कृपा कर महल दिखाया नानक हों मैं मार मलाया गौड़।

गुर बचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाउ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांधे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले ब्रह्म दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जां कै हृदय बसिया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माहि निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लब लोभ मुच कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारू, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों धारू पर शारू, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ न आवे वारी रहाऊ, हों तुदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करह पराई, झूठी लाए तिबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करह चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रही, छुट्टड़ हुई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जा किश लिया, ता मन भला पाया, हलत ना सोभा पलक ना ढोई, अहल

भोगत सह का पाना रहाउ। साहू हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके बन जारी। जियो पिंड सब रास तिसह की, मारे आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला, अवर पंच हम एक जना। क्यों राखो कर बार मना, मार है लूट है नीत नीत। किस आगे करी पुकार जना।

तना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामन लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़ेन सो खादाता नानक पाप।

लब लोभ की ताविसता, जपस निरंजन रचस मना, काहे बोलह जोगी कपट कना रहाउ, काया कमली हंस एयाणा, मेरी मेरी करत बिहानीता, प्रणवत नानक नांगी दाजै, फिर पाछै पछतानीता, गौड़ी चेती महला पहला, औखद मंत्र मूल मन एकै, जे कर दृढ़ चित की जैरे, जन्म जन्म के पाप कर्म के, काटन हारा ली जैरे, मन एको साहिब पाई रे, तेरे तीन गुणा संसार समाव है, अलख न लखना जाई रे रहाउ, सक्कर खंड माया तन मीठी, हम तो पांड उचाई रे, रात अनेरी सूजस नाही, लाज टूकस मूसा पाई रे, मन मुख करह तेता दुख लागे।

गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई अगन बिंब जल पीतर।

केते पशु अपाई, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देखे पिछों देखे, तुझते कहां छुपावे, हट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी टोलन लागा, घट ही मह बन जारा, जीता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे दया करहु, किस मेहर उपावहु, डुबदे पत्थर तारी।

अन धरनी धरे अनत ना चाहे आ जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ हो।

गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी हुआं बन वसा कंद मूल चुन खाऊं गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हौ जाऊं जियो मैं बनजार नराम की तेरा नाम बखर वापार जी रहाउ कोकिल हुआ अम बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले दर्शन।

मेरा सहुवस हौ मिलोंगी बाहां पसार। नागन होआ तर वसा शब्द वसै पहु जाए, नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखी है करते का हुए बिचारु, तित कर गाव हो सोहिला सिवर हो सिरजनहारु। तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला, हौ वारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखे गा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा।

शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा कह सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

गौड़ी ग्वार रे महला तीजा, गुरते ज्ञान पाए जन कोई, गुरते बूझे सीजे सोए, गुरते सहज साच विचार।

आवे जो पांडा हुए ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौरी ग्वारी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रह जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाव। एक गाव है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाण गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे धात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वड्याई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जी वालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हौ मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवै आप ना पछाना धंधा करतियां आन दिन विहाना हिरदय राम रमहु मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन

पत परवाना हर के नाम बिटो बल जाऊं तू विसरह तब ही मर जाऊं रहाऊ तिन तू विसरह जे तुदे आप भुला।

तू अकथ क्यों कथिया जाय, गुर शब्द मारन मन माहि समाहि, तेरे गुण अनेक कीमत नह पाहि, जिसकी

सब कोई, गुर शब्द समावै बूझै हर सोई, सुन सुन वेखै शब्द मलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी गवारी महला तीजा, मनमुख सूता माया मोहे प्यार, गुरमुख जागे

बूझै जन कोई रहाओ, असंत अनारी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै, अंध अज्ञानी कदे ना सीजै। इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उदारा। इस कल युग में

राम जप हो पवजल उत्तर हो पार रहाओ परमे आवे परमे जाए एहो जग जन्मया दूजे पाए मन मुख ना चेतै आवे जाए आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है क्या धरती मध्य पानी नाही जैसे धरती मध्य पानी परगासिया बिन पगा वरसत फराही बाबा तू ऐसे परम चुकाही।

तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही।

महला तीजा सब जग काल बस है बांधा दूजे पाई हम कर्म कमावंदी मन मुख मिले सुजाई मेरे मन गुरचरणी चित लाए गुरमुख नाम निदान लै दरगाह ले छाए रहा लख चौरासी भरम दे मन हठिया वै जाय गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जो नी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आय अन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाय मन शब्द मरे प्रतीत होए हम मैं तजे विकार जन नानक करमी पाईन हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागन महला तीजा पेयड़ दिन चार है हर हर लिख पाया शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेव कड़ै गुण संभल सोहरे वास पाया गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया ससुरह पेयै पिर वसै कहो कित बिद पाईऐ आप निरंजन अलख है आपे मेलाइय रहाउ आपे ही प्रव देह मत हर नाम ते आईऐ बड़ भागी सतगुर मिलै मुख अमृत पाईऐ हम मैं दुबदा बिर सजाए सहजे सुख समाईऐ सब आपे आप वरतदा आपे नाए लाइए मन मुख गर्ब ना पायो अज्ञान ज्ञानी सतगुर सेवा ना करे फिर पछताणी गर्भ जूनी वास पाए दे गर्भे गल जानी मेरे करते एवं भावदा मन मुख परमाणी मेरे हर प्रभ लेख लिखाया तुर मस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंद पबीरा हर हर बख्श मलाए प्रभु जन नानक कीरा गौड़ी बैरागन महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बीचारा मत मलीन प्रगट पई जप नाम मरारा शिव सकत मटाईया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईऐ संत जन हो जिस देख हों जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मेले हो हर रस पीवा रहाओ हों हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुणदाता हर राय है हम अवगण यारे पापी पाथर डूब दे गुरमत हर तारी तू गुणदाता निर्मला हम अवगण यारी हर शरणागत राख लेहो मूढ़ मुग्ध निस्तारी सहज आनंद सदा गुरमती हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहिला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगै धूड़ तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी गुआरी महला चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूर्ख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भज मन मेरे तर भौजल तू तारी रहाओ सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी।

कथा है हर की, पाज मिल साधु संगत जन की, तर पौ जल कथ कथा सुन हर की, गोविंद सत संगत मिलाई, हर रस रसना राम गुण गाई, रहाउ जो जन प्याव है हर हर नामा, तिन दासन दास करहु हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे, सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेन वड भागी पावे, संत जना सिउ प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई, ते जन नानक नाम समाई, गौड़ी ग्वारी महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए, ए हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहे हमारे।

प्रीत जा हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख फसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाते गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाते जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवे अन्न खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखे माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआर री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी घनी गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ ते आगे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी गुआरी महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहया बनवारी हर आपे तप तापे लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत धुन आपे हर आपे वेखै विगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत धारा हर अमृत आप पी आवन हारा।

बणजह रंग स्यों जे आप दयाल हुए देह हम बणजारे राम के हर वणज करावे देरा सरे रहाओ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जे है बणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे

ज्यो जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा हुए तन खाट दे कर भोग बलासा क्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझह वडैया रहा मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगे जा हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक्की ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वड्याई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज

काशी को हर नाम कढ़ाई, जन नानक हर का दास है, हर की बढ़ियाई। गौड़ी ग्वार भी महला चौथा, किरसानी किरसान करे, लोचै जियो लाए, हल जोतै उदम करे, मेरा पुत धी खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे, हर अंत छाए।

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करी सो कर कह काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कह कम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की कै बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे।

कथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्स तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हौ कुर्बानी गुरे अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहार।

धार रहाऊ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे।

चौथा कंचन नारी मह जियो लुभत है मोह मीठा माया कर मंदर घोड़े खुशी मन अन रस लाया।

कपड़ पहनन दिया रास अन को गाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हों कर जानी सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन परंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जानो मास काती कै किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यागहु जन नानक जो अंति अवसर लय छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लही है मेरा

अन दिन अन दया वडभागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड पागी हर मंत्र दिया मन ठाढ़े राम हम सतगुर लाले कांडे रहाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़ी पर उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़ी।

मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यो हर राख है त्यों ठाडी हम कूल चूक गुर कृपा तारू जन नानक कुतरी कांडी गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु परिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभे दुख पावे जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरी हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाई गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया हर गुर शब्दी चक दीठा राम हर कीर्तन गुर लिव मीठा रहाउ हर अगम अगोचर पार ब्रह्म है मिल सत गुर लाग बसीठा जिन गुर बचन सुखा ने ही अरे तिन आग्ञान परीठा मन मुख हियरा अत कठोर है तिन अंतर कार करीठा बिसियर कौ बहु दूध पी आई है बिक निक सह फोल फलीठा हर प्रभ्यान मलाव गुर साधु कस गरुड़ शब्द मुख लीठा जन नानक गुर के लाले गोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा।

गुर कै बचन हर पाया रहाउ। मेरा ही अरह प्रीत राम राय की, गुर मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगै, जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हृदय नाल दिखाया। सहज आनंद भया मन।

अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजै शब्द अनाहद, गुरमत मनुआ गावे, वड पागी गुर दर्शन पाया, तन तन गुरु लिव लावे, गुरमुख हर लिव लावे रहाउ, हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे, हम मल मल तो वह पाव गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे, हृदय गुरमत राम रसायन, जिहवा हर गुण गावे, मन रसक रसक हर रस आगामी, फिर बहोर न भूख लगावे, कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी, बिन कृपा नाम ना पावे, जन नानक को हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे, राह गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा, वडभागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो, वडभागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना, आवहु संत हो मिल नाम जपाहा, विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो, जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामण करीहा जियो, मिल संत जना रंग मान रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठै टुल टुल मिलिया जी।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीव मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीव हर नाम मिलिया सोहागनी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीव हर पाए अड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लै लाहा मन हस जीव हर आप उपाय।

एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक ना भिख मगाया जियो सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम त्याया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मन

हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किनै हर प्रभ डिठड़ा नैनी दियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसां पूरियां मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वादाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हौ तुद विटण हो सदवारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुर विष्णु।

हरे आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगते उपाए दा मेरे गोविंदा हरे आप खेले बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाए दा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है नंग नंगी जियो आपे जगते उपाए दा मेरे गोविंदा हर दान देवै सब मंगी जियो भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा हर कथा मंग है हर चंगी जियो हर आपे भगत कराए दा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जा

महला पंजवां राग गौड़ी गुआरी चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद इन बेद कुशल होत मेरे भाई।

सुपने पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक हूं मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवां क्यों भ्रमीए भ्रम किसका होई जां जल थल महियल रवे आसोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी गुआर री महला पंजवां कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्रापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश हो आसो तुझ ते होग अवरना दूजा करने जोग ता मिलिए जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाय गौड़ी गुआर री महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पाव है मिटे जम त्रास नित गाव है हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर तार शीघ्र कार्ज लिहो सवार रहाव अपने प्रभ स्यो हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाणप सगली त्याग संत जना की चरणी लाग सर्ब जी है जा कै हाथ कदे ना विछड़ै सब कै साथ अपाव छोड़ गहो तिसकी ओट निमक माही होवै तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटावहु आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआर री महला पंजवां गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाओ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कट्टे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन ना आवै हार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआर री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्याव रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इस ते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखन हार जप मन मेरे राम राम रंग।

दुख काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुरपूर सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी गुआर भी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लख खरे जे धंधे

आस पूर्ण हुए सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जा कह हृदय वसे दुख दर्द ते नानक नसे गौड़ी गुआरी महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना आघना अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्तर उर्जियो जान मेरी ओह बिन सह ओए पस मैं ढेरी बिन हर भजन देखो बिल लाते त्रिग तन त्रिग धन माया संगराते रहाओ ज्यो बिगारी कै सिर दी जह दाम हुए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम ज्यो सुपने हुए बैस्त राजा नेत्र पसारे तन रार्थ काजा ज्यो राखा खेत ऊपर पराए खेत खसम का राखा उठ जाए उस खेत कारण राखा खड़े तिसके पाले कछु ना पड़े जिसका राज तिसे का सुपना जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा आप बनाहि आप करे रास नानक प्रभ आगे अरदास गौड़ी ग्वारी महला पंजवा बहु रंग माया बहु बिद पेखी कलम कागद सियान पलेखी मेहर

हाउ हस पवन हस्त असवारी जोआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटक आखारे गाया तामह मन संतोख न पाया तखत सभा मंडन दोलीचे सगल मेवे सुंदर बागीचे अखेर बिरत राजन की लीला मन ना सुहिला पर पंच हीला कर कृपा संतन सच कहया सर्व सुख एहो आनंद लहया साध संग हर कीर्तन गाईए कहो नानक वड भागी पाईए जा कै हर तन सोई सुहेला प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाओ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवा।

संसार। जो हलाहल सो पीवै बौरा, अमृत नाम जानै कर कौरा। साध संग कै नाही नेर, लख चौरासी भ्रमता पेर। एकै जाल फहाए पंखी, रस रस भोग करहै बहुरंगी। कहो नानक जिस पये कृपाल, गुरपुरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तौ किरपा ते मार्ग पाईऐ। प्रभ किरपा ते नाम ते आईऐ, प्रभ किरपा ते बंधन छुटै। तौ किरपा ते हम मैं टुटै, तुम लाभ हो तौ लाग है सेव। हम ते कछु ना होवै देव रहाव। तुद पावै ता गावां बाणी, तुद पावै ता सच बखाणी। तुद भावै ता सतगुर मया, सर्ब सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद भावै सो निर्मल कर्मा, जो तुद भावै सो सच धर्मा। सर्ब निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास। मन तन निर्मल

गुण गाओ। निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन न सुनिए कतु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए। आठ पहर जिहवे आराद, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली। बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह। नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी। रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै, कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै, कमन सो बिद जित पीतर बुलावै। तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया। कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार। गौड़ी महला पंजवां गवाररी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा। ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन। हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे। रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार। एको बनज एको व्यवहारी, अवर न जान है बिन निरंकारी। हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते। दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते। संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो। पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत। तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

रंग रसा तू मन है आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, मन ताने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार, व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निर धन पेख सोभा, मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी, संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल शिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हों फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, चार व्यवहार व्यापत एह जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राए, ताको कहां व्यापै माई, कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताके निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओह अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब स्याणप ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते,

कै रंग सो जागै जिस प्रभ कृपाल एह पूंजी साबत धन माल रहाओ दूजा गौड़ी गुआरी महला पंजवा जाकै वस खान सुल्तान जाकै वस है सगल जहान जाका किया सब किश होए तिसते बाहर ना ही कोए कहो बेनंती अपने सतगुर पाए काज तुम्हारे देन बाहे रहाओ सब ते ऊंच जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्ब व्यापत पूर्ण तनी जाकी शोभा कट कट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टह जिस सिमरत जम किशु ना कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे संत सभा कहो सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण आधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास गौड़ी गुआरी महला पंजवा सतगुर दर्शन अगन निवारी सतगुर भेट तह मैं मारी सतगुर संग नाही मन डोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जा सच महराती शीतल शांत गुरते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाऊ संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रेण मजन सब धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मह ए हमरी जिंद कृपा निध कृपाल त्यावो साध संगता बैठन पावो मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी गुआरी महला पंजवा साध संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताज अभमान भये निरवैर आठ पैर पूजो गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी जब ते सुनिया हर जस कानी।

पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुर मेटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर क्या यह।

अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु की।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवां जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पवो काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्श न मेटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इशना।

आठ पहर हर हर गुण गाऊं, कहो नानक कहो तिस बल जाऊं। राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिस सियो मन रचना। कहो गसाई मिली ऐ के, जो बिबरजत तिस सियो नेह रहाओ। झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना।

पंडार परे पंडार अखूट अतोल खाव है खर्च है रल मिल पाई टूट न आवे वध दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लियार लाए गौड़ी महला पंजवा डर डर मरते जब जानिए दूर डर चूका देखिया भरपूर सतगुरे अपने कह बलिहार छोड़ न जाई सर पर तारे रहाव दुख रोग सोग बिसरे जब नाम सदा आनंद जा हर गुण गाम बुरा भला कोई ना कही जय छोड़ मान हर चरण गही जय कहो नानक गुरमंत्र चितार सुख पावे साचे दरबार गौड़ी महला पंजवा जांका मीत साजन है समिया तिस जन कहो कहो का की कमिया जां की प्रीत गोबिंद स्यों लागी दुख दर्द भ्रमता का भागी रहाव जां को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जा का कहया दरगाह चले सो किसको नदर ले आवे तले जां का

कह सगल निदहना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन महथाना गुर प्रसाद किने बिरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसह प्राप्त तिसलह पुंचा रहा अनहत बाणी थान निराला ता की धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कार गुरु नानक को दिया गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा अरादो कवन योग काया ले साधो कवन गुण जो तुझ लै गावो कवन बोल पार ब्रह्म री जावो रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो कवन सो बिद जित पव जल तरो कवन तप जित तपिया होए कवन सो नाम हमे मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा

सेव आद पुरख अपरम पर देव तिसे उपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावै गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करै सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पए समरथ अंगा।

हर कै मार्ग पतत पनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक, कर्णहार सद वसै हदूरा, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, संत की धूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट, संत का दर्श पूर्ण इशनान, संत कृपा ते जपिए नाम रहाव, संत कै संग मिटिया अहंकार, दृष्ट आवे सबे कंकार, संत सो प्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय ले संचा, कहो नानक जाका पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, हर गुण जपत कमल परगासै, हर सिमरत त्रास सब नासै, सामत पूरी जित हर गुण गावे, बड़े भाग साधु संग पावे रहाव, साध संग पाइय निदनामा, साध संग

मुखार हर बोले सो जन इत उत कत है ना डोले जां कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसा जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया। गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नामो धन नामो व्यवहार नाम वडाई जन सोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ। नाम भगत कै सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम सुमारे कहो नानक जिस पूरा भाग नाम संग ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवां संत प्रसाद हर नाम ते आया तब ते तावत।

साद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरन आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन मह लेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलाब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवा जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ भागे।

पहल करत जन सोहै ता कौ माया अग्न ना पोहै। मन तन मुख हर नाम दयाल, नानक तजियले अवर जंजाल। गौड़ी महला पंजवां, छाड़ सियानप बहु चतुराई। गुरपुरे की टेक टकाई, दुख बिन से सुख हर गुण गाई। गुरपुरा पीतिया लिवलाई, रहाउ हर का नाम दियो गुरमंत्र। मिटे वसूरे उतरी चिंत, बंद भये गुरमिलत कृपाल। कर कृपा

माही डराया। सगल शरीर आवत सब काम, निफल मानुख जपै नहीं नाम। कहो नानक जा कहो पै दयाला, साध संग मिल भजह गोपाला। गौड़ी महला पंजवा, काल कलेश गुर शब्द निवारी। आवन जान रही सुख सारी, पै बिन से निरपो हर त्याया। साध संग हर के गुण गाया।

सिमरत सिमरत प्रभ का नाम, सगल रोग का बिनसे आठाव, सहज सुपाए बोले हर वाणी, आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी, दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे, गौड़ी महला पंजवा, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, ओह बेला को हौ बल जाऊ, जित मेरा मन जपै हर नाउ, रहाउ, सफल मूरत सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी, सफल ओह माथा संत नमस्कारत, चरण पनीत चलह हर मार्ग, कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द राख मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन

तुमरी कृपा ते दरगाह धाम, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ। तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा। हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ। नाम बिना नाही मुख भाग, परत विहून।

तू है मेरा स्वामी, सब किस सुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समाणा, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवा, ताका दर्श पाईऐ वडभागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाव, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथि न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभु बिनो सनीजै, दास की धूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाव, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जा कौ नदर करे, गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निसतारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाव, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवा, गुरु जी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होए परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवा, करै दुह कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बिख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाता चोटा खावै, अनक पड़दे मह कमावै विकार, खिन मह प्रगट होवे संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस कृपाल विधाता, गौड़ी महला पंजवा, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, संत संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पये निहाल, कहो नानक गुर पये है दयाल, गौड़ी महला पंजवा, सिमरत स्वामी किल विख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर तन को वापा।

आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जानह स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कैर दैवसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना परापत साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परम है बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरे हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जा कर दे वसह भगवान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी बड़ियाई

अंधला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तू ही वडियाई माया मगन नरक ले जाई रहा।

सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पहर संगी बटवारी कर कृपा प्रभ लय निवारी ऐसा हर रस रमहु सब।

उक्त फल पाए। उक्त सियानप इससे कश नाही, कर कृपा नानक गुण गाही। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड भागी हर कीर्तन गाइए। पार ब्रह्म तू देह ता पाइए रहाउ, हर के चरण हृदय उरतार। भव सागर चढ़ उतरह पार, साधु संग करहो सब कोय। सदा कल्याण फिर दुख ना होय, प्रेम भगत भज गुणी निदान। नानक दरगाह पाइए मान, गौड़ी महला पंजवा। जल थल महियल पूर्ण हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख

ताते छुट्यो बिख संसार कर कृपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ सरनाई जिन हर जाति मन तन शीतल चरण हर राति पै भंजन प्रभ मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत

कर पूजी, सौदे को धावै बिन पूंजी, नानक राम नाम जप चीत, सिमर स्वामी हर सामीत, गौड़ी महला पंजवां, सा मत निर्मल कहियत तीर, राम रसायन पीवत बीर, हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरन ते होवत छोट, रहाउ सो तन निर्मल जित उपजै न पाप, राम रंग निर्मल प्रताप, साध संग मिट जात बिकार, सब ते ऊज एहो उपकार, प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचे साध रवाल, गौड़ी महला पंजवां, ऐसी प्रीत गोविंद सिउं लागी, मेल लए पूर्ण वडभागी रहाउ, परता पेख बिकसै ज्यों नारी, त्यों हर जन जीवै नाम चितारी, पूत पेख ज्यों जीवत माता, ओत पोत जन हर सिउं राता, लोभी आनंद करै पेख तना, जन चरण कमल सिउं लागू मना।

के किल विख खोए, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रबिया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ताकि पूर्ण होई काल, जां की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवानी।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दोए कुल साध, राम नाम नानक आराद। गौड़ी महला पंजवां, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याऊ करे करतार। अपने दास को राखन हार, रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप। निंदक मुआ उपज वध ताप, तिन मारिया जे रखे न कोई। आगे पाचे मंदी सोए, अपने दास राखे कंठ लाए। शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवां, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा, रहाउ साची दरगाह बोले कूड़। सिर हाथ पछोड़ै अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप। अदली होए बैठा प्रभ आप, अपन कमाया आपे बांधे। दर्ब गया सब जी कै साथे, नानक शरण परे दरबार। राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवां। जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी। रहाउ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुध मन जाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुध न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया भउ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाउ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवां।

साध संग हर अमृत पीवे गौड़ी महला पंजवा तन ओह मस्तक तन तेरे नेत तन ओए भगत जिन तुम संग हेत नाम बिना कैसे सुख लहिए रसना राम नाम जस कहिए रहाओ तिन ऊपर जाइए कुर्बान नानक जिन जपया निर्वाण गौड़ी महला पंजवा तू है मसलत तू है नाल तू है राख है सार संभाल ऐसा राम दीन दुनी सहाई दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ आगे आप इहो थान वस जाके आठ पैर मन हर कौ जापै।

प्राणी। कहो नानक जिस कृपा तार है, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है। गौड़ी महला पंजवां, थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपौ होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले। हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला। हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई। पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता। हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता। हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस। हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अन दिन जागे। हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै। हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए। कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे। मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद। रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कारे आए। पेटत साध संग गई बलाए रहाव। नेतर पनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीने आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए। आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए। जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम। सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु सरन दयाल। रहाव बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिहों मन माने। अगाध बोध हरे अग्नि अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया। गुर गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा। रहाओ अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम। दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए। कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई। गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई। नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए। कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव। अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा। कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते। कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम को बल पूरन पाई, ताते बिरता ना व्यापै काई। रहाओ जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई। गौड़ी महला पंजवा, पूज बल बीर ब्रह्म सुख सागर।
गर्त परत गह लेहो अंगोरिया रहाओ। श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगोरिया। दीना नाथ अनाथ करना में, साजन मीत पिता महतरिया। चरण कमल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागन महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ। तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुख दातिया निमख निमख बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे सम्मला कवन विधि विचार। सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे। सो प्रसन्न भये केसवा सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार। गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवां।

हाल। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से बड़ भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्रापत सो हर गुण गाहै। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

कृष्णा रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करहु निवास।

रास गौड़ी महला पंजवा हर पीखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवो दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाओ सेवा करो दास दासन की अनक पांत तिस करो निहुरा तुला तार तुले सुख सगले बिन हर दर्स सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख पेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मुहे मार्ग दे बताई रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बस्ते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले ओह बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रहो तिन दिया ताला कुंजी गुर संपाई अनक अपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठले सतगुर मुझे बतायो रहाओ जत कत देखो तत तत तुम ही

सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निद नाम निदान एक ठाई तौ बाहर कैठे जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्तै तत् मलायो गौड़ी महला पंजवा औद कटे दिन सरे नारी मन गुर मिल काज सवारी रहाओ करूं बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला यहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला एह संसार विकार सहसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए की आए हर रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सुई विहाज हो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पाव हो सुख सहजे बहुर ना हुए गो फेरा अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास इही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी महला।

राखु राखन हारी खेद करह और बहुत संताव है। आयु शरण तुहारी कर कर हारियो अनक बहु भांति छोड़ है कतहु नाही। एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया। जीत लये ओए महा बिखादी सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अबनासी राया निरपो संग तुम्हारे बस्ते

जिस करते पूर रहे हो रतनागर रे जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुखदाता सगल कटा प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखे पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन में जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूड नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहिया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नु सागर लहर संसार संसार गुरबोहित पार ग्राम नु रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है अहम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही तेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत पने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिर है गोविंद लोक नहीं जन्म मरह बल बुद्ध स्यान पहो मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाइय नीत नीत हर सेवी है
सास सास हर त्याई रहाओ, संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै, संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख ना व्यापी है, जां को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अग्नते, नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर, गौड़ी महला पंजवां, रसना जपिए एक नाम, इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम रहाओ, कटिए तेरा अंगरोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया, तां की तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निध पाया, सो बहुर न कत ही ताया, हर हर नाम जां को गुर दिया, नानक तां का पहो गया, गौड़ी महला पंजवा, जां को बिसरे राम नाम, ताहू को पीर, साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाव, जां को गुरमुख हृदय बुद्ध, तां कै कर तल नव निध सिद्ध, जो जान है हर प्रभ तनी, किस नाही तां कै कमी, करने हार पछानिया, सर्ब सुख रंग माणिया, हर तन जां कै ग्रह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै, गौड़ी महला पंजवां, गर्भ बड़ो मूल इतनो, रहन नहीं गहो कितनो रहाओ, बेबरजत बेद संतना, वाहू स्यों रे हितनो, हार जुआर जुआ बिदे, इंद्री वस लै जितनो, हरन परन संपूर्णा, चरण कमल रंग रितनो, नानक उदरे साध संग, किरपा निद मैं जितनो, गौड़ी महला पंजवां, मोहे दासरो ठाकर को, तान प्रभ का खाना रहाओ, ऐसो है रे खसम हमारा, खिन मह साज स्वार नहारा, काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा, सरन परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन धीरा, एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा, गौड़ी महला पंजवां, है कोई ऐसा हूं मैं तोरै, इस मीठी ते इहो मन हो रै रहाओ, अज्ञानी मनुख भया, जो नाही सो लोरै, रैण अंधारी कारिया, कमन जुगत जित पूरै, प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरै, कहो नानक किरपा पही, साध संगत निद मोरै, गौड़ी महला पंजवां, चिंता मन करना मई रहाओ, दीन दयाला पार ब्रह्म, जां कै सिमरन सुख पई, अकाल पुरख अगाध बोध, सुंत जसो कोट अग खई, किरपा निद प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लई, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां, मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए, जान दिन बिसरै प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाय रहाओ, एक रैन के पहुन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए, ग्रह मंदर संपै जो दीसै, ज्यों तरवर की छाए, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, खिन मह होत पराए, पहरे बागा कर इशनाना, चोआ चंदन लाए, निरपहो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यों हस्ती नवाए, जो हुए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए, मुक्त भया बंधन गुरु खोले, जन नानक हर गुण गाए, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए, रत्न जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बल हरिए रहाओ, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए, जो हुए दयाल सतगुरे अपना, तां एह मत बुद्ध पाइए, मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटे है,
सर्व सुखा सुख पाईए। सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आईए। नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चाले। कर सेवा सतगुर अपने की गुर ते पाईए पाल। गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिन से सर्व अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन मिटियो सगल कलेशा। राग गौड़ी महला पंजवां।

करो रे मन ना हो रे परे परे ही को लुजी हे सुंदर नारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजी हे अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजी हे जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजी हे गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हर्ख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस

तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान भरे पोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आगियो रहाओ मान अभमान दो समाने मस्तक डार गुर पागियो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लागियो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टागियो निरपौ भये संत भ्रम डारियो पूर्ण सर्वागियो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लागियो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागियो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो सरनागियो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लागियो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख तृष्ण सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूझत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इहो मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इहो मेरा परम मोह कस सूजस नाही एह पैखर पए पैरा तब एहो कहा कमावन परया जब एहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन एहो रचन रचाया कहो नानक करनहार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संयम मह रहता इनका आड़ ना पाया आगे चलन और है भाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता।

वण तेन त्रि भवन सुख परमानंदा जीओ सेज सुहावी एहो मन बिकसंदा जीओ पेख दर्शन एहो सुख लहिया जीओ चरण पखार करी नित सेवा जी।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन

ज्ञान दयो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुटे सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा रहा। राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र। सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए। जिस लड़ लगे जीवी है भवजल पई पार, मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास। गौड़ी बाज महल।

सुख दुख दोनों समकर जान और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाना जन नानक एहो खेल कथन है तिन्हू गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई एक बिनसै एक अस्थर मान अचरज लखियो ना जाई रहा काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा करमा न्यू

आ रहियो राम सरनाई गौड़ी महल्ला नौवा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एहन समग्न रहे माया में। कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों। एहे विद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग। देख ताश उठतावे भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूर्ता ही बिसरावे। जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावे गौड़ी महला नौवा। साधु इहो मन गहियो ना जाई चंचल तृष्णा संग बस्त है। याते थिर न रहाई रहाओ कठन क्रोध घट ही के भीतर। जेहे सुध सब बिसराई

जन नानक हर भय दयाला तो सब बिद बन आई गौड़ी महला नौवा साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेहे सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अभमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावे वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावे रहाओ दुर्लभ देहे पाए मानस की बिरथा जन्म सरावे माया मोह महा संकट बन तास्यो रुच उपजावे अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो न लावे नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेहे कट राम सुमावे गौड़ी महला नौ साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाओ लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब।

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यो हर सुंदर ग्रह नारी इनमें कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे गौड़ी महल्ला नौवा नर अचेत पाप।

जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया। ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ नवार रहाउ। बाल राजा माया अहंकारी, जगन करे बहु भार अफारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी। हरी चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंत ना पाए अपेवे, आप भलाए आपे मत देवे। दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद पुदारे कृपा धारी, भूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका शीस समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, सहस बाहु मद कीट महखासा, हर नाक्ष ले लखो बिदासा, दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमन संघारी, रक्त बीज काल नियम बिदारी, दैत संघार संत निस्तारी, आपे सतगुर शब्द बीचारी, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साच भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पत खोई, राम ना जानिया करता सोई, जन को दुख पचे दुख होई, जन्मे जय गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे परम पलानिया, एक तिल भूले बहोर पछतानिया, कंस केस चंडूर ना कोई, राम ना चीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म तीर जहर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाट पटंबर पहर हंडावो, बिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहां सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोल शिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर महला सेज सुखाली, अहनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर ने बखवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बलावो, ताज कुल है सिर शत्र बनावो, बिन जगदीश कहां सच पावो, खान मनुक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हों मैं ममता गुर शब्द वसारी, गुरमत जानिया हृदय मरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान से अवरे, परपंच ब्याद त्यागे कवरे, भाई मिले सच साचे साचरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिले मन धोई, रहाउ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अग्न जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द बीचार।

हितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी तत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस सेई बिन पिर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद प्राण पढ़ै सुन खाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेस करै बहु भस्म लगावै नाम विसार बहुर पछतावै तू मन हर जियो तू मन सुख नाम बसार सह जम दुख रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम बसारे है सब कूड़ो कूर नेजे बाजे तखत सलाम अदकी तृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावह नाम सुहेला दूजै पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट किसको वाह वाह जे वाट दिखावे तिसको वाह वाह जे शब्द सुनावे तिसको वाह वाह जे मेल मलावे वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो गुर शब्दी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद भाणे दियो नाम बिना क्यों जीवा माए अनदिन जपत रहो तेरी सरनाए नानक नाम रत्ते पत पाए गौड़ी महला पहला हौ मैं करत भेखी नहीं जानिया गुरमुख भगत बिरले मन मानिया हौ हौ करत नहीं सच पाईए हौ मैं जाए परम पद पाईए रहाओ हौ मैं कर राजे बहुतावह हौ मैं खपह जन्म मर आवह हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागै पंच संघारै अंतर साच सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर परम चकावह निरपो कै घर ताड़ी लावे हौ हौ कर मरना क्या पावे पूरा गुर भेटे सो झगर चकावे जेती है तेती केहो नाही गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही हौ मैं बंधन बंद पवावे नानक राम भगत सुख पावे गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया ब्रह्म कमल पयाल ना पाया आग्या नहीं लीनी भरम भलाया जो उपजै सो काल संघारिया।

वरी आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरे सहजे पत पाई है अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाई है नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावे नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरी क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता, चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस, इस पद जो अर्थ आए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को, सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझी है, सब ब्रह्म समाया, राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ, मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना पी

ही माहे। सूतक भोजन जेता किस खाहे, सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवै सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोई, विण नावे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मह गुरमुख उतर सपार। साचा मरे ना आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जियो राखो हिरदय उर धारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पढ़ तजो विकारा, गुरमुख भोजन उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो होमे जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई। अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतराई। जो किछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे थौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजियों लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

इहु संसारा नित तीर्थ नावै न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हऊ मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपट।

अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस ते उपजे देव मोह पयासा त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजै पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे हौ मैं दूजा शब्द जलावे ना मेरा ते हर गुण गावे माया दासी भगतां की कार कमावे चरनी लागे ता महल पावे सद ही निर्मल सहज समावे हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जो गुमाही तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही सहजे गुण रवह साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया नानक हौ मैं मार ब्रह्म मलाया गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे अंतर तामस आप ना पछाणे ता प्रभ पा

रहाउ। गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे, गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे। मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मलाए। मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावह सहज सुपाए। बिन गुर साचे परम पलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए। जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की सरनाई। हौ मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई। सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता, मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता। इन विद कुशल तेरे मेरे मीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए। हिरदय नाम विचों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द वजाए। सतगुर ते कवन कवन ना सीधो मेरे भाई, भगती सीधे दर सोभा पाई। नानक राम नाम वडियाई, गौड़ी महला तीजा। त्रै गुण बखाने भरम ना जाए, बंधन ना टूटह मुक्त ना पाए। मुक्त दाता सतगुर जुग माहे, गुरमुख प्राणी भरम गवाए। सहज तुन उपजै हर

ताई साच ना छपे जे को रखै छुपाई ज्ञानी बूझ सहज सुपाय गुरमुख साच रहिया लिभ लाए हम मैं माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाए सतगुरु दाता शब्द सुनाए तावत राखे ठाक रहाए पूरे गुरते सो जी पाए आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनु कृपा करी सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख पया परगास गुरमुख गावे है सच गुण तास दासन दास नित होवे दास ग्रह कटंब मह सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई जां हिरदय वसिया सच सोई गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होई।

प्रभ सोए नाम रतन सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसे अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुर पाया पूरे वड भागी हऊ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रवे।

आए मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिव लाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महा जाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल आप छडाए छुट्टी है सत गुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिद नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला बड़ भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़गा हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम पवह बाहर पाल गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वड भागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहो मन मह करत गुमाना तब इहो बावर फिरत बेगाना जब इहो हुआ सगल कीरीना ता तेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुरे अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इहो जान समंदा तब सगले इस मेलह फंदा मेर तेर जब इन्ह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन्हें अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला क
कर किरपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर मह दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी कर्म करामन सब किश एक है आपे बुद्ध विचार विवेक है दूर ना नेरे सब कह संगा सच सलाहन नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा तिसके हृदय रविया सोए मन पन सीतल निश्चल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ जास जपत पहु अपदा जाए तावत मनुआ आवे ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत एह हो मैं भागे जास जपत बस आवे पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत एह तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगाह सिजे जास जपत कोट मिट है अपराध जास जपत हर होवे साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सहज निवास जास जपत एह अग्न ना पोहत जास जपत एहो काल ना जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाथा जास जपत मुश्किल कछु ना बने जास जपत सुन अनहत तुने जास जपत एह निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसका हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यो संग निवारे दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मै होए प्रगास ऐसी दृढ़ता ताके होए जाको दया मया।

ही जपना, सहजे पूजन सहजे पाओ, सहजे मिटियो सगल दुराओ, सहजे हुआ साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्मन संग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी, जाके सहज

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया तां कै तार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बेताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दिस पासारा बिन सजाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ता का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुखदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाव जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगाह सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको पये कृपाल कृपा निद तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यों जुरे ता सबको मीत हर स्यों जुरे ता निश्चल चीत हर स्यों जुरे ना व्यापै।

दास नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की वाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अब

ही काल, ना को चतर ना ही को मूड़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा। गौड़ी महला पंजवां, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे है साकत नाम बिसारी। एक निमख जो सिमरन मह जिया, कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव। बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिस्ता महवास। बिन सिमरन पय कूकर काम, साकत बेसुआ पूत निनाम। बिन सिमरन जैसे सींग सतारा, बोलह कूर साकत मुख कारा। बिन सिमरन घर दब की न्याई, साकत थान पृष्ठ फराई। बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद ना पाया। बिन सिमरन है आत्म घाती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती। जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। गौड़ी महला पंजवां, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई। गुर कै बचन त्यायो मोहे नाम।

गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा परम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निद। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोह को दीना जियो, अपना दस राय आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार।

था। गौड़ी महला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असनी।

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खोजत फिरे अस

सुन पंथ डराऊं बहुत पैहारिया, मैं तकी ओट संता लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किस ही नाही हर पूर भंडारिया, चहो दिस जपिए नाओ सूख सवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ेओ पुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्व निदान अकथ कथारिया, हर दरगाह सोभावंत बाहां लुडारिया, जन नानक लब्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजल करिए कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हूं मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहो कोट मदे किने गुरमुख लहो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहों ते रहो, दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परेओ जन नानक गुरमुख जगत तरेओ, महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्श हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के फूगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता सगली अवध बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यों उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सके पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा कर।

कूड़ मुठी कूड़ियारी कूड़ निवारी गुरमत सारी जुए जन्म ना हारी गुर शब्द सेवे सच समावे बिचो हम मारी हर का नाम हृदय बसाई ऐसा करे सिंगारू नानक कामन सहज समाणी जिस साचा नाम आधारू मिल मेरे प्रीत मां जियो तुद बिन खरी निमाणी मैं नैनी नींद ना आवै जियो पावे अन्न ना पानी पानी अन्न ना पावे मरिए हावे बिन फिर क्यों सुख पाईए गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे ज्यों मिले तिवें मिलाईए आपे मेल लए सुख दाता आप मिलिया घर आए नानक कामन सदा सुहागण ना फिर मरे ना जाए गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो हर कै सहज सुपाए मन मोहन मोए लिया जियो दुबदा सहज समाए दुबदा सहज समाए कामन वर पाए गुरमती रंग लाए एहो शरीर कूड़ कसत भरिया कल ताई पाप कमाए गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजे बिन भगती मैल ना जाए नानक कामन पिरह प्यारी विचों आप गवाए कामन पिर पाया जियो गुर कै पाए प्यारे रैन सुख सुती जियो अंतर उर तारे अंतर उर तारे मिलिए प्यारे अन दिन दुख निवारे अंतर महल पिर रावे कामन गुरमती विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक सच मिली सुहागण गुर कै हेत अपारे आव हो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिंगारे सच शब्द सिंगारे हम मैं मारे गुरमुख कार्य सवारे जुग जुग एको सच्चा सोई बूझै गुर बिचारे मनमुख काम व्यापी मोहि संतापी किस आगे जाए पुकारे नानक मनमुख थाओ ना पाए बिन गुर अत प्यारे मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शन हारा अवगुण बख्शन हारा कामन कंत प्यारा कट कट रहे आसमाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाई सतगुर बूझ बुझाई सदा आनंद रहे दिन राती अन दिन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सा तन नौ निद पाई गौड़ी महला तीजा माया सार सबल वरतै जियो क्यों कर दुत्तर तरिया जाए राम नाम कर बोहे था जियो शब्द खेवट विच पाए शब्द खेवट विच पाए हर आप लंघाए इन बिद दुत्तर तरिए गुरमुख भगत प्राप्त होवे जीवतियां इयों मरिए जिन मह राम नाम किलविख काटे पए पवित्र शरीरा नानक राम नाम निस्तारा कंचन पए मनूरा स्त्री पुरख काम व्यापे जियो राम नाम की बिद नहीं जानी मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी हम मैं तात संसारे जो आया सो सब को जासी उबरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम बखाने आप तरे कुल तारे नानक नाम बसे घट अंतर गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो।

सेवा सुरत भगत एह साची विचो आप गवाई है। हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे। जुग जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता अब गुण काटे हिरदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

छोड परदेस सदाए दूजै किनै सुख ना पायो पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए भरम भलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुर शब्दी चित लाए मन मुख मुग्द गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन बैराग भया जियो क्यों देखा प्रभ दाते मेरे मीत सखा हर जियो गुर पुरख बधाते पुरखो बधाता एक श्री तर क्यों मिलह तुझै अड़ीनिया कर करह सेवा आसीस चरणी मन आस दर्श निमाणिया सास सास ना घड़ी विसरै पल मूरत दिन राते नानक सारिंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिय प्रभ दाते एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों धीरे गुणवंत नाहा दयाल बाला सर्व गुण भरपूरे फिर दोष नाही सुख है दाते हौ विछुड़ी बुरियारे बिनवंत नानक दया तार हो कर आव हो नाह प्यारे हौ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हौ सिर अर्पी तिसमीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता सीस सुथान गुर पह संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलियां करै कामण मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो वजी वादाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहरख उपजिया दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे बजे है घर मह फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई गौड़ी महला।

जह साध संत इकत्तर होवे है तहां तुझे त्यावही। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासी मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू मान है एक जी अवर सब राली। मान है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल तारिया, तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्स ध्याना, मोहन जम नेर ना आवै तुद जपै निधाना। जम काल किनको लगै नाही जो एक मन त्यावे, मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना, बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान लहिया अभमान जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुद नो धन कहिया तिन जम नेड़ ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मरारी, बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवां सलोक, पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधु, त्याए मना मरार मुकंदे कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन श्री तहर चरण कमल अराधी है, जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधी है। कल मलै दहता शुद्ध करता जिन सरैण अराधु, बिनवंत नानक करहु कृपा गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया, श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वच्छल बिरदाया। भगत वच्छल पुरख पूरन मन है चिंदिया पाईऐ, ताम अंध कूप ते उधारै नाम मन वसाईऐ। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया, बिनवंत नानक करहु कृपा पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी, करुणा में समरथ स्वामी कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारू, शरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह जपत नाम मरारी, बिनवंत नानक करहो कृपा समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी सब ते ऊच दयाला, बिसंबर देवन को एक है सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महा दयाल दाना दया तारे सब किसे, काल कंटक लोभ मोह नासे जी जा कै प्रभ बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला, बिनवंत नानक इच पुन्नी जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवां, सुन सखिए मिल उदम करेहा मनाए लह हर कंते, मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह है साधु मंत। सखी वस आया फिर छोड़ ना जाई एह रीत भली भगवंत। नानक जरा मरन पै नरक निवारै
पनीत करे तिस जनते। सुन सखिए एह भली बिनंती, एहो मतांत पकाइए। सहज सुभाए अपाद रहत होए, गीत गोविंद गाइए। कन कलेश मिटे हैं भ्रम नासे हैं, मन चिंदिया फल पाइए। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, नानक नाम ते आइए। सखी इश करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए। चरण प्यासी दर्श बैरागण, पेखो थान सबाए। खोज लहो हर संत जना संग, समर्थ पुरख मलाए। नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता, सेवड भागी माए। सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग हिलिया। सुन सखिए मेरी नींद पली, मैं आपनड़ा फिर मिलिया। प्रम खोयो शांत सहज स्वामी, प्रगास भया कौल खिलिया। वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सुहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सुहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा। गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा। गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल, कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आपह किया कराया, आपह करना जोग। नानक एको रब रहया, दूसर हुआ ना होग पौड़ी। ओं साध सतगुर नमस्कार, आद मद अंत निरंकार। आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन। आपने आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो। आपह सूखम आपह असथूला।

आद जुगादी हुण होवत नानके कै सोए पौड़ी कग्गा कालो मन है एह बिन हर दूसर नाही नह हुआ नह होवना जत कत ओही समाहे कुलै तो मन जो आवे सरना नाम तत कल मह पुनः चरना काल काल अनक पछतावह बिन हर भगत कहां थित पावह कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जा को दिया सलोक नान काले सब दिवस सास नह बढ़न कटन तिल सार जीवन लो रह परम मोहो नानक तेहु गुवार पौड़ी गंगा अंगरास काल ते जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मह मरह आत्म राम ना कीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जिहे आप दुआए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जे जीवत जपया प्रगट भये नानक नह छपया सलोक चित चितमो चरनार बिंद ऊंद कवल बिग शांत प्रगट भये आप गोबिंद नानक संत मतांत पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन उवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दह दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार बचार बिनस्यो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाय ऐसी कृपा करहु प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी छछा शोहरे दास तुम्हारी दास दासन के पानी हारी छछा शार होत तेरे संता अपनी कृपा करहु भगवंता चाड सयानप बहु चतराई संतन की मन टेक टकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई सलोक जोर जुल्म फूलह कनो काची दे विकार हम बुद बंधन परे नानक नाम छुटार पौड़ी जज्जा जान हों कछ हुआ बांध्यो ज्यो नलनी भ्रम सुआ जो जान हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी जो जान मैं कथनी करता व्यापारी बसधा ज्यो फिरता साध संग जे हों मैं मारी नानक तां को मिले मरारी सलोक चालांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध कारहा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद पौड़ी चज्जा चूरन मिटे तुमारो राम नाम स्यो कर व्यवहारो चूरत चूरत साकत मुआ जां कह हृदय होत पाओ बिया चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ चरह काम क्रोध दृष्टाई नानक जा को कृपा गुसाई सलोक यतन करो तुम अनक बिद रहन न पावो मीत जीवत रहो हर हर भजो हो नानक नाम प्रीत पवड़ी जन्या जानो दृढ़ सही बिन सजात एह हेत गणती गणो ना गण सको ऊठ सधारे केत न्यो पेखो सो बिन सतो कास्यो करिय संग ज्ञान होया बिद सही चित झूठो माया रंग ज्ञान तो सोई संत सोए भ्रम ते की चत भिन्न अंध कूप ते कढ़ो जेह हो वो सो परसन ज्ञान कै हाथ समरथ ते कारण करने जोग नानक ते उस्तत करो याहू कियो संजोग सलोक टूटे बंधन जन्म मरन साध सेव सुख पाए नानक मनो ना बिसरे गुण निद गोबिंद राय पौड़ी टहल करहो तो एक की जाते बिरथा ना कोय मन फन मुख ही है बसै

रसिया ठाकुरे अपने जो जन पाया नानक वा का मन सीतलाया। श्लोक दंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी डड्डा डेरा एहो नहीं जह डेरा तह जान वा डेरा का संयम गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर खाल जाका तसु नहीं संग चाल वा डेरा की सो मित जान जाको दृष्ट पूर्ण भगवान डेरा निश्चल सच साध संग पाया।

साध संग संबंध पौड़ी टड्डा ढूंढत कह फिरोह ढूंढन या मन माहे संग तोहार है प्रभु बसे बन बन कहां फराहे तेरी ताहो साध संग हम बुद्ध बिकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल तेरी जामे जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हों हों आवे जाए तहत तहत अब कह परे साध जना सरनाए दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटह निकट ना जाइयो दूत पौड़ी नाना रण ते सीजी है आत्म जीत कोवे हों मैं अनस्यो लर मरे सो सोबा दू होए मणि मटाए जीवत मरे गुर पूरे अपदेश मनुआ जीते हर मिले तेहे सूर तन वेश ना को जाने आपनो एक है टेक आधार रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन कर एउ कर्म कमाए हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मलावे मोहे नानक भ्रम पहु काटिया चूके जम की जोह पौड़ी तत्ता तांस्यो प्रीत कर गुण निध गोबिंद राय फल पावह मन बांछते तपत तुहारी जाय त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाव गत पावह मत हुए परगास महली पावह ठाव ताहू संग ना धन चले ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो एह तुहारे काज ताता कछु ना हुई है जो ताप नवारे आप प्रतपाले नानक हमह आपह माई बाप सलोक थाके बहु बिद काल ते कृपत न तृष्णा लाख संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ पौड़ी थत्था तिर को नहीं काए पसारु पाम अनक बंच बल छल करहो माया एक अपाव थैली संच हो श्रम करहो थाक पर हो गवार मन कै कामना आ गई अंते अवसर बार हित पाव हो गोबिंद भजो हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यों या साचा असनेह कारण करन कराम नु सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो तित तित लग है नानक जंत अनाथ सलोक दासा एक निहारिया सब कछ दे मनहार सास सास सिमरत रह नानक दर्श आधार।

मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ आपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवाकै समत बिचारा नरक सुर्ग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं ते माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाही नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे पवड़ी जइया यतन करत बहु बिदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारै सब को वाहे जपे बिन उब

देव सर्वत्र में ऊन ना कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहु, वास देव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चेहन सगल है ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुगद अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी, राड़ा लाड़ मिटे संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे उरिद माही, वा की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है हम बुद बेकारा, राड़ा गुरमुख राड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेह मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी, सस्सा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारे, तुम समरत अगणत अपारे, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पहे,

जो किन मैं ऊने सुबर पराहू खरा निमा ना होत परानी अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परहो हर राय उकत सियानप सगल त्याग नानक लये समाए पौड़ी। ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

सिमरत सदाख्यर कीने राम नाम एक आख्यर किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे ताकि एक दर्श तुहारू नानक उन संग मोहे उधारू।

जन का दासन दत्तना प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी।

हर नेरे। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु ना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी। प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरह से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौह कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन वह आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी।

संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बिबेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै ना भंग हर का नाम जन

में योग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन कै मालिक जीना हर धन जन।

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना।

अपमान। आप सुकौ जो जाने नीचा, सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन हुए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट कीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, एक है सगल सृष्ट साज।

सगल कटा को देव दान कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी मह अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी।

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम

लपट रहे हो तह अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुभा।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोहो मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा।

जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के नरारथ धाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर अपदेसै

ते रहत, सब कछ जान आत्म की रहत, जिस पावै तिस लय लड़ लाई, थान थन अंतर रहे आसमाई, सो सेवक जिस कृपा करी, निमुख निमुख जप नानक हरी, सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव, अष्टपदी, जेह प्रसाद छत्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे, जेह प्रसाद सुगंधत तन लाव है, तिस को सिमरत परम गत पाव है, जेह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसै त्याहे सदा मन अंदर, जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरहु तिस रसना, जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याहिए त्यावन जोग, जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावै है, तिसै त्याग कत अवर लुभावै है।

मुखता को जस रसन बखान जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावह नानक पत सेती घर जावह जिह प्रसाद अरोग कंचन देही निव लाभ तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावह हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताके जिह

का ध्यान जेह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चतारी जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप।

ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो हो, गुर प्रसाद नानक मन जागो हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पव को मूल।

साध जना की अचरज कथा अष्टपदी, साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटे अभिमान, साध कै संग प्रगटे सुज्ञान, साध कै संग बुझे प्रभ नीरा, साध संग सब होत नबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी, साध कै संग अगोचर मिले, साध कै संग सदा पर फुले, साध कै संग आवह बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग न कतहू धावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

आनंदा साध क्या संग नाही हो ताप साध क्या संग तजै सब आप आपे जाने साध बुदाई नानक साध प्रभु बने आई साध क्या संग न कबहू तावे साध क्या संग सदा सुख पावे साध संग बस्त अगोच

साधका संग दृढ़ है सब धर्म, साधका संग केवल पार ब्रह्म, साधका संग पाहि नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साधका संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मी

वा साधु कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्ब थान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल साध कै संग कलूखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध कै संग न बिरता जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट दीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संग गत भई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा भेद न जान है जेता सुनह तेता बखियान है साध की उपमा तेहो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखे एकस बिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जा

जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी कीना। ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाईए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को पूजह महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुए निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म

पाईए धर्म नानक किस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान तू दास दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास

पुजारी अष्टपदे कई कोट होए पुजारी कई कोट अचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थ वास्ती कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म

कई कोट भय अबमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठते ही खाए, कई कोट काल है थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश

नानक तिस बलिहार ने जल थल महियल सोए। अष्टपदी करन करावन करन जोग जोत सिपावै सोई होग। हिन मह थाप उथापन हारा अंत नहीं किश पारा वारा। हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार।

ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इस काबल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप।

पर राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अपकीर्त मह आवे कबहु भला भला कहावे ज्यों प्रभ राख तिव ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबहु होए पंडित करे बखियान कबहु मोन धारी लावे ध्यान कबहु तट तीर्थ इशनान कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभु कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

त्रिण समान कस संग ना जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतर ता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत हिन मह हुए जाए पसमंत किसे ना बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस कर।

हनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार हनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगाह कहो कैसे गवे आपस कहो जो भला कहावे तिसह भला।

ओठ धावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बड भागी तिसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करामन करन हार इसके हाथ का

जाय, नानक सद ही रहे आसमाय। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्तार, सब

कौतक करे रंग अपार। मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन ना जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी।

अष्टपदी संत कै दुख में आरजा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाय, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखै ना कोय, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होय, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पीतरै, संत के दुखन ते मुख भवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को चलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता उए भी गत पाए, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई, संत का निंदक महा हथियारा, संत

नानक ज्योतिष पावै सोई ठिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोलह हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजह तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लागह दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप

ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਨਿਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ

नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदर को थम थम्मण त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मण ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए।

तिरै संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती घर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। ताज अभमान ले।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक किस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाए सगल दे।

के पाई, सब काट इसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाम, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहि समाणी, सत कर्म जा की रचना सत मूल, सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश, सत नित बूझै जे कोय, नाम जपत ता की गत होय, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करनै हार, अवर ना बूझ करत बीचार, करते की मित ना जानै किया, नानक जोत सुभावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भये बिस्माद, जिन बूझया तिसे आया स्वाद, प्रभ कै रंग रात जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी।

अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात राखै, ताकी गत मित कोए ना लाखै, प्रभु के सेवक को ना पहुंचै, प्रभु के सेवक उचते उच्चे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राखै, पसम करै लश्कर कोट लाखै, जिसका सासन काटते आप, तां को राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु पांत, जिसके

बारंबार बार प्रभ जपिया ई अमृत इह मन तन तृपिया नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम तिस कै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै।

बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया न जाई है, नानक ऐसा गुरबत भागी पाई है। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगाने, मन संतोख आत्म पतियानी। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोई, अमृत पीवै अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मरारी। हित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रविया रूप रंग, पये प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उरतार हो। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वत। इहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ धावह, तो तन हर सेवा ते पावह। जिस सुख को नित बांछह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए। सर्व निधान मह हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। मन पर बोध हो हर

0: नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण होए आस भगत भाई आत्म परगास तित कर जाए बसै अबनासी कहो नानक काटी जम फासी
1: तत विचार कह जन साचा
0: जन्म मरै सो काचो काचा आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरदेव इउं रतन जन्म का हुए उदहार हर हर सिमर प्राण अधार अनक अपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करहु।

भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करहु मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जप हो अवरा नाम जपाव हो, सुनत कहत रहत गत पाव हो, सार भूत सत

एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहे कब व्याप अनक विस्थार एक ते पये एक अराध परासत गए मन ताने अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी। जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने।

ज्ञान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन निवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए शिव की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथन लिया मलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे घर ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै

जाओ, मन तन अंतर इही सो आओ, नेत्र हो पेख दर्श सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला कोहू पावै संग, एक बस्त दीजै करमया,

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाय तब शिव सकत कहो कित ठाय जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अबनासी सुख आपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा।

पति यारा, तह कौन कतह कौन सुनने हारा, बहो बेअंत पूछते उच्चा, नानक आपस को आपह पहुंचा, जह आप रचियो प्रपंच अकार, तेहो गुण मह कीनो विस्थार, पाप पुन कह भई।

कौतुक करे अनबिचोज आपह रस भोगन निरजोग जिस भावै तिस आपन नाए लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेशमार अथाह अगंत अतुलै।

एको पसरिया दूजा कह विस्तार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जान तिस भावे तां श्री

नानक पल पावहु हलत पलत दोए लेहो सवार राम नाम अंतर उर धार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जपो निवलाए दुख दर्द मन ते भउ जाए।

की दृष्ट दर्शन पेठत कुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पए अमरा।

कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप भरपूर अंतरगत जिसे आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए।

न कछ करा, आप भला करतूत आत्मी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक।

हस्तपदी पूरे गुर का सुन अपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्याग हो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के पर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उदार।

पर दीन दयाल दुख भजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाई साध शरण नानक ते आई जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत जिस जन आवै।

आप तजहु गोबिंद भजहु पाओ भगत प्रवेश लाभ मिले तो टाहिर हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवै साच साहा भगवंत उठत बैठत हर भजहु साधु संग परीत नानक दुरमत छुट गई।

नानक संत निर्मल पए, जिन मन वस्या सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखै फाल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग प्रमतो कणो, सदा संगारे नीच, हरख सोग सहसा संसार, हौं हौं करत बिहाय, जिन किए तिसह न जाननी, चित में

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भजन।

दुख दार्द अपवित्रता नासह नाम आधार सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला हुए नानक सादर वाल। सलोक पंच बकार मन में बसे राचे माया संग साध संग हुए निर्मला नानक प्रभ कै रंग पौड़ी। पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसम बास बहुरंग कणो सब मिथ्या बलबंच। नह जापै नह बूझिय नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच। सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारा वार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार। पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक ऊतम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख। नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान भ्रम बिनसेओ पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तोटा हिरै साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याए। सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुभा।

आए नानक मन संतोखी एकस स्यों लिवलाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार। आप तजो हो गोबिंद भजो हो शरण पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पहर मन हर जपै

मन मह चितवे पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत कहल कमाई नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाई है।

पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध

दिन से सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान हर की भगत करो ताजमान हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्तासे कीर्तन प्रव रंग कोमल बाणी सब कौ संतोख है पंच भू आत्मा हर नाम रस पोख है गुर पूरे ते एह निश्चौ पाइय नानक।

पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरके अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिन विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौ

श्लोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंड पौड़ी अमावस आत्म सुखी पए

आया नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभे आप दिन दिन चढ़े सो आया नानक होत ना।

सभी ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन योग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरो हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की सर।

सो सूरा कलवंत सोए जिन भजिया भगवंत खतरी ब्राह्मण सूद बैस उदरै सिमर चंडाल जिन जाने ओ प्रभ अपना नानक तिसह रवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोय एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक कृपा ते हर त्याई है।

लाहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार होमे मैल बिख उतरे हर अमृत हर उरतार सब कारज तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा धार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याएंदी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यों बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करहें सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठै सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखै ब्रह्म इक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना दा

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब पावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

सतगुर विच आप वरतदा हर आपे रखण हार तन तन गुरु गुण गावंदा तिसनो सदा सदा नमस्कार जन नानक तिन को वारिया जिन जपया सिरजन हार महला चौथा आपे धरती साजियन आपे आकाश विच आपे जंत उपायन

ये बजाए नानक दुही श्री खसम आपे वरतै नित कर कर देखै चलत सवाए। महला चौथा एक मन एक वरतदा जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरियां जे घर वत हो साई खाए। बिन सतगुरु सोजी ना पवै अहंकार ना विचों जाए। अहंकारियां नो दुख भुख है हथ तड है घर घर मगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रहे मलम्मा पाज लह जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए। ज्यों लोहा पारस भेटी है

हरि आप मलाई गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस देश हो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिने अवगण मेट गुण प्रगट आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो आन दिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम हर नामे ही त्रिपतावे हर नाम तान हर नाम देवान हर नामो रख करावे जो चेत लाए पूजे गुरमूरत सो

जिन्नी सतगुर पुरख त्याया जन नानक नाम अराध्या आप तरिया सब जगत तराया महला चौथा सारा दिन लाल चट्टिया मनमुख होरे गल्ला राती ऊंगै दबिया नवे सोत सब ढिला मनमुखा दै सिर जोरा अमर है नित देव है भला जोरा दा आखिया पुरख कमाम दे से अपवित अमेद खला काम व्यापेक सुध नर से जोरा पुछ चला सतगुर कै आखिया जो चले सो सत पुरख भल भला जोरा पुरख सब आप अपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बणत बनावनी नानक भल भला पौड़ी तू वे परवाह अथाह है अतुल क्यों तुलिया सेवड भागी जे तुद त्याई दे जिन सतगुर मिली है सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणी है सतगुर की रीसै होर कच पिच बोल दे।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच वख कडे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कित थाए पाले जिन्ना सतगुर काया।

काम ना आवे, अध विच फिरे मनमुख विचारा, गली क्यों सुख पावे, जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे, जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे, ता अपिहो पीवे शब्द गुर केरा, सब काला अंदेसा भरम चुकावे, सदा आनंद रहे दिन राती, जन नानक अन दिन हर गुण गावे। महला चौथा, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम त्यावे, उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नावे, उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दोख लह जावे, फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावे, बहिंदियां उठदियां हर नाम त्यावे, जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावे, जिसनो दयाल हुए मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपे अवरह नाम जपावे। पौड़ी, जो तुद सच त्याईंदे से विरले थोड़े, जो मन चित एक अराध दे, तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े, तुदनो सब त्याईंदी से थाए पए जो साहिब लोड़े, जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे, से मोए मर जम्मे कोड़े, ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विस कढ़ मुख कोले, मन खोटे दइए विछोड़े। सलोक महला चौथा, मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा, तिन वे मुख वे मुखे नो पाया, पास ना देही कोई बहन जगत मह, गुहू पर सगवी मल लाए मन मुख आया, पराई जो निंदा चुगली नो बेमुख करके भेजिया, उथे पी मुह काला दोहां बेमुखां दा कराया, तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई, बेमुख सुने नफरे पौली पौंदी फावा, हुए कै उठ घर आया, अगे संगती कुड़मी बेमुख रलना ना मिले, ता बहुती भतीजी फिर आन घर पाया, हलत पलत दोवें गए नित भुखा कूके तिहाया, तन तन स्वामी करता पुरख है, जिन न्याओ सच बह आप कराया, जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, सो साचे मार पचाया।

रखै हलत पलत सब तिसका गया नित चहिया पाए झगू सुटे झकदा झकदा झड़ पया नित अपाव करै माया धन कारण अगला धन भी उड गया क्या ओह खट्टे क्या ओह खावै जिस अंदर सहसा दुख पया निर्वैर नाल जे वैर विचारी सब पाप जगतै का तिन सिर लया ओस अगे पिछे ढोई नाही जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया जे सोइने नो ओह हाथ पाए आखेहू से तीर हल गया जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले औगण बख्श लया जन नानक अन दिन नाम त्याया हर सिमरत किल विक पाप गया पौड़ी तू है सच्चा सच तू सब तू ऊपर तू दीवान जो तुद सच त्याईंदे सच सेवन सच्चे तेरा मान उन्ना अंदर सच मुख उजले सच बोलन सच्चे तेरा तान से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया

सतगुर मारे। जे मेलन नो बहुतेरा लुचिया, ना देही मिलन करतारे। सत संगत ढोई ना लहन, विच संगत गुर विचारे। कोई जाए मिले हुण उनानु, तिस मारे जम जंदारे। गुर बाबे फिटके से फिटे, गुर अंगद कीते कूड़ियारे। गुर तीजी पीढ़ी वेचारिया, क्या हाथ एना वेचारे। गुर चौथी पीढ़ी टिकिया, तिन निंदक दुष्ट सब तारे। कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कारज सब सुवारे। जो इच्छा सो फल पाए सी, पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे। सब निदान सतगुरु विच, जिस अंदर हर उर तारे। सो पाए पूरा सतगुरु, जिस लिखिया लिखत ललारे। जन नानक मांगै धूड़ तिन, जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे बड़ियाई। जगत भी आपे आन, तिनको पैरी पाए। डरिए तां जे किश आप दू कीचै, सब करता अपनी कला वधाए। देखो भाई, एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का। जिन अपने जोर सब आन निवाए। अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदकां दुष्टां के मुंह काले कराए। सतगुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए। अनदिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मुंह कढ़ाए। गुरसिखा के मुंह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए।

सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे। तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला ओस दे आखे कोई ना लगे। नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया। नित चुगली करे अनहोंदी पराई मुंह कढ ना सके ओस।

परताख गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मुह फिके थुक थुक मोहे पाही जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित भंबल भूसे खाही जिन गुरु गोपिया अपना से लैंदे तहां फराही तिनकी भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कुकाही ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही सतगुर की वडियाई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे थाउ नाही जो सतगुर मारे तिन जाए मिलह रहंदी खुंदी सब पत गुआही ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही हर तिनका दर्शन ना करहो जो दूजे पाए चित लाही तुर करते आप लिख पाया तिस नाल केहो चारा नाही जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही नावे की वडियाई वड्डी है नित सवाई चढ़ै चढ़ाही महला चौथा जे होंदै गुरु बह टिकिया तिस जन की वडियाई वड्डी होई तिस को जगत निवया सब पैरी पया जस वरत्या लोई तिस को खंड ब्रह्मांड नमस्कार करह जिसकै मस्तक हाथ धरिया गुर पूरै सो पूरा होई गुर की वडियाई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई जन नानक हर करतै आप बह टिकिया।

जिन हर वसिया मन माहे, हर दरगह ते मुख उजले, तिन को सब देखण जाहे, जिन निरपव नाम त्याया, तिन को भव कोई नाहे, हर उत्तम तिनी सरेविया, जिन को तुर लिखिया आहे, ते हर दरगह पैनाई है, जिन हर बुठा मन माहे, वे आप तरे सब कटंब सियो, तिन पिछे सब जगत छडाहे, जन नानक को हर मेल जन, तिन वेख वेख हम जिवाहे, महला चौथा सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत पई हरियावली।

जिन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लय छाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी।

मेरे भाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड्याई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया

त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमै कड्डै धोए सच मणंजह रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वस्से सच सच्चा हर रखवाली।

था। सतसंगत में हर पुस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है, उपदेश कर है पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ाव है, हर नाम सुनाव है, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचै, नवखंड जगत नमस्कारिया। तुदे आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूज है पूज कराव है, सतगुर को सिरजन हारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मुंह जम मारिया। तिस अग्गै पिछै ढोई नाहीं,

माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला, गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किस जानदा, जो जिया अंदर वरतै, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणतै, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनतै, तू घट घट एक वरतदा, सच साहिब चलतै, सतगुर नु मिले सो हर मिले, नाही किसै परतै। सलोक महला चौथा, एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाइयै चित, क्यों सास ग्रास वसारी है, बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई, एहो जियड़ा हर प्रभ वस, ज्यों भावै त्यों रख तू, जन नानक नाम बखश। महला तीजा, मनमुख अहंकारी महल ना जाने, खिन आगे खिन पीछे, सदा बलाइय महल ना आवे, क्यों कर दरगाह सीजै,

जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा, जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाओ, हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाओ, ओह वेला हाथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए, सतगुर की गणतै कुसी है दुखे दुख विहाय, सतगुर पुरख निर्वै।

जाय रले सतियार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर संत सहाई नानका वरतै सब जाहर। महला पंजवां मुंडों भुले मुंड ते कितै पाए न हाथ।

आपे पछताणी अजराइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे शाह के से परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा। जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए, राम नाम धन वखरो नानक सदा ते आए। पौड़ी पंजवा। नारायण नया ना।

0: वेद कहंदे।
1: भगत मुखै ते बोल दे से वचन हवंदे, प्रगट पहारै जाप दे सब लोक सुनंदे। सुख ना पायन मुग्ध नर संत नाल खहंदे, ओए लोचन ओना गुणा नू ओए अहंकार सड़ंदे। ओए वेचारे क्या करहै जां भाग तुर मंदे, जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसै ना संदे। वैर करन निर्वैर नाल धर्म ने आए पचंदे, जो जो संत सरापिया से फिर है पवंदे। पेड़ मडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे, श्लोक महला पंजवा गुरु नानक हर नाम दरड़ाया। भन्नन कण समरथ प्रभ सदा संभाल है मित्र तू, दुख सबाया लथ महला पंजवा। खुदया वंत न जानी लाज कुबोल, नानक मांगे नाम हर कर।

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लिखा छड़े जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों भावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे सुध। गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर।

के मन तन नित भाव नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लाव ग्रह तन सब पवित्र हुए हर के गुण गावो हर नाम व्यापारी नानका वडभागी।

ना लद्या नानक से साबास जिन्नी गुरमिल एक पछाणिया पौड़ी जिथै बैसन साध जन सो थान सुहंदा ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा पतत उदारन पार ब्रह्म संत वेद कहंदा भगत वचल तेरा बिरद है जुग जुग वरतंदा नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा श्लोक महला पंजवा चिड़ी चौंकी पहु फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नाम है रंग।

हथे पैर भौंदा फिरै खामन संधड़ै सूल दोजक पौंदा क्यों रहै जा चेतना होए रसूल पौड़ी तिसै सरे वो प्राणी हो जिसदा नाव पल्लै ऐसै रहो सहेलिया अगै नाल चलै घर बंद हो सच धर्म का गढ़ थम अहलै ओट लै हो नारायण दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हर किस दरगाह मल्लै श्लोक महला पंजवां जाचक मंगै दान दे प्यारिया देवन हार दा तार मैं नित चितारिया नखोट न जाई मूल अतुल भंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किश सारिया महला पंजवां सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख यूजन सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर नाही मरने जिसनो आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचर है साध जन हम्यो चल है चरने पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने श्लोक महला पंजवां सतगुर पूरै सेवै दुखां का होए नाश नानक नाम अरादै कारज आवै रात महला पंजवां जित सिमरत संकट छुटै है आनंद मंगल बिचराम नानक जपियै सदा हर निमक ना बिसरो नाम पौड़ी जिनकी शोभा क्या गणी जिन्नी हर हर लगा साधा सरणी जो पवै तो छुटै बद्दा गुण गावे अबनासी जोन गर्भ ना दद्दा गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समद्धा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा श्लोक महला पंजवां कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे सुख कनेहा हुए महला पंजवां बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरी जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरी भव सागर संसार बिख सो पार उतरी हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरी है नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी है श्लोक महला पंजवां नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित डाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवां पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अगम

एक जिस तो सदेव आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग में से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मीह गुठा सहज सुपाए अन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा। जीवन पद निर्वाण।

रंग रूप रस बाद के करह परानिया, जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक सरन द्वार जे तुद पावही पौड़ी, जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे, साध संग जिन पाया से वड भागे, नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे, नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

तन फुटन जिन्ना साहि विसरै मोहल्ला पंजवा प्रेतो की तुन देवता तिन करने हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा है।

तू तरवर हौ पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हौ नौ थन चेला, कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोग काहे दुख मानिया।

कबीर जी नगन फिरत जो पाईऐ जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग क्या नांगे क्या बांधे चाम जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति भेद न गई आकाई गेंद राख जो तरिया पाई खुसरे क्यों ना परम गत पाई कहो कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई गौड़ी कबीर जी

रत बहु रूप रचाही तिनको दया सुपने पी नाही चार चरण कह बहु आगर साधु सुख पावह कल सागर कहो कबीर बहु काय करीजै सर्बस छोड़ महारस पीजै।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाउ पर हर लोभ अरलोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहमेव मिल पाथर की कर ही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती कहो रे पंडित बामन कब के हुए बामन कह कह जन्म मत खोए रहा जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत

कबीर जी अंधकार सुख कबह ना सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है, जौ पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया।

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हों मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग हुए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाए।

ला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना पूर्व जन्म हो तप का हीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगर

सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंधा, सत राम झूठा सब धंधा, गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके, जमते उल्ट भये है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उल्ट भये है मीता, साकत उल्ट सुजन भये चीता, अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया, शांत भई जब गोविंद जानिया, रहाउ तन मह होती कोट अपाद, उल्ट भई सुख सह

हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ कहो कबीर सुख सहज समावो आप ना डरो ना अवर डरावो गौड़ी कबीर जी पिंड मुआ जियो केहे घर जाता शब्द अतीत अनाहद राता जिन राम जानिया तिन्ह पछानिया ज्यों गूंगे साकर मन मानिया ऐसा ज्ञान कथै बनवारी मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ सो गुर करहो जे बहुर ना करना सो पद रवहो जे बहुर ना रवना सो ध्यान धरहो जे बहुर ना धरना ऐसे मरहो जे बहुर ना मरना उल्टी गंगा जमन मलावो बिन जल संगम मन महनावो लोचा समसर एहो व्यवहारा तत विचार क्या अवर बिचारा आप तेज बाए पृथ्वी अकाशा ऐसी रहत रहो हर पासा।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावू खोजत तन मह ठौर ना पावू लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाउ एक पाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अनंत पुकार।

हो, जब लग रात तब लग नहीं ने हो रहाऊ, साहन सत करे जी अपने, चोर मैये को मिले ना सुपने, तन मन तन।

तिनकै सद बलिहार है जाओ सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे सो भाई मेरे मन पावे रहाओ जिहे कट राम रहया भरपूर तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वातु कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाउ, सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तौ अनुभव पाया, गौरी कबीर जी मन का सुपहु मनह व्यापी, मनह मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाउ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई।

बूज बूजनहार सुभागा रहा सूरज चंद करह उजियारा सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा कहो कबीर जानेगा सोए हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई सांकल जेवरी लै है आई आपन नगर आपते बांधिया मोह कै पांद काल सर सांधिया रहाउ कटी ना कटै टूट नह जाई सास आपन होए जग को।

तुझह ले तारू खिचह ता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव ते रह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

खसम तारा कह कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट खेलै।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन में।

ठपी रे जी न लाज लाज तो हे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोई सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हर दूर कवला चरण सरन है जाके कहो जन का नाही घर ताके सब को कह जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर ना होई।

कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी, कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया, अब मोको पै राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाउ, साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छडाई, अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना, सतगुर

आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो ताते अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

का आनी बैठत उठत कुटलता चाल है, आप गए और नहु काल है, छाड़ कुचर्चा आन ना जान है, ब्रह्मा हूं को कहो ना मान है, आप गए और नहु खोव है, आग लगाए मंदर में सोव है, अवर्ण हस्त

श्राद जीवत पितर नामा न कोहु मुए श्राद कराही पितर पी बपरे कहो क्यों पावे है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते।

कहिय है आपन कहया ना लेही। सरजियो काट है निर्जियो पूज है अंतकाल को भारी। राम नाम की गत नहीं जानी भय डूबे संसारी। देवी देवा पूज है डोल है पार ब्रह्म नहीं जाना। कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया विख्या स्यों लपटाना। गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया। अंजन माही निरंजन रही है बहुड़ ना पवजल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बलोई है गुरमत मनुआया स्थिर राख हो। इन बेद अमृत पियोई है रहाओ। गुर कै बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा। सकत अंधेर जेवड़ी भ्रम चूका निहचल शिव कर बासा। तिन बिन बाण तनख चढ़ाई एहो जग बेदया भाई। दह दिस बूढ़ी पवन चलावे डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत भागी। कहो कबीर अनभव एक देखिया राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागण तिप दे उल्टत पवन चक्कर खाट भेदे। सुरत सुन अनरागी आवे ना जाए मरे ना जीवे ताश खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पही अवरे। नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर पुन निवरे।

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती हल्की लगे ना भारी रहाउ अर्ध उर्द दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहा समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बनजारा रहाउ काम क्रोध दोए भये जगाती मन तरंग बटवारा पंच तत् मिल दान नवेर है टांडा उतरियो पारा कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बन आई घाटी चढ़त बैल एक थाका चलो गोन छिटकाई।

मुंडित एक है शब्दी एक है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बांधे बहु

कहे बद हमही जिसे बजाए सुई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दाहने बेकारा हर पद दृढ़ कर।

किस नाही, पांच तात तह नाही, एड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगण कत जाही, तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समाई, ए संसा मोह को अन दिन व्यापै, मोह को ना कह समझाई रहाओ, जह बरपंड पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़ नहारो सदा अतीता, एह कही है किस माही, जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए

अविनाशी गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंता सुन गुफा मह आसन बैसन कल्प विवर्जित पंथा मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बियोगी रहाव खंड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है टूटे हुए पसारी मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी थिर पई तंती टूटस नाही अनहद किंगरी बाजी सुन मन मगन पए है पूरे माया डोल ना लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नाव खंड बहत्तर पाठ लगो अधिकाई गई बनावन माहो कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ गजी ना मिनिय तोल ना तुलिय पांचन सेर अढ़ाई जो कर पांचन बेग ना पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी।

गौड़ी अग ना दह पवन नहीं मगन कस कर नीर ना आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है रहाओ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहवा नारायण परे ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुभद ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे ओ रहाओ ज्यों उद्यान कुसम पर फुल्लत किन्ह ना कराओ लयो तैसे भ्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो या धन जोगन अर सुत दारा देखण कौ जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री परेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चहु दिस ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुरु ओट लयो।

तन तन सब रस गोबिंद तोरा रहाउ, इस माटी मह पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कह कबीर एक नीम उसारी, किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ, जां तिस भावै ता हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारग पानी, उरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो, लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन मह उर्द तप करता, तव जठर अगन मह रहता, लख चौरासी जोन भ्रम आयो, अब के छुटके टोर ना ठायो, कहो कबीर भज सारग पानी, आवत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांच।

गुण गाइय जाते पाइय परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संजमो क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानी भाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखीय विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विद निरत आसो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जिह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार बिरक बसेरो पंख को तैसो इहो संसार। राम रस पिया रे जिह रस बिसर गए रस और रहाओ।

रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उस

जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण हरस नाराम रवीजय राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा।

साधु परम प्रगट हुए नाचो हो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डरपे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संदौरा रहाओ काम

गौड़ी लाख चौरासी जी जोन मह प्रमत नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है भाग बडो बपरा कोरे तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक

करै उधार, जानक वीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपहु, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भये है, एक देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुस्से घर जाई रहाओ, पांच पहरुआ दर में रहते। तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चेत होए रहो। तव लै परगास उजारा, नौ कर देख जो कामन भूली। बस्त अनूप ना

तास गुण गाव है तास बस है मोरे प्राणा ना रहाउ हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना चंदन बास पय मन बासन त्याग घटियो अबमानाना जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना तेहे बड भाग बसियो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना काट सकत शिव सहज परगासियो एकै एक समानाना कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन मानाना।

बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन ही माहे ये अक्षर खिर जाहिंगे ओए अक्षर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लख ना कोई लह लहू तो क्या कहूं कहूं ता को पकार भटक बीज में रब रहे हो जाको तीन लोक बिस्थार अलह लहमता भेद शै कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेओ पायो अपंग अशेद तुरक तरीकत जान।

गह गगन रहाई, कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कबह न होई, तां घट माही घाट जो पावा, सो घट छाड अब घट कत तावा, नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम स्यानप एह, चचा रचत चित्र है भारी,

न डर हुआ डर उर होए भागै टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़ो सो गड़ मह पावा।

जाई। तन त्रि भवन मह रहो समाई, जो त्रि भवन तन माहे समावा, तो तत्त है तत् मिलिया सच पावा। थथा अथाहा थाहा नहीं पावा, ओह अथाहा एहो थिर ना रहावा। थोड़े थल थानक आरंभ है, बिन ही थंब है मंदर थंब है। ददा देख जो बिन सनहारा,

बसेरा, अर्दह उर्दह मांझ बसेरा, अर्दह चाड उर्द जो आवा, तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा। नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रही रतवाई। निरखत निरखत जब जाए पावा, तबले निरख है निरख मलावा। पप्पा अपार पार नहीं पावा, परम ज्योत स्यो परचो लावा। पांचो इंद्री निग्रह करी, पाप पुन दो निर्वरी। फफा बिन फूल फल हुई,

बिंद मलावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान पुरो सौ आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साध

गुण मन रह तो तीन लोक की बातें कहे, जैया जो जान तो दुर्मत हन कर बस काया गाँव, रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाव, रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया, ये रस छाडे ओह रस आवा, ओह रस पिया एह रस नहीं पावा, लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत न जाए परम सच पावे, अर जो तहां प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे, ववा बार बार बिसन समहार

इहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोय। सत्सा सो नीका कर सो दोहो घट परचा की बात नरोडोहो। घट परचै जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पौन राओ। खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा तो भव जल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सवारै सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना। है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो करत

एकादशी एक दिश तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचर्ज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगंबखान अर्द उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरहु ध्यान कतनी।

प्रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराए बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंकल।

माहि हैनस कसमल तो वह नाहि सो किरत सहारे सो एह ब्रत चढ़ै अन दिन आप आप स्यो लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट ना पैसै कबै थावर थिर कर राखै सोई जोत दी वटी घट मह जोई बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग घट मह दूजी आन तौ लो महल न लाभ जान रमत राम।

योग की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेउ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उगर सैन कौराज दिए जापहीन तापहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

आए बोरे मोसौ को न कह समझाई जाते आवा गमन बिलाई रहाव बहु विद धर्म निरूपी है करता दिसै सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जेह साजे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म विचारी है शंका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभमान बाहर उदक पखारी है घट भीतर बेबिद बेकार शुद्ध कवन पर होए बो सोच कुंचर बिद व्यवहार रब प्रगास रजनी जथागत जानत सब संसार पार समानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत लेलाट हुन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक बेचार अनक जतन निग्रह।

पंडित पढ़े रिखी सुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले गावन तुदनो।

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

होगी। तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा महला पहला, चौपदी कर दूजा, सुन वड्डा आखे सब कोई,

करी गुर प्रसाद वस्से मन आई दुख अनेरा विचों जाई साच प्यारा आप करी अवरी को साच ना दे जे किसे देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचे कल का पाओ जति सती कह राखह पाओ नानक नाम विटो कुरबान अंधी दुनिया साहिब जान रहाओ।

देखिया सगल भवन तेरी माया हरारे रूप नरालम बैठा नदर करे विच छाया बिना शब्द वजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो सहोराता

याद जब लग हृदय न आवह याद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिया सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन दोए साखी पास जैसा तू करहे तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै।

संग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ता कै सद बलिहार जाओ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वार जिन पाया धन नारी।

जात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेटे एको सो होए आसा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पाव है से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बेख वत अत भौजल

भाग है खासा महला पहला निव निव पाए लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत विचार हृदय हर रविया हृदय देख विचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभ है मिटे अज्ञान हुए उजियारा रहाउ रवनी रवे बंधन नहीं टूट है विच हों मैं परम ना जाई सतगुर मिले ता हों मैं टूटे ता को लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर तारे भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए मनसा मन है समाए नानक कृपा करे जग जीवन सहज भाई लिवलाई आसा महला पहला किसको कह सुनावह किसको किस समझावह समझ रहे किसे पढ़ावह पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर भज मेरे मन गहर गंभीरा रहाउ अनत तरंग भगत हर रंगा अनदिन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रह निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रह लिवलाया आद अपार अपर

टुका, कोई भीखक भीखिया खाई, कोई राजा रहे आसमाई, किस ही मान किसे अपमान, ताहे उसारे तरे ध्यान।

चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊ हों बलिहारे तां कह जाऊ नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जां तू देहे जपी तेरा नाऊ दरगाह बैसन होए थाऊ जां तुझ पावे तां दुरमत जाए ज्ञान रतन मन वसे आए नदर करे ता सतगुर मिले प्रणवत नानक पवजल तरे आसा महला पहला पंचपदी दुध बिन तीन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूना अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसरह दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही रहाऊ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजे चरनी चले पजूता आगे विण सेवा फल लागे अखर बिरख बाग भोए चोखी

पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना को।

प्रगट जाय। सच निशान है ठाक न पाय। पंडित पढ़ै बखाण है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना होए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हों आखा आख बखाणी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवरना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवरना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। इस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवै। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है कर है सोई, आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आसमरास पई, तुरियावस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हृदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कलपै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जम पुर जाहे, गुर दीखिया ले जप तप कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे, नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रहै समाए, आसा महला पहला, आप करे सच अलख अपार, हौ पापी तू बख्शन हार, तेरा भाणा सब किछ होवै, मन हठ कीचै अंत वगोवै रहाउ, मन मुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरन पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाहा किस लेव हो, जो उपजै सो अलख अपेव हो, ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दिरडाई, सगली सौदी टोटा आवै, नानक राम नाम मन भावै, आसा महला पहला चौपदे, विद्या विचारी तां पर उपकारी, जां पंच रासी तां तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै।

रहाउ। धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए। पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए। साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासे थिर ना रहे जैसे भवह उदासे। मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे। लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ। फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू। पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू। पंच सखी मिल

कराया, तिस क्या कही है भाई, जो किश करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई, तेरा हुक्म भला तुद भावे, नानक ताको मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया, बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई, जे को दरगाह बहुता बोले, नाव पवे बाजारी, सतरंज बाज

अगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावे कर करनी कस पाईए पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अमियो चुआईए बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे सहज रंग रच रहिया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जाको नदर करे अमृत का वापारी होवे क्या मद छूछे पाओ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ है करे किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारे कहो नानक सुन परथर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैं की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारे ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै वगे खसमे सा पुरसाई रतन वगार वगोए कुत्ती मोया सार ना काई आपे जोड़ बछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाणी मर मर जीवे तां किस पाई नानक नाम वखाणे राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावे वडभाग गुर कै शब्द सच्चे बैराग खट दर्शन वरते वरतारा गुर का दर्शन अगम अपारा गुर कै दर्शन मुक्त गत हुए साचा आप।

कोई। गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार, नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगै ना पीर, जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गवाए, सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए, सच्ची बाणी पाए भाग कोई।

पाए, हर की कीमत किन बिद होए, हर अपरम पर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जान कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जान कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाण कोए, विणनावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरै पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिलै सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर किरपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, इनकै हम सद लागह पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ आपे दूर, आखण आखै बकै सब कोई, आपे बख्श मलाए सोए, कहण कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, हत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी।

सुख पाए, संत संगत मेल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की वाणी नाम वजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाई आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लह जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जले सबाई, सतगुर पूरे बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इतों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तिथ घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हों मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरों फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मन मुख परम भुलै संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्लै ना पाई, मन मुख भुला जन्म गवाई।

हार रहाउ सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अन दिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साची जिस साच प्यार अपना पिर राखे सदा उर तार नेड़े वेखे सदा हदूर।

नानक साच समावै सोए। आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपाए। गुर कै भै साचै साच समाए। बिन गुर पूरे भगत ना होए। मन मुख रुन्ने अपनी पत खोए। मेरे मन हर जप सदा त्याए। सदा अना

अवर ना कोय गुरसागर पूरा पंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरै भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिसे आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासै अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाउ मोह गमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाणै।

ना जाई, पूरै सतगुर दित्ती वडियाई, उत्तम पदवी हर नाम समाई, जो किछ करे सो आपे आप, एक घड़ी मह थाप उथाप, कह कह कहना आख सुनाई, जे सौ काले थाए ना पाई, जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मलाई, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहज समाए, नावै जेवड होर धन नाही कोय, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरै शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, निरत करे बहुवाजे बजाए, इहो मन अंधा बोला है किसे आख सुनाई, अंतर लोभ भरम अनलवाओ, दीवा बलै ना सूझी पाए, गुरमुख भगत घट चानण होए, आप पछाण मिलै प्रभ सोए रहाओ, गुरमुख

पछान। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी भवजल तरे। गुर कै बचन भगत थाए पाए, हर जीव आप वसै मन आए। हर कृपा करे सतगुरु मलाए, निश्चल भगत हर सिओ चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए। आसा घर अठवां काफी महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर कै भाणे सतगुर मिले, सच सोझी होई। गुर प्रसादी मन वसै, हर बूझै सोई। मैं सहो दाता एक है, अवर नाही कोई। गुर कृपा ते मन वसै, तां सदा सुख होई रहाउ। इस जुग में निरपो हर नाम है, पाईऐ गुर विचार। बिन नामै जम कै वस है, मन मुख अंध गुआर। हर कै भाणै जन सेवा करै, बूझै सच सोई। हर कै भाणै सलाहियै, भाणै मन्नै सुख होई। हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया, मत उत्तम होई। नानक नाम सलाहे तू, गुरमुख गत होई। आसा

माया मल धारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

निकाई नाम रविया सब सास ग्रासा रहाओ नामै सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई नाम हीन गए मूड नंगा पच पच मुए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उथापे नानक नाम देवै हर आपे आसा महला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई।

सुनी मन सरसा, नाम लाहा लै गुरमत बिगसा, नाम बिना कुश्ती मोह अंधा, सब ने फल कर्म किए दुख धंधा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार।

जोगी तो तरवाजे बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगे हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामे हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोग हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

खिन लागे हम तब लग समारो नाम मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुण गावे कब को नाचे पाम पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाच हो हर हर त्याई ऐसे संत मिले है मेरे भाई हम जन के धोवे है पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे अन दिन हर निब लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत भले तुद भावे है जिनकी पत पावे है थाए नानक आख ना राजे हर गुण ज्यों आखे त्यों सुख पाए भगत पंडार दिए हर अपने गुण गाहक वणज लै जाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा आया मन तुराहो हूं मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन अज के कल तुरो फुरमाया बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाउ अंतर नाम निदान गुरमुख पाई अन दिन नाम त्याए हर गुण गाई है अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाई है हम मैं गर्भ है गर्भ आप खुआई है नानक आपे आप खुआई है गुरमत मन परगास सच्चा पाई है राग असावरी कर सोलवा के दो महला चौथा सोधन एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम अन दिन हर नाम कीर्तन करूं सतगुरु मुह को हर नाम बताया हम हर बिन किन पल रह ना सको रहाउ हमरे सर्वन सिमरन हर कीर्तन हम हर बिन रह ना सको हम एक खिन जैसे हंस सर्वर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रह हर सेवा बिन किन्हू प्रीत लाई दूजा भाव रिद धार किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान असावरी महला चौथा माई मोरो प्रीत मराम बताव होरी माई हम हर बिन खिन पल रह ना सकूं जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कहताई जैसे अल कमला बिन रह ना सके तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई राख सरन जगदीश्वर प्यारी मोहे शरदा पूर हर गुसाई जन नानक कै मन आनंद होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस भउ बहुत दिखाया, भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी, ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर उदासी तिन काम व्यापै, एक संचह गिरह तिन हुए ना आपै, एक सती कहावह तिन बहुत कल पावै, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी पुलाय, पंडित मोहे लोभ सवाय, त्रै गुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे देख

समानी, तुरिया गुण मिल साध पछानी, सहज गुफा में आसन बांधिया, जोत स्वरूप अनाहद वाजिया, महा आनंद गुर शब्द विचार, प्रिय सो राती

आर जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओहो रहे सुमाई आसा महला पंजवां निज भगती सील।

वख वख परमावै घर की नायक घर वास ना देवै जतन करूं पुरजाई फरेवै रहाऊ

साधुए मनुख पहचाव। तृतीय मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सह जाया।

परदेश झाग सौदे कहो आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्लै आनी, देख रतन एहु मन लपटानी।

मेरो सब दुख जो हो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलू।

सुहागण संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उन्मुख कर परना।

तानते मन निर्मल हर हर गुण गाए पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर

पंजवां पंच पदे प्रथमे तेरी नीकी जात द्वितीया तेरी मनिए पांत तृतीया तेरा सुंदर थान बिगड़ रूप मन मह अभमान सोहनी स्वरूप सुजान विचखन

हारी, इस धरती मह तेरी सिखदारी, सोना रूपा तुझ पह दाम, सील बगारियो तेरा काम, जाको दिष्ट मया हर राय, सा बंदी ते लई छाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओह काया, सब रूप सब सुख बने सुहागन,

रहना, मुआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मुए मुए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी किस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवा, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत कर हुई।

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कब हो ना बिहावे।

चहो जुगह समानी रैण पई तब अंत ना जानी पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया आसा महला पंजवा हर सेवा मह परम निदान हर सेवा मुख अमृत नाम हर मेरा साथी संग सखाई दुख सुख सिमरी।

निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सहज सुपाय। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगति आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ तोट न आवे न खुट न जाए। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवां जैसे किरसान बोवे किरसानी काची पाकी बाड परानी। जो जन्मै सो जानहु मुआ गोविंद भगत अस्थर है किया रहाऊ। दिन ते सर पर पौसी रात रैन गई फिर हुए प्रभात। माया मोहे सोए रहे अभागे गुर प्रसाद को विरला जागे। कहो नानक गुण गाई है नीत मुख उजल हुए निर्मल चीत। आसा महला पंजवां नौ निद तेरह।

कह सद ही संगा कुदरत वर्त है रूप अर रंगा करह ना चुरै ना मन रोवन हारा अवनासी अवगत अगोचर सदा सलामत खसम हमारा रहाओ तेरे दासरे को किसकी कान जिसकी मीरा राख आन जो लौडा प्रभ किया अजात किस

त्यों कर प्रत पाला आसा महला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावे हर दर्शन मन मोरा रहाव भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद भरे पुर धारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की।

ठाकुर पूरी बणत बनाई, नानक भगत मिली वडियाई। आसा महला पंजवां, गुर कै शब्द बनावो।

रहाउ त्रिपत अगावन साक्य नाय अठसठ मज्जन संत तुराय सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास भई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंधकूप में।

बाद ईत ऊत कत छोड़ ना जाए नानक गीता हर रस माहे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटकै दुर्मते अपनी धारी होए नमाणी सेव कमावे ता प्रीतम होवे मन प्यारी सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

ही ब्योहारा भाग्यामान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी आसा महला पंजवा दोपदे पई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाव जप तप संयम धर्म ना कमाया।

बैठत उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास ग्रासा रहाउ। राख राख शरण प्रभ अपनी अग्न सागर विकराला नानक के सुख दाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला।

चित कछु न लागे, चरण कमल सरनाई, संत प्रसाद भये कृपाला, होए आप सहाय, गुण निदान नित गावे नानक, सहसा दुख मटाई, आसा महला पंजवा, औखद खायो हर को नाउ, सुख पाए दुख बिन सिया थाउ, ताप गया बचन गुर पूरे, आनंद पया सब मिटे वसूरे, रहाउ जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया, आसा महला पंजवा, बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मै क्यों

आए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत सर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, एह अपने ग्रह भीतर वारी। जन्म मरण चूके सब भारे, मिलत संग भयो मन निर्मल।

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल में जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी। बहुत दरबहस्ती अर घोड़े ला

0: कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा।
2: राग आसा कर पंजवा महला पंजवा।

जन्म जन्म की मल धोवै पराई, अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगाह ढोई। जमपुर जाए पचावै निंदक अहला जन्म गवाया, पहुँच ना साकै काहू बातै आगै ठौर।

गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाउ, माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार ना जाने, वेद शास्त्र को

कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचे आप निवारी पंच जना ले वसगत राख मन में है इकंकारी तेरा जन नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द।

सुनावै कर संग साधु चरण पखारे संत धूर तन लावे मन तन अर्प धरे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा ताका जन्म मरण दुख भागै।

ते मुक्त भए अंधकूप महा घोर ते बाहा पकर गुर काढ़ लिए निरपौ भए सगल पौ मिटिया राखे राख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कारग

है, जिस जाने ऊपर तेरी कृपा, तिसको बेपना को पाखै, ओहो सुख ओहा वडियाई, जो प्रभ जी मन पानी, तू दाना तू सद मेहरवाना, नाम मिले रंग माणी।

तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्ण ना साको ताकि उपमा जात ना कहे ओरी काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया।

का पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ले हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज तरी कान कड़न ते शूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर उडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया, सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहू विचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

तेरा ओले भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले रहाउ हुक्म बूझ रंग रस माणी सतगुर सेवा महानिर्वाणी जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान नाम रत्ता सोई निर्वाण जाको मिलियो नाम निदाना पंत नानक ताका पूर खजाना।

शास्त्र वेद पाप पुण विचार, नरक सुर्ग फिर अवतार, गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वासे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर की

उठत बैठत सोवत त्याई, मार्ग चलत हरे हर गाई, श्रवन सुनी जय अमृत कथा, जास सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग मन सगले लथा रहा, कार्य काम बाट घाट जपीजै, गुर प्रसाद हर अमृत पीजै, दिन सरैन हर कीर्तन गाइय, सो जन जम की वाट न पाइय, आठ पहर जिस विसरह नाही, गत होए नानक तिस लग पाई।

सतगुर अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुर का सत शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु। पर का बुरा

नैन निहारो सदा सदा हर नाम समारो राम रामा रामा गुण गावो संत प्रताप साध कै संगी हर हर नाम त्यावो रे रहाओ सगल समगरी जा कै सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलोखिन मैं करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण कराम ने अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी आसा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पये पनीत संतन की धूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग

ये मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहा बिनस्यो मन का मूर्ख ठीठा प्रभु का पाणा लागा मीठा गुरपुरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एहो सफल पया कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा सतगुरे अपना सद सदा संहारे गुर के चरण केस संग चारे जागरे मन जागन हारे बिना

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखो एकै ओही, घट घट अंतर आपे सोई रहाउ, आपे सूर किरण बिसथार,

हर हर अखर दुए एह माला, जपत जपत भय दीन दयाला, करो बेनती सतगुर अपनी, कर कृपा राखो।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहु गुण में वरत संसारा, नरक सुर्ग फिर

ना जानी, भोर भया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी, प्रभ मिल बे की लालसा, ताते आलस कहां करो री रहाओ, कर्म है अमृत आनन सारेउ, खिसर गयो भूम पर डारेउ, साध मोहे लादी अहंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे।

आनंदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर।

उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांदे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना हम

गर्भ मोह तज हूं रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमक निमक एही आराधो, दिन सरहन ए सेवा साधो। भये कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद। आसा महला पंजवा, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

जिस खसम दयाल आसा मोहल्ला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कान्हेरी जो मिली तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ नाही लाग छुट्टो।

आठ घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वड्डे ठगाऊ, छोड़ह नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निकट कर जाने।

मेरे भाई वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जाके केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाके एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने। कोट कोट अग काटन हार।

निहोर लाई, नानक आई पई सरनाई, आसा महला पंजवा, आठ पहर उदक इशनानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़े नाही, बहुर बहुर तिस लागह पाई, साल ग्रा

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे तां कै अनहद तूरा, आसा महला पंजवां दुपदा एक, साधु संग सखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी, जप जप जीवा सारग पानी, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज घर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ, लाल जिवे हर भरे भंडार, तोट न आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै

सूख सहज मेरा धन सोहागा। कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर। बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर। ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया। गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना। तट तीरथ भवे सब तरना, से उभरे जे सत

वहां पकड़ हम राखा आसा मोहल्ला पंजवा सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी इहां उहां कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत ना।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाउ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्रह मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिस ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जाकी सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाउ जाका दान न खूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जाकी बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जाकै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गहे निरभउ पद पाइय, सास सास सो गुण निद गाइय, दूर ना होई कतहूं जाइय, नदर करे ता हर हर पाइय, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगै हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाव, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी।

तेरा जियो पिंड सब तिसदा सब किश है तेरा मान माने तू धनी तेरा परवासा बिन साचे अनटेक है सो जान हो काचा रहाऊ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए जिस गुरपूरा भेट सी सो चल रजाए चतुराई सियाणपा कितै काम ना आई है टुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया हर जीवड ना कोई गुर पुठे ते पाई है सच साहिब सोई बलिहारी गुर अपने सद सद कुरबाना नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो कीजै दाना रहाउ भागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर सो छूटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर।

सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मस्ताक भई

पंजवां लाख भगत आराध है जपते पियो पियो कवन जुगत मलावो निर्गुण बिखई जियो तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी श्रेष्ठ सब रहाओ सदा सहाई संत पेख है सदा हजूर नाम बिहु नड़िया से मरन वसूर वसूर दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण विसरिया जिन्ना नाम तनाड़ा हाल कौन जैसे पास हरियाओ

तुम संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे जिन मन उठाए आप पूरे भगत से।

साहा साहा नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह आसा महला पंजवा पूर रहया सरब ठाए हमारा खसम सोए एक साहिब सिर सत दूजा नाही कोई ज्यो भावे त्यो राख राखण हारिया तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहारिया रहाउ प्रतपाले प्रभ आप घट घट सारी है।

कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए सर्व रहया भरपूर।

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवां आवहो मीत इकत्तर होए। रस कास सब पुंचह अमृत नाम हर हर जपह।

कर तो निद हर पाव सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसह सिंगारे नानका इस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी।

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ परता कह सुमानिया एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाएरी गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाएरी आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर रायरी तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री साई

हम छूटे अब उना ते होए हम ते छूटे रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमै बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाओ ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपनी सद सद बल जाओ गुरु विटो हों वारिया जिस मिल सच सुआओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लगे है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ भावे।

सर्व सुख पावो आज्ञा पावो के ना पावो। एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो। हों मांगो आनल जावो सगल शत्रपत एको ठाकुर। कौन समसर लावो रहाओ उठो बैसो रह पीना साको। दर्शन खोज खजावो ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार। तिनको महल दुल पावो अगम अगम अगाध बोध। कीमत परे ना पावो ताकी शरण सत पुरख की। सत गुर पुरख त्यावो भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर। काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पायो। तो फिर जन्म ना आवो।

मार्ग पंथ सुमारी नाम दृढ़ गुर मन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवा महला पंजवा जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की

कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा आसा महला पंजवां अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुद्ध हसनई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाउ मोहि किरपन को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई आसा महला पंजवां रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेग ताया सस्त

गंदन वहन सुन है उर जावे है, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पारतान पारतान पारती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच तर्म स्यों रुच नहीं आवे, सत सुनत शोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन सीजै अरजादे, जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंध दुर्गम दे, काम क्रोध अर लोभ मोह, एह इंद्री रस लपटा दे, दीप वारी पुरख बधाटे, बहुर बहुर जन्माते, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरमेल सब सुख लादे, कहो नानक दिन रैन त्यावो, मार काढ़ी सगले अपादे, इउं जपियो भाई पुरख बधाते, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा, आसा महला पंजवा, निमक काम स्वाद कारण, कोट दिन से दुख पावे है, करी मोहत रंग मान है, फिर बहुर बहुर पछतावे है, अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ, पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तू मर, जैसा संग बिसियर स्यों है रे, तैसो ही एहो परग्रहो, बैरी कारण पाप करता, बस्त रही आमाना, छोड़ जाहे तिन ही स्यों संगी, साजन स्यों बैराना, सगल संसार एह विद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा, कहो नानक पाव सागर तरियो, पये पनीत शरीरा, आसा महला पंजवा, दोपदे, लूक कमानो सोई तुम पेखेओ, मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे, फिर पाछै पछतानी, प्रभ मेरे सब विद आगै जानी, भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछै जी की मानी रहाओ, जित जित लाए तित तित लागे।

आवै रहाउ। तिस सेवक कै हो बलिहारी, जो अपने प्रभ भावै तिस की सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसन आवै, आसा घर ग्यारवां महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावै बहु बिद। जैसा है ओहो तैसारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम पीतर।

गाखरी गुर शब्दी पार उतरी है रे खोजत खोजत खोज बिचारे तत नानक एहो जाना रे सिमरत नाम निदान निर्मोलक मन मानक पतियाना रे आसा महला पंजवां धुपदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मन त्रिपताना बहुर न कतहु तामो रे हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा रहण दे।

वहां के मर्दन खाट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचहो ही मोहे शलीरे जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बलीरे जिन पंच मार बदार गुदारे सो पूरा एह कलीरे रहाओ वड्डी कौम वस भागह नाही मुहकम फौज हठलीरे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चलीरे आसा महला पंजवां नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन

पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल से

नानक जपिया मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता सरन राखण जोग मेरे मन त्याए हर हर नाम हलत पलत सहाये संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ वेद शास्त्र जन

डोल डोल महा दुख पाया, बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस, पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिय नीत, सास सास त्याय।

में अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यों ज्यों राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर।